0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: सुनो एक तराना, नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

0: Welcome to RM2
1: Radio Masti.
2: Radio Masti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Masti.
0: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
3: लवली गुड मॉर्निंग टू लव यू, सुप्रभात, घर मिलाते चलिए, सुबह के 5 बजे हैं, इट्स टाइम टू राइज एंड शाइन।
0: वेक अप विद द सन एंड द साउंड ऑफ फन।
2: RM2
0: रेडियो मस्ती।
4: मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन, वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। तो कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: ट्यूसडे मॉर्निंग 19 मई 2026 सुबह के 5:06, विशिंग यू ऑल अ लवली लवली गुड मॉर्निंग सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और कहते हैं ना कि कभी कभी रूटीन को थोड़ा सा ब्रेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब आपका डेली रूटीन एकदम से, मतलब टाइम टू टाइम आप ए टू जेड इसको फॉलो करते हैं, तो लाइफ में कभी कभी थोड़ा बोर्डम हो जाता है। सो इसीलिए रूटीन को थोड़ा ब्रेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आज नीतू के बजाय दिव्या साथ देने आई हैं। एंड चलिए, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा पा रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि विंटर सीजन में इसका फ़ायदा उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए तो हम चले आए हैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए, टू बूस्ट अप योर एनर्जी एंड गिविंग यू करेज, ताकि आप इस विंटर सीजन में

0: उठ पाए एंड काम पर जा सके. तो वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ लवली गुड मॉर्निंग. दिव्या का साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर हमारा और आपका साथ रहने वाला है सुबह के 7 बजे तक. तो जहां से भी साथ दे रहे होंगे, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड. एंड वी गोना हैव लोड्स ऑफ मस्ती एंड आई विल कीप यू एंटरटेन्ड ऑफ कोर्स खूबसूरत गीतों के साथ. तो चलिए इस कारवा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस के साथ ऑन 5499 1294.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: वेल 5:21 हो चुके हैं. आई नो सुबह सवेरे आप लोग टाइम निकाल कर हमें याद करते हैं. दैट्स रियली वेरी स्पेशल. वैसे कहते हैं ना कि सोने से पहले और उठने के बाद जो लोग भी आपके जहन में आपके दिमाग में उतर

जाते हैं वो लोग कितने स्पेशल होंगे, क्योंकि इसका मतलब यही है कि आप उनको याद कर रहे हैं. और ऐसे में आप लोग सुबह सवेरे हमें याद कर रहे हैं, रियली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन. चलिए, मुझे पता है आप लोग अपने मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में आपके मैसेजेस की ओर ज़रूर हम बढ़ेंगे. टू ऑल दोज़ लिसनिंग टू अस

0: हैं। तो चलिए दिव्या का साथ है अभी से लेकर टिल 7 AM एंड बाद में हम आपके डेली हॉरोस्कोप भी लेकर आएंगे। सो यू स्टे राइट कनेक्टेड। और वैसे कहते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। जब आप सुबह सवेरे उठे तो राइदर दैन कंप्लेनिंग आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करें। और कभी ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं और उन पर इतना हम फोकस करते हैं कि हम नोटिस करते हैं कि चीज़ और भी बिगड़ने लग जाती है। वो इसीलिए क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम्स पे इतना फोकस कर रही हैं। और वैसे कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं तो जो इनर्जी आप लगाते हैं तकलीफ़ों पर फोकस करने के लिए, वही इनर्जी आप लगाएं तकलीफ़ यानी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, तो आप देखेंगे ज़िंदगी में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता जाता है। वैसे माइंड नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जब आप अपने दिमाग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो आप हर एक मुश्किल का सामना डर कर नहीं बल्कि डट कर करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी ना ही आपके अतीत में है ना ही आपके फ्यूचर में, ज़िंदगी आपके प्रेजेंट मोमेंट का नाम है। और इसीलिए इसको प्रेजेंट का नाम दिया गया है क्योंकि योर प्रेजेंट मोमेंट इज़ अ प्रेजेंट, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। तो इसको जी भर के जीने की कोशिश कीजिए।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: चलिए फाइनली हम बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की ओर जो आपने बहुत ही प्यार से हमें भेजे हैं. प्रणाम, रेडियो मस्ती ड्राइविंग राइट नाउ एंड आप हॉस्पिटल में काम करने जा रही हैं. जयशन जी, आपको बुखार एंड ड्राइव सेफली एंड केयरफुली. डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना फॉर जयशन. तेम्बा जीबन उमिरन अंगोतिया आकाश शर्वन रामदेव मेविन, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. एंड यहाँ पर अगला गाना जाएगा स्पेशली फॉर धीरज, आयुष, विदिशा, अश्विन, ज्योति, हराक फैमिली ऑफ मोदाल बेय. और आप कहते हैं हाय दिव्या एंड RM2 टीम, गुड मॉर्निंग. आपको भी गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट गाना आपकी बेटी रिया, आंशी, केशनी, चाची प्रेमिला, रामचंद्र एंड फ्रॉम एवरी वन. और आप हैं कविता बर्थन ऑफ पुज द फ्लाक. कविता जी, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. बहुत ही स्वीट हैं आप. एंड चलिए अगला गाना गुज आउट टू सरोज, राजन, पूनम, मोनिका, पल्लवी, विशाल, उमेश ऑफ काट्रबोन. एंड कहते हैं कि थैंक यू सबको मोटिवेटेड रखने के लिए. भाई, हमारा मोटिवेशन का कारण आप लोग हैं. नोइंग दैट हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं, हमारे मुंह से अच्छे अच्छे वर्ड्स निकल ही आते हैं. दिल से आपको शुक्रिया साथ देने के लिए. एंड चलिए यहाँ पर आप कहते हैं नमस्ते रेडियो मस्ती टीम, होप यू आर फीलिंग गुड. और कहते हैं कि सारे गाने बहुत ही अच्छे हैं. हैप्पी ट्यूसडे, गॉड ब्लेस यू ऑल. सुया बिहारी जी, आप हैं कुंगमा से और अभी अदरक वाली चाय को आप पी रही हैं और साथ में हमारे गीतों को एंजॉय कर रही हैं. वाह, क्या बात है. इस विंटर सीजन में सुबह सवेरे अदरक वाली चाय ही काम करता है और ये काढ़ा बनके हमारे शरीर में बहुत ही काम करता है. और वैसे कहते हैं ना कि जिंजर इज़ ऑलवेज गुड फॉर आवर इम्यूनिटी एंड अपने इम्यून को बढ़ाते रहिए अदरक वाली चाय के ज़रिए. गुड मॉर्निंग आपको भी कुमार देवीचंद, द शो इज़ लवली, थैंक यू सो मच. एंड नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर डेड शाम, देवी चुनाव पेहबिया. एंड कहते हैं लव यू पापा एवरी डे, दैट्स रियली स्वीट. कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने पापा से प्यार करते हैं, स्पेशली बेटे लोग. और जो फादर्स होते हैं दे हैव अ डिफ़िकल्टी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जितना हो सके उनको अच्छा फील कराएंगे ताकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी अपनी फीलिंग्स को बयां कर पाएँ. एंड यहाँ पर टोनी जी, आप हैं खुशबुआ से साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट गाना जाएगा स्पेशली आपके लिए. कहते हैं कि प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी डिपेंड ऑन वन सेल्फ, नो वन कैन प्योरीफाई अनदर. ये आपने बिल्कुल सही कहा है, नज़र और नज़रिए की बात है. एंड एज यूजुअल वी हैव किशन राम भरोसे जी जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. आपको भी राधे राधे और जय श्री कृष्णा. एंड आप कहते हैं कि श्री श्री राधा एंड कृष्णा जी आपको और पूरे रेडियो मस्ती परिवार को खुश रखें. थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट राम भरोसे जी. एंड नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली टू ऑल दोस्ट जो आपको जानते हैं. नमस्ते दिव्या जी, आज मेरी छोटी राजकुमारी जिया का बर्थडे है. ओके, वो 4 महीने की हो गई है, दैट्स रियली स्वीट. छोटी राजकुमारी को बहुत बहुत सारा प्यार.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Masti.
1: के लिए हम बढ़ेंगे आपके डेली होरोस्कोप की ओर, जानेंगे दिन के दौरान सितारों की हालचाल कैसे रहने वाली है। और हम शुरुआत करेंगे एरीज के साथ। मेष राशि, आज परिस्थितियां आपको रुकने नहीं देंगी, मन में लगातार कुछ नया हासिल करने की बेचैनी बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र में आपका आक्रामक अंदाज विरोधियों को पीछे छोड़ सकता है, लेकिन यही जल्दबाजी किसी ज़रूरी काम में गलती भी करा सकती है। पैसों को लेकर उत्साह रहेगा और किसी नए स्रोत से लाभ मिलने की उम्मीद जगेगी। टॉरस वृषभ राशि, आज आप भीड़ से अलग शांत और संतुलित दिखाई देंगे। लोग जहां जल्दबाजी करेंगे वहीं आप सोच समझ कर निर्णय लेंगे। कामकाज में पुराने अनुभव फायदा पहुंचाएंगे और धन से जुड़ा कोई रुका मामला धीरे धीरे आपके पक्ष में आता दिख सकता है। कोर्ट कचहरी के कार्य में सफलता मिल सकती है। बेवजह किसी से झगड़ा ना करें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। जेमिनाइन मिथुन राशि, आज पूरा दिन आपके इर्द गिर्द घूमता हुआ महसूस हो सकता है। आप बातचीत, संपर्क और प्रभाव तीनों आपके पक्ष में रहेंगे। जो लोग मीडिया और मार्केटिंग, शिक्षा या व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें अचानक कोई अच्छा अवसर भी मिल सकता है। और इसके अलावा जितने भी सारे आपके पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां भी इन्वेस्ट करेंगे सोच समझ कर वहां पैसे लगाएं, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इसके अलावा विदेशी संपर्कों से लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। कैंसर कर्क राशि, आज बाहरी दुनिया से ज्यादा आपका संघर्ष अपने मन के भीतर रहेगा। कई बातें बिना वजह परेशान कर सकती हैं। कार्यक्षेत्र में किसी की कहीं हुई बात दिल पर लग सकती है। आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी होगी, क्योंकि भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय बाद में पछतावा दे सकता है। अपने बातों को गुप्त रखें, बिना काम पूरा हुए किसी से चर्चा ना करें, नहीं तो आपका काम भी बिगड़ सकता है। लियो सिंह राशि, आज आप जहां जाएंगे वहां आपकी मौजूदगी महसूस की जाएगी। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह का महत्व देंगे। नौकरी और व्यवसाय में नेटवर्किंग लाभ दे सकती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और प्रेम जीवन में उत्साह और आकर्षण दोनों रहेंगे। वर्गो कन्या राशि, आज आपका ध्यान केवल परिणाम पर रहेगा। काम के प्रति गंभीरता आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहेगा। इसके अलावा प्रेम जीवन में भावनाओं के बजाय व्यावहारिकता ज्यादा दिखाई देगी और स्वास्थ्य में शरीर भारी और मन थका हुआ महसूस हो सकता है। तो जितना हो सके थोड़ा एनर्जी बूस्टर लेने की कोशिश कीजिएगा। लिब्रा तुला राशि, आज मन सीमाओं से बाहर निकलना चाहेगा। नई जगह, नए लोग और नए विचार आपको आकर्षित करेंगे। भाग्य का साथ मिलने से लंबे समय में से रुका कार्य आगे बढ़ सकता है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कुछ बदलें, और आपको हम बता दें कि ज़रूर बदलेंगे और इसकी तैयारी ज़रूर आपकी तरफ से चल रही है और इसका फल आगे चलकर आपको ज़रूर मिलेगा। एंड प्रेम जीवन में रिश्तों को लेकर स्पष्टता आएगी। यात्रा या आध्यात्मिक गतिविधियों से मन को शांति मिल सकती है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आज हर व्यक्ति पर आँख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी की छिपी हुई रणनीति आपको परेशान कर सकती है। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचना समझदारी होगी। प्रेम जीवन में गहराई तो रहेगी, लेकिन अधिकार भावना तनाव बढ़ा सकती है। मन में

0: किसी पुरानी बात को लेकर बेचैनी बनी रह सकती है। सो जितना हो सके मन को आराम दे और थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी करे। सजिटेरियस धनुराशि, आज आपका दिन लोगों के साथ तालमेल बनाने में बीतेगा। साझेदारी और सहयोग से जुड़े कामों में सफलता मिलती रहेगी और किसी करीबी व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन भविष्य की योजनाओं को लेकर सोच बढ़ेगी और प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और रिश्तों में अपनापन महसूस होगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आज आपको आराम से ज्यादा जिम्मेदारियां घर घेर सकती हैं। कामकाज में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा। ऑफिस में अनुशासन और समय प्रबंधन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे सुधार होगा और प्रेम जीवन में भावनाएं भीतर रहेंगी और आप उन्हें खुलकर व्यक्त नहीं कर पाएंगे। सो जितना हो सके कम्युनिकेशन इज द की एंड ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। एक्वेरियस कुंभ राशि, आज आपके भीतर छिपी रचनात्मकता खुलकर सामने आ सकती है। नए विचार लोगों को प्रभावित करेंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी अलग पहचान बन सकती है। प्रेम जीवन में अचानक कोई सुखद मोर आ सकता है और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई के साथ अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी लगेगा। आखिर में वी हैव पाइसेस मीन राशि, आज मन बार बार पुराने अनुभवों और पारिवारिक बातों की ओर लौट सकता है। घर के वातावरण का असर आपके मूड पर साफ दिखाई देगा। कार्यक्षेत्र में मन कम लगेगा और ध्यान भटक सकता है। आर्थिक रूप से बड़े बदलाव नहीं दिखेंगे लेकिन घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में भावनात्मक सहारा मिलेगा। सो ये था आपका डेली होरोस्कोप। हैव अ गुड गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।
1: योर डेली होरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती। Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: वेल फ्रेंड्स, सुबह की 5:55 होने को हैं। खुशियाँ चारों तरफ हैं और इसको बिखेरिए और जितना हो सके इसको समेटने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके इसको बटोरने की कोशिश भी कीजिए। अर्ली मॉर्निंग आपको भी हम खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं बाय मेकिंग यू लिसन टू दी सॉन्ग्स, और उम्मीद करते हैं कि आप भी प्यार के रंग में रंग रहे हैं और हर एक गाने एक से बढ़कर एक आपके मैसेजेस जब आ रहे हैं ना, ऐसे आप कह रहे हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच साधनी के लिए। ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती दिव्या का साथ है जहाँ पर हमारा और आपका साथ रहेगा टिल 7 AM इन योर राइज एंड शाइन। तो चलिए कुछ ही देर में हम बढ़ने जा रहे हैं संक्षिप्त समाचारों की ओर। एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात आफ्टर द फ्लैश न्यूज, कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम हाजिर होंगे। एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट, आप जरूर आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाएं। किसी का बर्थडे है, किसी की शादी की सालगिरह है, या फिर ऐसे ही किसी को स्पेशल फील कराना चाहते हैं अर्ली मॉर्निंग, ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस का इंतजार ऑन 5499 1294।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
5: Feel the Masti.
6: Once again, a lovely good morning to all of you. घर मिलाते चलिए सुबह के 6 बजे हैं. आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आस्था से. नमस्कार.
7: नमस्कार. 6 बजे के प्रथम समाचारों में स्वागत है आप सभी का. राज्यसभा में आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान बैंक ऑफ मॉरिशस से जुड़े 4 अहम सवाल उठेंगे. नई मुद्रा छपाई, 83 बिलियन रुपए का विवाद और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी परियोजना पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम जवाब देंगे. संविधान में बदलाव की दिशा में आज कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पेश किया जाएगा. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने पर रहेगा जोर. चिकुनगुनिया को लेकर सतर्कता और बढ़ी. अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने मॉरिशस के लिए दूसरी श्रेणी की स्वास्थ्य चेतावनी जारी की. इस साल अब तक 3,478 मामले दर्ज हैं. मॉरिशस अब मेडिकल हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. सरकार मेडिकल टूरिज्म के टिकाऊ मॉडल पर काम कर रही है ताकि अफ्रीका, हिंद महासागर इलाके और यूरोप के कुछ देशों से मरीजों को आकर्षित किया जा सके. और विदेश स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमले को टाल दिया है. उनका कहना है कि गल्फ देशों के अनुरोध पर तेहरान के साथ गंभीर बातचीत जारी है. और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल.
8: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
7: हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादलों का असर रहेगा. आज सुबह और दोपहर बाद भी देश भर में मौसम सुहाना रहेगा. देर रात को केवल पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर रहकर कुछ बरसात हो सकती है और बादल भी घिरे रहेंगी. हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं. प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. दूर समुद्र में नहीं जाएं. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस. न्यूनतम साहली इलाकों पर 22 से 24, अधिकतम 28.

0: 30 डिग्री सेल्सियस के बीच सूर्योदय 6:32 पर, सूर्यास्त 5:40 पर होगा।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सच ब्यूटीफुल गाना पंछी बोले हैं क्या, और अगर आप सुनेंगे ना तो हर एक चीज़ में आपको

0: संगीत ही सुनाई देगी एंड इट्स वेरी वेरी म्यूजिकल अर्ली मॉर्निंग जब आप बरसते हुए पानी को सुनते हैं, टिप टिप बरसता हुआ पानी और साथ में भंवरों का गुनगुनाना एंड पंछियों का चहचहाना, इट्स सो नाइस अर्ली मॉर्निंग इस माहौल को एंजॉय करते रहना। हाँ, मुझे पता है कभी आपको वक्त नहीं मिलता है, लेकिन हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपको थोड़ा बहुत काम पर जाने से पहले वो पीस ऑफ माइंड मिले एंड खुद को आप रिवाइव और रिजुविनेट करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। आपको थोड़ी बहुत हिम्मत मिलेगी काम पर जाने से पहले कि आप खुद को एनर्जी दें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आपके कुछ और मैसेजेस की ओर हम ज़रूर बढ़ना चाहेंगे जो आपने बहुत ही प्यार से हमें भेजे हैं। किसने कहा है, गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग जी, नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली भाई महन के लिए, एज यूजल पालमा से कनेक्टेड है हमारे साथ, बेस्ट विशेज टू यू टू एंड हैव अ वंडरफुल डे। एंड चलिए यहाँ पर आप कहते हैं आज हमारी एंजल खुशी का बर्थडे है, स्वीट 16 की हो गई हैं, बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम मामा द्वितिका, पापा विष्णु, भाई योगी, ऋषभ, बहन श्रिया, सृष्टि, क्रिस्टिना, छोटू एवियान की ओर से उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारा प्यार। एंड यहाँ पर आप कहते हैं कि अ वेरी गुड मॉर्निंग दिव्या जी, अगला गाना आप के नाम बॉम्बू जी से, बॉम्बू से कनेक्टेड है धनेश्वर जी एंड पत्नी सुनीता के लिए, देव, रेखा, संजीव, निशा के लिए और देवदूस फैमिली के लिए भी, ऑफकोर्स वाई नॉट, जितना हो सके आपके हम नाम को ऐड करने की पूरी कोशिश करते हैं इन ईच एंड एवरी सॉन्ग। एंड यहाँ पर नेक्स्ट गाना खासतौर से हम डेडिकेट करेंगे फॉर हबी रंजीत और आपके पूरे परिवार के लिए। साथ में आप कहती हैं हैप्पी बर्थडे टू निहाल फ्रॉम वाइफ सीका, पापा शेखर, सभी फैमिली ऑफ न्यूवेल फ्रांस एंड तायाक। सो चलिए जी, जितने भी सारे लोग आज अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत सारा प्यार एंड हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: वेल फ्रेंड्स, 6:25 हो चुके हैं और चलिए इसी गाने के बाद हम बढ़ने जा रहे हैं सारे 6:00 के समाचार बुलेटिन की ओर। वक्त ने इजाजत दी तो एक बार फिर से मुलाकात होगी, वरना विल बी हैविंग मॉर्निंग बीट जो 7:00 वेदिता लेकर आएगी आप लोगों के लिए। सो स्टे राइट कनेक्टेड।

राष्ट्रसभा में आज पीएमक्यूटी सत्र के दौरान बैंक ऑफ मॉरिशस से जुड़े चार अहम सवाल उठेंगे। नई मुद्रा छपाई, 83 बिलियन रुपए का विवाद और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी परियोजना पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे। संविधान में बदलाव की दिशा में आज कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पेश किया जाएगा। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने पर रहेगा जोर। चिकुनगुनिया को लेकर सतर्कता बढ़ी और अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने मॉरिशस के लिए दूसरी श्रेणी की स्वास्थ्य चेतावनी जारी की। इस साल अब तक 3,400 से ज्यादा मामले दर्ज। मॉरिशस अब मेडिकल हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार मेडिकल टूरिज्म के टिकाऊ मॉडल पर काम कर रही है ताकि अफ्रीका, हिंद महासागर इलाके और यूरोप के कुछ देशों से मरीजों को आकर्षित किया जा सके। और विदेश स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमले को टाल दिया। उनका कहना है कि गल्फ देशों के अनुरोध पर तेहरान के साथ गंभीर बातचीत जारी है। कोंटोरेल में रविवार शाम भड़की हिंसा के बाद मोका की सीआईडी ने पहली गिरफ्तारियां की हैं। इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। याद दिला दें कि कोंटोरेल गांव में उस समय तनाव फैल गया था जब दो समूह आमने सामने आ गए थे। बताया जा रहा है कि कुछ लोग हेल्थ ट्रैक पर क्वाड बाइक चला रहे थे, जबकि वहां इस तरह की गतिविधि प्रतिबंधित है। इस दौरान गोली चलने की आवाज भी सुनी गई। दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और वहां पर मौजूद एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। अन्य खबरों में वाक्वा में 25 वर्षीय जैक विलियम विलो का शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फ्लोरियाल निवासी जैक विलियम का शव कल सुबह घनम वाक्वा स्थित एक मैदान के पास मिला था। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार उसे कथित तौर पर चोरी करते हुए पकड़ा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन दबने के कारण मौत होने की पुष्टि हुई है। इस मामले में 18 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता रहे थे सुर्खियों में कि आज राष्ट्रसभा की बैठक में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान बैंक ऑफ मॉरिशस से जुड़े चार अहम सवाल उठाए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इस सत्र के दौरान प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम से पूछा जाएगा कि 2019

0: नीस से 2024 के बीच कितनी राशि की नई मुद्रा छापकर सरकार को सौंपी गई। साथ ही 83 बिलियन रुपए की कथित नोट छपाई से जुड़े आरोपों के बाद क्या कदम उठाए गए, इस पर भी जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी परियोजना की प्रगति और बैंक ऑफ मॉरिशस में डायरेक्टर ऑफ सुपरविजन पद पर रह चुके अधिकारियों की सूची भी चर्चा का विषय होगी। अभ्युदय।
1: राष्ट्रीय सभा के कार्य सत्र इस मंगलवार दिन के 11:30 बजे फिर से शुरू होंगे। इसकी शुरुआत प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन से होगी, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम से होगा। कार्यसूची में शामिल कुल 26 प्रश्नों में से 4 सवाल बैंक ऑफ मॉरिशस से संबंधित हैं, जो प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से पूछे जाएंगे। रविराज बिचुक का साल 2019 से 2024 के बीच छापी गई और सरकार को ट्रांसफर की गई कुल मुद्रा के मूल्य की जानकारी चाहते हैं। साथ ही वे प्रधानमंत्री से ये भी पूछेंगे कि इस पैसे को बाजार में उतारने से अब तक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है। एड्रियन जुवाल साल 2014 से 2024 के बीच बैंक ऑफ मॉरिशस में डायरेक्टर ऑफ सुपरविजन के पद पर रहे लोगों की सूची मांगेंगे। इसके अलावा वे इस पद से जुड़ी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में भी प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछेंगे। कुशल लुबिन का सवाल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपए को लागू करने पर केंद्रित होगा। वे इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जनवरी 2024 में चुने गए कमर्शियल बैंक और अब तक का हुई प्रगति की जानकारी मांगेंगे। आश्ले रामदास 83 बिलियन रुपए की कथित मनी प्रिंटिंग के आरोपों को लेकर बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा पिछले 12 मई को जारी किए गए बयान का मुद्दा उठाएंगे। वे यह जानना चाहेंगे कि अधिकारियों ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं या उठाने वाले हैं।
0: आज राष्ट्रसभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल को पहली बार पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य है गणराज्य के राष्ट्रपति को एक संविधान समीक्षा आयोग नियुक्त करने का अधिकार देना। यह आयोग संविधान में सुधार से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करेगा और अपनी सिफारिशें देगा, खासतौर पर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र को और मजबूत बनाने और संस्थाओं को सशक्त करने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि चुनावी सुधार इस विधेयक का हिस्सा नहीं होगा, ये विधेयक केवल संविधान की समीक्षा पर केंद्रित रहेगा। वकील रमा वलायदन के अनुसार करीब 10 कानूनों में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1967 से लागू संविधान पर्याप्त रूप से शिक्षाप्रद नहीं था और उसमें कई जरूरी बहसों को शामिल नहीं किया गया था। करुणा लालू।
2: मॉरिशस में स्वतंत्रता पश्चात इतिहास में पहली बार सरकार द्वारा एक बृहद संवैधानिक सुधार की योजना का प्रावधान है। इसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन का गठन किया जाएगा, जो संविधान के विभिन्न पहलुओं की गहराई से समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। यह आयोग प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों को मजबूत करने पर काम करेगा। पीस, जस्टिस एंड लिबर्टी के सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया जाएगा।
3: Si on a la paix, on a la justice. Et si on a la justice, on a la liberté. Qu'on mette la justice centrale dans tout ce qu'il nous fait. Et la justice des hommes, la justice des femmes, la justice des enfants, la justice des personnes capables autrement, la justice vis-à-vis la nature.
2: इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल होंगे। प्रकृति के अधिकारों की मान्यता, पर्यावरण, तकनीक, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े नए अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी।
3: Elle a un droit de la nature, c'est-à-dire ben des affaires comme un wakasho, ou prennent un droit de rendre ben case, ou prennent ben droit de poursuivre, ou prennent ben droit, ils prennent un droit fondamental et que l'État et ben local government et individu prennent ce devoir. En même temps, l'État prennent une obligation pour assurer qu'il garde la nature. Par exemple.
2: सरकार का उद्देश्य संवैधानिक ढांचे को आधुनिक बनाना है ताकि संस्थाओं पर जनता का भरोसा मजबूत हो सके। सार्वजनिक संस्थानों में नियुक्तियों के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाई जाएगी और राइट टू रिकॉल लागू किया जाएगा। अन्य सुधार प्रस्तावों में सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक अपील न्यायालय का गठन, मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों के लिए एक खास संवैधानिक विभाग भी।
3: Les peuples signent une pétition et demandent retourne ça, ben dis-moi, retourne cette nomination. et là c'est ce qu'on appelle right to recall. Et pour

0: Moi, si on a ça, il peut aider dans un pays comme Maurice qui est petit en taille, il peut aider pour qu'il y ait un ministre ou un député qui n'est lié, be true to their words.
1: आयोग को शक्तियों के बेहतर संतुलन पर विचार करना होगा, साथ ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कानूनी सिद्धांतों को भी संवैधानिक ढांचे में शामिल करना होगा।
0: Il n'est pas obligatoire. Moi, je dis l'inverse qu'ils ont été. Ils ont besoin d'assises en public parce que les faits qu'ils ont été assises en public, si ils ont public, radio, télévision, la gazette capable de suivre, ils peuvent amener une pédagogie pour le peuple. Nous, conscients que nous gagnons 67, pas de finir véritablement une pédagogie parce qu'ils disent qu'ils gagnent conscients, mais nous ne participent dans le débat. Tandis que là, nous connaissons le plus et le minus de toute proposition et comment ils sont capables d'aider.
1: इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व चीफ जस्टिस बयानौ सिक्वियन करेंगे। उनके साथ कानूनी विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और नागरिक समाज के प्रतिनिधि मिलकर संविधान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए सुझाव देंगे।
2: सऊदी अरब में मौजूद कई मोशन हज यात्रियों के बीच नाराजगी और चिंता का माहौल है। सोमवार 18 मई को हज के लिए पहुंचे करीब 50 हजियों ने अपने लिए तय की गई इमारत में ठहरने से इनकार कर दिया। हजियों का कहना है कि इमारत की हालत खराब है और वहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। स्थिति को देखते हुए उन्होंने इस्लामिक कल्चरल सेंटर, मंत्री शकील मोहम्मद और रियाद में मोशन राजदूत से हस्तक्षेप की अपील की है। राजदूत के अनुसार अधिकारियों की ओर से हाजियों को बेहतर व्यवस्था वाली जगह पर ठहरने के प्रयास जारी हैं। रियाद हलीमत को सुनते हैं।
3: Man, Hadji Mauricien prend contact avec moi. Je ne raconte moi man de l'éance qui se peut gagner de cet hôtel là, qui se ban problème. Je ne même envoyé moi plusieurs man vidéo. Il est vraiment choquant. Mon téléphone, l'opérateur en question, ben j'ai eu besoin de faire des choses qui vous donnent ban pèlerin un meilleur hôtel. Tout de suite, mon cause avec secrétaire ICC, mon raconte le problème là. Et l'indiamant comme ça qui lit avec son équipe, je peux aller dans l'hôtel là, je peux aller checker. Et effectivement, ben membre ICC, je peux rendre un meilleur hôtel pour sa man pèlerin mauricien.
2: अंतरिम राष्ट्रपति गुबे हंगली ने एचआईवी एड्स के कारण जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रविवार को उन्होंने काट्रोबोन के सेंजों स्थित शेल्टर में आयोजित प्रार्थना और एकजुटता सभा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर गुबे हंगली ने कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे लोगों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समाज का कर्तव्य है उन लोगों को भी सहायता करना जिनकी पीड़ा और संघर्ष अक्सर दिखाई नहीं देते। अंतरिम राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वे दिवंगत पोप फ्रांसिस के संदेशों से प्रेरणा लेते हैं जो लोगों से अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरों तक पहुंचने का आह्वान करती थी। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। चिकुनगुनिया को लेकर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। 14 मई से यात्रियों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कड़ी एहतियाती उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। मच्छर भगाने वाले जो कदम, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े और मच्छरदानी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। मॉरिशस में चिकुनगुनिया के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने देश के लिए दूसरी श्रेणी स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। डॉक्टर फासिल कोदाबोकस के अनुसार सर्दी शुरू होने के साथ पिछले कुछ दिनों में मामलों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब भी पूरी तरह सतर्क है। इस साल की शुरुआत से अब तक 3478 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 110 मामले अभी भी सक्रिय हैं। डॉक्टर फादिल कोदाबोकस को सुनते हैं, उनसे बात की शैली निर्बन ने, विवरण अभ्युदय का है।
4: Donc, niveau 2, qui actuellement le CDC met en place, nous pensons dans les semaines à venir, nous ne pouvons pas enlever ce niveau-là.
5: डॉक्टर फाजिल कोदाबोकस का कहना है कि इस वक्त स्तर 2 डाला गया है। हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले हफ्तों में इस स्तर को हटा दिया जाएगा, क्योंकि चिकुनगुनिया के मामले की संख्या में गिरावट नोट की जाएगी। इसीलिए मच्छरों की चुभन से हमें बहुत सावधानी लेनी चाहिए। बुबासें, कैट्रोबोन और रोजिल जैसे इलाकों में अभी भी चिकुनगुनिया के मामले पाए जा रहे हैं। इसके अलावा देश के दक्षिण और पश्चिम इलाके में भी इस प्रकार के मामले पाए गए हैं। अतः सही कपड़े पहनने की मांग की जाती है और मॉस्किटो रिपेलेंट भी लगाने की सलाह दी जाती है, खासकर बच्चों के त्वचा पर। रोड्रिक्स में भी चिकुनगुनिया का पहला मामला दर्ज किया गया, इसीलिए जनता से सतर्क रहने की मांग की।

0: जाती है।
1: मॉरिशस अब इलाके में एक बड़े मेडिकल हब के रूप में अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार मेडिकल टूरिज्म के एक टिकाऊ मॉडल को विकसित कर अफ्रीका, हिंद महासागर इलाके और कुछ यूरोपीय देशों के मरीजों को आकर्षित करना चाहती है। लेकिन ये पहल सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं, इसका उद्देश्य कुशल रोजगार के नए अवसर पैदा करना और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाना भी है। मॉरिशस के पास इस तेजी से बढ़ते सेक्टर को विकसित करने के लिए कई मजबूत आधार पहले से मौजूद है। सरकार की यह रणनीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, विशेष चिकित्सा ढांचे को आधुनिक बनाना, स्वास्थ्य सेक्टर में अधिक प्रशिक्षित कर्मी तैयार करना और पर्यटन तथा चिकित्सा क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाना। जूनियर टूरिज्म मंत्री सिडनी पिया को सुनती हैं।
2: Sa vision-là l'inscrivait dans une logique de durabilité économique. Il nous focalise beaucoup plus sur la valeur ajoutée que sur les chiffres des arrivées. Ça pour créer un emploi.
3: आर्थिक टिकाव अवधारणा को ध्यान में रखा जा रहा है, इसीलिए हम पर्यटकों के आगमन की संख्या पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसी से हम रोजगार की गुणवत्ता और स्वास्थ्य प्रणाली को ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। मॉरिशस के पास सब कुछ है, चाहे प्राकृतिक हो या ढांचागत। हमारे देश में नीति की स्थिरता पाई जाती है, एक सुरक्षित पर्यावरण भी है और इलाकाई तथा वैश्विक स्तर पर हवाई कनेक्टिविटी भी बढ़िया है, जो पर्यटन के क्षेत्र में हमारे लिए एक अच्छी छवि बनी हुई है। पर्यटन से जुड़ी नीति में 3 स्तंभ हैं। हमारे चिकित्सा तंत्र, खासकर प्राइवेट सिस्टम का मूल ढांचा बढ़िया है। आधुनिक क्लिनिक के निर्माण को लेकर ज्यादा निवेश किए गए हैं, जबकि डायग्नोसिस केंद्र अत्याधुनिक है, जो आधुनिकतम टेक्नोलॉजियों से लेस हैं। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों, नर्सिंग अफसरों, विशेषज्ञों और अन्य कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने का भी अवसर मिलता है। अतः हम अंतर्राष्ट्रीय मंडी की बढ़ती मांगों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं।
1: मॉरिशस में समावेशिता और को और मजबूत बनाने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। अब कम दृष्टि वाले और दृष्टिहीन अपने गाइड डॉग के साथ मेट्रो एक्सप्रेस में यात्रा कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य उनकी आवाजाही को आसान बनाना और रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त ये गाइड डॉग्स अब मेट्रो एक्सप्रेस स्टेशन और ट्रेनों के भीतर भी जाने की अनुमति पाएंगे। लाभार्थियों के लिए ये पहल में अधिक सुलभ और समावेशी समाज की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गल्फ देशों के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने मंगलवार के लिए प्रस्तावित ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल रोक दिया है क्योंकि गंभीर बातचीत जारी है। ट्रूथ सोशल पर किए गए अपने संदेश में ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं ने उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया था। उन्होंने दावा किया कि एक ऐसा समझौता होने जा रहा है जो अमेरिका के लिए बहुत स्वीकार्य होगा और इसमें ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। हालांकि ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि कोई स्वीकार्य समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका किसी भी क्षण ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार रहेगा। और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादलों का असर रहेगा। पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान आज सुबह और दोपहर बाद भी देशभर में मौसम सुहाना रहेगा और धूप खिली रहेगी। केवल देर रात को देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर रह रहकर बरसात हो सकती है और बादल भी घने रहेंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की मांग की जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान सहली इलाकों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। 6:32 पर सूर्यास्त 5:40 पर होगा।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजन, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

Gangulen l'escalier l'escalier choran be sal ki 94 years old ki karunat wati gokul ki मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 1 बजे उनके बेटे सदीश मंगल के मकान लेस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वेंसा कॉम्पों लेस्कालिये की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। पास्कल रोड प्रिजेवेडियामे 82 साल के टिटूयजोल के लकी नारायण दौलत की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें मोहित के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे कैलाश तथी दौलत पास्कल रोड प्रिजेवेडिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पास्कल रोड प्रिजेवेडिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड पालमा कटुबोन में 60 साल के 60 years old के लाल राज गजाधर की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सतीश तुल्य के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनकी पत्नी माया गजाधर के मकान कटुबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। सोल्फेरिनो नंबर 4 वाक्वामे 62 साल की मिसिज पारामती बलदाऊ की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम सियू बादल, लोग उन्हें उमा के नाम से अधिक जानते थे। थी आज दिन की 1 बजे उन्हीं के मकान वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालों सुल्फेरिनो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। एम्पर्स जुवरांस डेपिनेमी 72 साल के 72 years old के भगवान दास जीतुआ की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनकी पत्नी जयवंती जीतुआ के मकान एम्पर्स जुवरांस डेपिनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजालिन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड रियन बेल सुरीनाम में 72 साल की 72 years old के नवरतन हीरा की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें नान के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान रॉयल रोड रियन बेल सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुरिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। एवेन्यू उस्मान सेंट पॉल में 79 years old की सुभावती खुशी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे रवि अविनाश उचोईबो के मकान सैंपल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वामोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टू डी एट 10 AM। गोपालालेन मेबर्ग में 83 साल की 83 years old की पेचाई कोरा चिन्या रामुना की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सूर्या के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोमरू मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। रॉयल रोड रिश्तेमे 44 साल की 44 years old के धनराज बिहारी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सुनील कोकू के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उनकी माता अनीता गनू के मकान रिश्ते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। SSO लेन बोनाक्योई में 68 साल की देवंती लकनारायण की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह के 10:30 बजे उनके बेटे विक्रम भंजन के मकान SSO लेन बोनाक्योई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोनाक्योई की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। नंबर 12 एवेन्यू लासूस पालमा कटुबोन में 87 साल की 87 years old की लक्ष्मी सुनिया की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम इतु, लोग उन्हें आजी गुनु के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन की 11 बजे उन्हीं के मकान कटुबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। मोंडेजिया रोड प्लेनमानियों में 54 साल की सीला गजाधर की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम ननलोल, लोग उन्हें नीता के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उन्हीं के मकान प्लेनमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: टाइम 6 के सुबह के 7 बजे हैं।
4: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
0: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: सुबह के 7:05 हाँ सब फर्स्ट क्लास ही है।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 आवाज़ आ रही है आ रही है प्यार से आ रही है। नहीं मैंने आपके दिल के दरवाजे पे ठकठका भी किया है और सोच रही थी कि शायद यहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग बीट विदिता के साथ आपके अपने रेडियो मस्ती पर। कैसे हो? आज ट्यूसडे है जी हाँ आपका खून चूसने आई हूँ। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन हाँ हमारा और आपका जो साथ है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी मॉर्निंग में बस वेट करती हूं कि जब टाइम मिलेगा मैं आपसे मिलने आऊंगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं आपके साथ छेड़खानी करूंगी। लेकिन आपको भी बड़ा मज़ा आता है, गाने भी अच्छे लगते हैं और जिस तरह से मैं आपके लिए लाइफ में जो कुछ लेसन्स होते हैं जैसे मैं आपको धमकी दे दे के सिखाती हूँ, मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए भाई हम और आप साथ में हैं, साथ रहेंगे 9 बजे तक। वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत खास बहुत स्पेशल है क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं और आपके होठों पे मैं देख रही हूँ बहुत प्यारी सी स्माइल है। सो स्माइल को आप ऐसे ही रखना और फिर देखिए मैजिक कैसे क्रिएट होता है इस स्माइल के साथ।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: जाऊं जहां वही जाता है तो दिल लुक बैठा है। काश हम अपने दिल को तिजोरी में बंद करके रख के जाते, कोई तोड़ता नहीं उसको, कोई चुराता नहीं उसको। के 7:13 हुए हैं, आज है 19th of May, मंगलवार के दिन। हेलो, सबका मंगल हो, सब खुश रहे, सब हैप्पी रहे, बस हमें और क्या चाहिए। गाने में कहता है उल्लू ले भाई, चाय ले, कॉफी ले, उल्लू क्यों ले।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: हमेशा कहते हैं ना, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेकफास्ट नहीं तो फ्रूट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली अभी मैंने भी अपना जो ईटिंग हैबिट है उसको धीरे धीरे करके चेंज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मॉर्निंग में अब हम फ्रूट्स खाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जितने भी मैं खाती हूँ इसलिए आपको खाना नहीं, ये इसलिए बोल रही हूँ कि फ्रूट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। देखो, आपको चीनी की लत लग जाती है, आपको शुगर चाहिए, कहते हैं हमें एनर्जी चाहिए, तो जो नेचुरल शुगर्स होते हैं ना, जैसे एप्पल में होते हैं, पियर में होता है, आप कोई भी फ्रूट खाना पसंद करते हैं, अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो नेचुरल शुगर जो होता है आपके बॉडी को इतनी एनर्जी देता है, पूरे दिन एकदम स्वस्थ रहते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने से पहले आप वो भी ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो आप केले भी ले सकते हैं मॉर्निंग में। जी हाँ, एक ग्लास ठंडा दूध लिया और एक बनाना लिया, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले उसमें और उसको मिक्सी में डाल के घर कर दिया, उसको पी लिया, लो भाई पूरे दिन की एनर्जी आपको मिल जाएगी। अगर आपने ब्रेकफास्ट के लिए टाइम नहीं निकाला तो कम से कम ये तो आप ले ही सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में हमेशा कहती हूँ अपने साथ रखा करो, स्पेशली जो लोग इस समय हमें बस में सुन रहे हैं, ये आप खिड़की के पास बैठे वाले जो सोते रहते हैं, भाई ये कम से कम थोड़ी सी एनर्जी तो यहाँ पर दिखा दो। चलो, जितने भी लोग इस समय ड्राइव कर रहे हैं उनको कहेंगे गाड़ी संभाल के चलाएगा, एंड प्लीज डू लेट मी नो अगर आप हमें बस में सुन रहे हैं तो कहां तक पहुंचे। 5491294 नंबर याद है ना।
2: RM2 रेडियो मस्ती,
1: हिट म्यूजिक ओनली,
3: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।

0: a good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2
2: Radio Musti.
3: अरे यार, ये मॉर्निंग में ऐसे दुखी आत्मा बन के क्यों घूमते फिरते रहते हो? ऐसे अच्छी बात नहीं हो. योर मोर अमोर. जी बिल्कुल, चलिए हम आपको खुश करते हैं. मोगैम्बो भी खुश है भाई. करना क्या है अभी, हम किसी को बर्थडे सरप्राइज करना चाहेंगे तो वो आप डिसाइड करो कि आप किसको सरप्राइज करना चाहते हैं. देखो, लकी ड्रॉ तो होगा. लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से हम रोज किसी न किसी को सरप्राइज करते हैं और उनको लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से एक वाउचर भी देते हैं. उन्होंने कहा है कि भाई बर्थडे स्पेशल होता है तो लेट अस बी पार्ट ऑफ इट. तो लोलो हाइपरमार्केट आपको खुश करने के लिए एक वाउचर दे रहे हैं. करना क्या है आपको, बस जिस इंसान का बर्थडे है ना, लेकिन मेक श्योर कि उनका बर्थडे आज ही है. ऐसा नहीं कि कल था परसों है, ऐसे नहीं, आज का आज ही. और डेट हम नोट करते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि वो कौन है जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है. आप मुझे उनका फ़ोन नंबर और उनका नाम, प्लीज़ उनका फ़ोन नंबर और नाम भेजिएगा 5499-1294 पर. और फिर चलिए देखते हैं कि आज क्या होता है. कहाँ जाना है पता नहीं, आप बताओ कहाँ जाना है.
2: Welcome to RM2 Radio Musti.
4: Radio Musti.
0: Hit music only.
4: Feels a musti.

0: toute sérénité. Parce que voir grand ne devrait pas coûter plus cher, le nouveau Mitsubishi Destinator est proposé à partir de 1 850 000 roupies. Venez le découvrir dans le showroom de Montebello et Forbach. Mitsubishi Destinator, the kind of space we all need.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: A good beat for your morning show.
3: Come on.
1: RM2
2: Radio Musti.
4: वेलकम टू रेडियो मस्ती. यू आर लिसनिंग टू मॉर्निंग बीट मेरे साथ यानी वेदिता के साथ. और जैसा हम हमेशा किसी न किसी को सरप्राइज करते हैं उनके बर्थडे के लिए, तो आज हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो कि 7 साल का हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उनको विश करने के लिए हमें मैसेज किया है. चलिए लकी ड्रॉ के बाद इनका ही नाम आया है, चलिए इनसे मिलते हैं. हेलो
5: हेलो,
4: गुड मॉर्निंग.
5: Good morning.
4: This is Naksh, right?
5: Yes.
4: Okay, Naksh, how old are you, Naksh?
5: Yeah, I'm so happy because...
4: Sorry?
5: I'm 7 years old.
4: You are 7 years old today?
5: Yes.
4: So listen to this one.

0: Happy birthday to you from Radio Musti.
1: Sonakshi, we are there. Thank you so much. And the Radio Musti team wishes you a very happy birthday. And I guess aapke mummy ya papa aapke saath honge. You have mama or papa with you right now?
2: Yes.
1: Yeah, it's your mama.
2: Mom.
1: Okay, so can I talk to your mama, please?
2: Yes, hello.
1: Yes, good morning. आप अपना नाम बताएंगे प्लीज.
2: सोनाली.
1: सोनाली. सो सोनाली नक्श को लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर मिल रहा है एंड वो कलेक्ट करने के लिए आपको या तो फिर आज एमबीसी आना पड़ेगा या तो फिर कल. आपके पास सिर्फ दो दिन है, ठीक है? या तो फिर आज या तो फिर कल आपको एमबीसी आना पड़ेगा इस वाउचर को कलेक्ट करने के लिए. और हैप्पी बर्थडे टू नक्श. आई होप कि उसका सरप्राइज उसको पसंद आया होगा एंड ही इज गोना हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट बर्थडे पार्टी. ओके.
2: Yes.
1: Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Have a good day.
2: Have a good day. Bye.
3: Morning Beat. A good beat for your morning show.
4: RM2 Radio Musti in the mix.

0: और हमें रेडियो मस्ती वाले हमेशा मस्त ही रहते हैं, मस्त मूड में रहते हैं और हमेशा मस्ती करते रहते हैं। सुबह के 7:40 हुए हैं, समय हो गया है, चलिए भागते हैं, मिलते हैं हमारे स्पोर्ट्स गुरु के साथ।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: स्पोर्ट्स न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स,
3: स्पोर्ट्स न्यूज,
4: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: चलिए जानते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है। वेलकम करते हैं हमारे स्पोर्ट्स गुरु अरविंद का। हेलो, गुड मॉर्निंग अरविंद।
5: गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, प्रीमियर लीग टाइटल आर्सेनल के एकदम करीब, केवल 1-0 की जीत, 3 कीमती अंक, द गनर्स अपना काम कर पाए। काई हावर्ट्स का गोल फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में टेंशन था, दबाव था, हावर्ट्स को रेड कार्ड भी मिल सकता था। आर्सेनल एक हाथ ट्रॉफी पर, आज अगर बोर्नमुथ को नहीं हरा पाया मैनचेस्टर सिटी तो आज ही आर्सेनल चैंपियन बन जाएगा। सीजन का आखिरी मैच क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ है, जबकि बोर्नमुथ के बाद मैनचेस्टर सिटी का सामना एस्टन विला से होगा। आज के दो मैच बोर्नमुथ वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी वर्सेस स्पर्स यानी टोटनहम हॉटस्पर, चारों टीमों के लिए जीत कीमती होगी जबकि हार घातक। बोर्नमुथ के लिए चैंपियंस लीग में जाने का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। अगर आज बोर्नमुथ की जीत हुई तो लिवरपूल का 5वां स्थान खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि एक तो बोर्नमुथ केवल एक अंक पीछे होगा, ऊपर से लिवरपूल का आखिरी मैच ब्रैडफोर्ड के खिलाफ है, जो जी जान से खेलेगा यूरोपा लीग या कॉन्फ्रेंस लीग में जाने के लिए। बोर्नमुथ का आखिरी मैच नॉटिंघम फॉरेस्ट के यहाँ है, जो रिलीगेशन से बचने के बाद रिलैक्स मोड में है। सो आज का मैच कोई नहीं हारना चाहेगा, ड्रॉ भी घातक साबित होगा दोनों टीमों के लिए। रिलीगेशन से बचने के लिए टोटनहम हॉटस्पर को चाहिए मात्र एक ड्रॉ, एक अंक। आज लंदन डर्बी, चेल्सी वर्सेस टोटनहम हॉटस्पर। चेल्सी यूरोपियन फुटबॉल की तलाश में है, यूरोपा लीग या कॉन्फ्रेंस लीग, जबकि टोटनहम हॉटस्पर सर्वाइवल मोड में है, रिलीगेशन से बचने का अच्छा मौका है। चेल्सी के पास 49 अंक है, 49 पॉइंट्स, यूरोप में खेलने का रास्ता बंद नहीं हुआ है। मैथमेटिकली अलाइव लेकिन इनक्रेडिबली स्लिम, मतलब हालत नाजुक है। अभी चेल्सी 10वें पोजीशन पर है, 10वें स्थान पर, 49 पॉइंट्स, बचे हैं दो मैच। बोर्नमुथ 6 अंक ऊपर है, ब्राइटन 4 अंक ऊपर, फिर है ब्रेंटफोर्ड और संडरलैंड। मैनचेस्टर सिटी ने एफए कप जीता, मतलब 6ठा स्थान यूरोपा लीग और 7वां स्थान कॉन्फ्रेंस लीग। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार चेल्सी का यूरोपियन फुटबॉल में जाने की संभावना केवल 5% है। सो आज चेल्सी वर्सेस टोटनहम हॉटस्पर वाला मैच दोनों टीमों के लिए सीजन डिसाइसिव, निर्णायक है। मैनचेस्टर सिटी का मैनेजर पेप ग्वार्डियोला क्लब को अलविदा कहने के लिए तैयारी कर रहा है। खबर है सीजन के अंत में पेप ग्वार्डियोला जा रहा है, पर सिटी के अधिकारियों ने कहा कि एक साल है कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में, पर फेयरवेल की तैयारी शुरू हो रही है। याद दिला दें, यूरोपा लीग का फाइनल मैच कल खेला जाएगा फ्रीबर्ग और एस्टन विला के बीच। मैच इस्तांबुल के

0: Cypress Stadium में खेला जाएगा बेसिक्टास पार्क में। एस्टन विला तो पहले से चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई हैं। अगर फ्रीबर्ग की जीत हुई तो हिस्टोरिक फर्स्ट टाइम चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन। यूरोपा लीग स्पेशलिस्ट उनाई एमरी चार बार ये टूर्नामेंट जीत चुका है, अब पांचवें टाइटल की तलाश में है उनाई एमरी। कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल 27 मई को खेला जाएगा क्रिस्टल पैलेस और रायो वालेकानो के बीच। जो जीतेगा वो जाएगा यूरोपा लीग में। और बता दें चैंपियंस लीग का महाफाइनल खेला जाएगा 30 मई को आर्सेनल वर्सेस पारी सैं जर्मेन। क्रियोली भाषा में एक कहावत है, अप्रे ला मोर ला टिजान, यानी मतलब आफ्टर डेथ द हर्बल टी, मृत्यु के बाद काढ़ा। प्रीमियर लीग के प्रोफेशनल गेम्स मैच ऑफिशियल्स के अनुसार नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड का गोल जो ब्रायन एम्बुमो के हाथ से लग कर गया था, कुन्हा द्वारा स्कोर किया गया था, फाउल था, गोल डिसअलाउ होना चाहिए था। रेफरी के अनुसार हैंडबॉल एक्सीडेंटल था। रेफरी बॉस हावर्ड वेब ने स्वीकार किया कि गोल डिसअलाउड होना चाहिए था, गोल जायज नहीं था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के हक में एक और हैंडबॉल गोल ड्रामा। वेन रूने ने कहा कि मोहम्मद सलाह स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं और एनफील्ड रोड में उसके आखिरी मैच में उसे खेलने का मौका नहीं देना चाहिए, शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम एनफील्ड फिनाले। सलाह ने कहा था कि लिवरपूल को फिर से हैवी मेटल अटैकिंग टीम बननी चाहिए जिससे अन्य टीमों को डर हो, भयभीत हो। सलाह जा रहा है पर जाते जाते कह रहा है कि आर्ने स्लॉट का स्टाइल लिवरपूल के लिए ठीक नहीं है, यर्गन क्लॉप का हैवी मेटल अटैकिंग फुटबॉल चाहिए। क्रिकेट आईपीएल 2026 के ग्रुप स्टेज में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ईशान किशन 70 रन बना पाया। लीग टेबल में कोई खास बदलाव नहीं है, अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 18 अंक लिए पहले स्थान पे है, फिर 16 अंक है गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। पंजाब किंग्स टॉप 4 पूरा करता है, उसके पास है 13 अंक। राजस्थान रॉयल्स के पास है 12 अंक, चेन्नई सुपर किंग्स के पास 12 अंक। फिर आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद फाइनल फोर के लिए क्वालिफाई हैं। फाइनल स्पॉट के लिए चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स अभी तक उम्मीदवार हैं। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। रोड टू वर्ल्ड कप 2026 में आज हम ग्रुप जी पर चर्चा करेंगे, ये होगा RM2 पर 8:30। इससे पहले आपको बता दें फुटबॉल ब्राजील के स्क्वाड में नेमा को रखा गया है, अभी नेमा सांतोस के लिए खेलता है। ब्राजील का ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर है लेकिन पिछले 3 सालों से ला सेलेसाओ के लिए नहीं खेल पाया है। कोच आंसेलोची ने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया। इस टीम में अलिसन बेकेयर, काजिमीरो, माथ्यूस कुन्हा, ब्रूनो गुमारेस, गैब्रियल, इगो चागो, रायन, ये सब प्रीमियर लीग के खिलाड़ी हैं। साथ में विनिशियस जूनियर, राफीना, एंड्रिक मार्किनोस जैसे नामी खिलाड़ी हैं। कप 2026 पर और जानकारियां आपको देंगे 8:30 स्पेशल वर्ल्ड कप रूब्रिक में। तब तक हमारा साथ देते रहिए। हैव अ वंडरफुल टाइम लिस्टिंग रेडियो मस्ती। बाय बाय।
1: बाय बाय अरविंद, सी यू इन द सेकंड आवर। ओके,
2: qualité déco puis annonce sous Mega Sales pour 2 semaines seulement. Mob à portière 25 roupies, granit à portière 2000 roupies, sanitaire à portière 3500 roupies, parquet laminé et SPC avec la pose gratuite s'il vous plaît. Et beaucoup des autres super offres pour toute la case. Qualité déco et n'a tout pour décoration intérieure et extérieure, recette parvis décoratif, quartz, robinetterie, la lumière, meubles salle de bain et beaucoup les autres encore. Visite-nous 12 showrooms à travers l'île. Fast step de paiement disponible. Plus renseignements sur notre page Facebook Qualité déco.
3: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
4: Morning Beat.
5: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: ऐसे मूड बनाओगे तो जादू नहीं काला जादू हो जाएगा।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: And yes, हम रोज आपसे यही कह रहे हैं कि आपको जो MBC Play का जो नया ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है। उसका एक नया वर्शन है जो आपको अभी डाउनलोड करना है, इट्स 1.0। एक अकाउंट क्रिएट करना है, उसका स्क्रीनशॉट करना है और उनको भेजना है आपको 5491294 पर। क्यों? शायद आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके इधर।
3: À l'occasion lancement MBC Play, prépare-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir l'ascense des grands gagnants pour emporter des tickets de chacun pour un hélicoptère joyride exceptionnel dans région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voyer un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont

0: réseau de compte NBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la chance, participe dans le grand final le 29 mai. NBC Play, avec ou partout. Pour plus d'informations, téléphone-le 400D 8000. Conditions applicables.
1: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
2: Radio Musti.
3: चलिए बात समझ में आ गई तो जल्दी कीजिए आप NBC Play का जो नया ऐप है उसका जो नया वर्जन है 1.0 उसको जल्दी से डाउनलोड करें और भेजे 5491294 पर.
4: RM2 Radio Musti.
5: The time is brought to you by
6: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
5: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
7: North, South,
8: 103.5.
7: East, West,
8: 96.4.
7: Center,
8: 99.4.
2: RM2
4: Radio Musti.
2: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
7: Radio Musti.
2: Feel the Musti.
3: 8 बजे हैं। फजीर के ठीक 8 बजे तक सुना भोजपुरी में समाचार।

नमस्ते। कोंतगोल में इतवार सांझ भयल हिंसा के बाद मुका सीआईडी पहला गिरफ्तारी कर ले बा। इस मामला में चार जना की हिरासत मिली हलगल बा। कोंतगोल गांव में उस समय तनाव भयल जब दो गुट आमने सामने आगल। बतावल जात बा कि कुछ लोगन हेल्प ट्रक परी क्वाड बाइक परी रहलन जा, जबकि वहां इस तरह के गतिविधि पर रोक बा। इस दौरान गोली चले की आवाज सुनाई पड़ल, दो वाहन में आग लगा देवल गल और मौजूद एक गो पुलिस अफसर घायल होगल। वाकवा में 25 बरिस के रकुल यामन के लाश मिले के बाद हत्या की आशंका जतावल जात बा। फ्लोरियाल निवासी रकुल यामन के शव कल फजीर के खानम वाकवा के गो मैदान लगी मिलल रहल। पुलिस के जानकारी मुताबिक ओकरा कथित रूप से चोरी करत पकड़ल गल रहल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन दबला से मौत होके के पुष्टि भयल। ई मामला में 18 बरिस के गो संदिग्ध के गिरफ्तार करल गल बा। आज राष्ट्रीय सभा की बैठक में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान बैंक ऑफ मॉरिशस से जुड़ल चार महत्वपूर्ण सवाल उठावल जाए। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से पूछल जाए कि 2019 से 2024 के बीच कितना रकम के नवा नोट छपवा के सरकार के सौंपल गल बा। साथ ही 83 बिलियन रुपया के कथित नोट छपाई मामला परी का कार्रवाई भयल, ई पर जवाब मांगल जाए। एकरा अलावा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट के प्रगति और बैंक ऑफ मॉरिशस में डायरेक्टर ऑफ सुपरविजन पद पर ही रहल अफसर लोगन के सूची भी चर्चा के हिस्सा रही। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पहला बार पेश करियन। ई विधेयक के मकसद बा गणराज्य के राष्ट्रपति के संविधान समीक्षा आयोग नियुक्त करे के अधिकार देवे के। ई आयोग संविधान में सुधार से जुड़ल मुद्दा पर ही अध्ययन करी और ही अपन सिफारिश पेश करी, खास रूप से मौलिक अधिकार की सुरक्षा, लोकतंत्र के और ही मजबूत बनावे और इस संस्थान के सशक्त करे पर जोर देवल जाए। सऊदी अरब में मौजूद कई गोमर्शन हज यात्री लोगन के बीच नाराजगी और चिंता के माहौल बा। सोमवार 18 मई के हज खातिर पहुंचल करीब 50 हाजी लोगन अपन खातिर तय इमारत में रहे से मना कर दिलन जा। हाजी लोगन के कहना बा कि इमारत के हालात खराब बा और वहां जरूरी सुविधा के कमी बा। स्थिति के देखते उ लोगन इस्लामिक कल्चरल सेंटर मंत्री शकील मोहम्मद और रियाद में मौशन राजदूत के हस्तक्षेप की अपील कर ले हवन जा। राजदूत के मुताबिक अधिकारी लोग हाजी लोगन के बेहतर जगह पर ही ठहरावे खातिर कोशिश में जुटल हवन जा। दूसर देश के खबर में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोलन कि गल्फ देश के नेता लोग के अनुरोध पर ही ईरान पर मंगल के प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल रोक देवल गल बा। कहे के गंभीर बातचीत जारी बा। ट्रूफ सोशल पर ही जारी संदेश में ट्रंप बोलन कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेता लोग उसे ई फैसला खातिर अनुरोध कर ले हवन जा। ओकर दावा बा कि एगो ऐसा समझौता होके जा रहा बा जे अमेरिका खातिर बहुते स्वीकार रही और इमें ईरान लगे परमाणु हथियार नहीं रही। हालांकि ट्रंप चेतावनी दिलन कि अगर स्वीकार्य समझौता न भयल त अमरीका कभी भी ईरान पर ही बड़ा हमला करे।

0: good beat for your morning show. Come on. RM2
1: Radio Musty.
2: सुबह के 8:06 मिनट हुए हैं. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन आपको हमारे इस सेकंड आवर में. वेलकम करते हैं, हमारा प्रोग्राम है मॉर्निंग बीट रेडियो मस्ती पर. कैसे हैं आप भाई? काम पर पहुंच गए या अभी भी रोड पे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे तो नहीं है ना? फंस गए हैं ना, पता है ना, कुछ नहीं हो सकता. आपको तो आदत डाल लेनी चाहिए. जैसे आपको आदत हो गई है ना अच्छे गाने सुनने की, तो हमारे साथ जुड़े रहिए. अभी के लिए जानते हैं आस्था से कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है दिन भर. तो चलिए उन्हीं से मिलते हैं.
0: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादलों का असर रहेगा. आज सुबह और दोपहर बाद भी देश भर में मौसम सुहाना रहेगा. देर रात को केवल पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर रह रहकर कुछ बरसात हो सकती है और बादल भी घिरे रहेंगी. हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं. प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. दूर समुद्र में नहीं जाएं. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस. न्यूनतम साहली इलाकों पर 22 से 24, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच. सूर्यास्त 5:40 पर होगा.
0: Your weather forecast on RM2
1: Radio Musty.
5: Envie de vous faire plaisir sans vous priver? Du 8 au 21 mai, chez Winners, profitez des prix en beauté sur une large sélection de vos produits du quotidien. Des offres irrésistibles pour remplir votre panier. 1 kg de lait entier en poudre Twin Cows à 222,95 € et le set de 5 pièces de Tefal Supercook Non-Stick à 3,299,95 €. Et profitez-en! La fête du pain a déjà commencé chez Winners et ça continue jusqu'au 31. Des prix en beauté, plus d'économies et toujours plus de plaisir chez Winners.
6: On est tous winners.
1: RM2 Radio Musty. In the mix. Radio Musty.

0: avant de défi de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: सो माय डियर फ्रेंड्स, भागने को तो हम हर जगह भागते हैं. कभी हम भागते हैं घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, हमें वो सारी चीज़ें, सारी लग्जरीज चाहिए, लेकिन हम अपने हेल्थ को हमेशा भूल जाते हैं. अपने हेल्थ का ख्याल रखना सीखो और अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करो. टॉक्सिक लोग सिर्फ एनर्जी ही नहीं, खुशी भी छीन लेते हैं. डिस्टेंस बनाना सेल्फिश नहीं, सेल्फ केयर होता है.

0: जिंदगी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तुम्हारी हेल्थ और मेंटल पीस है। पैसा, सक्सेस और लोग बाद में आते हैं। टॉक्सिक लोगों से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी धीरे धीरे तुम्हारी खुशी, कॉन्फिडेंस और सुकून को खत्म कर देती है। हर किसी को खुश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपने लिए बाउंड्रीज बनाना सीखो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मोटिवेट करें, ड्रेन नहीं। हेल्दी बॉडी और पीसफुल माइंड ही असली वेल्थ होता है। और एक तरीका है, बस आप रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहें, हमारे गीतों के साथ अपने मूड को बनाते रहे।
1: Avant de défi, de long shift, de premier pas qui capav sens tous audi, il a toujours un pause, un souffle. Un moment. Nescafé First. Après tout fait une différence. Li pas une simple tasse. Li un nouveau départ, un nouveau énergie, un nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question. Commence par une bonne décision. Nescafé. Avant ton défi, ton long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: RM2.
3: Radio Musty. Feels a Musty.

0: RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: A good beat for your morning show. RM2
0: Radio Musty.
3: सुबह के 8:25 हुए हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम.
4: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग.
3: आज मौसम कैसा है बता?
4: आज मौसम काफी ऑसम है.
3: ओह रियली? बारिश नहीं हुई आज? बारिश
4: नहीं, बारिश की तो नहीं पता, लेकिन सुबह से उठते ही जी बहुत जो बादल हैं वो छा गए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और एक हेरती कान में आके सोचा विक्की, सोचा विक्की,
3: और फिर उसके बाद जोर का कुछ लगा कान के नीचे, बोला उठ जा विक्की, उठ
4: जा विक्की, प्लीज विक्की,
3: प्लीज, या विक्की प्लीज.
4: हाँ, तो ये होता है कि लेफ्ट कान में कोई कुछ कह रहा था, राइट में कोई कुछ, तो इसलिए बीच में दिमाग है ना, उसकी सुनो.
3: एग्जैक्टली, दिमाग की सुनो, उठो, तैयार हो जाओ, ब्रेकफास्ट करो, काम पे जाओ, काम करो, खुश रहो और रेडियो मस्ती सुनते रहो.
4: बिल्कुल सही. इसलिए अपनी जिंदगी में ना थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट डालो, कब सोना है और कब आपको अपने काम करने हैं.
3: कितना सोना है,
4: इतनी फिल्में मत होगे, सोना चांदी इसका क्या करोगी, दोस्ती भी कोई चीज है.
3: हाँ हाँ,
4: दोस्ती, गाने चलाओ,
3: वही तो
4: चलो मोटरसाइकिल पे निकल जाओ, ये दोस्ती.
3: मॉर्निंग बीट.
5: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स.
2: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
0: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2
1: Radio Musty.
2: ब्यूटीफुल कर गई चल ओके चलो यहाँ पर हम भी आगे बढ़ते हैं। लड़की गई गई चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए क्या है भाई। हम खेल रहे हैं यहाँ रॉजर्स कैपिटल के साथ, और अगर आप हमारे साथ हमारे सवाल का जवाब दोगे तो मिल सकता है एक वाउचर वर्थ 1000 रुपीज फ्रॉम डोमिनोज पिज्ज़ा। ओके तो ये वाउचर आप जाकर डोमिनोज पिज्ज़ा के यहाँ स्पेंड कर सकते हैं और पिज्ज़ा खाते वक्त हमें याद कर सकते हैं। हमारे पास जो सवाल है आपके लिए सही जवाब दीजिएगा 5491294 पर। विद विच कंपनी कैन यू बाय अ प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट एट ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स। सारी सवालों का जवाब आपको पता है और आप भेज सकते हो। With which company can you buy a product on credit at Dragon Electronics? आपको मुझे सही जवाब देना है 5491294 पर। Remember, Rogers Capital holds a license from the Financial Services Commission. जल्दी करो, जवाब भेजो, फिर पार्टी करेंगे।
0: Morning beat.
3: Oh God, one more remix.
0: A good beat for your morning show.
1: RM2 Radio Musty in the mix.

0: उसको डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
3: भाई हमें तो डांस करनी है और हम तो डांस करते हैं, हम तो गाड़ी में बैठे बैठे मुंडे हिलाते हैं और डांस करते हैं। चलो भाई इसी के साथ समय हो गया है, अब हम बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, अभी अरविंद भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि आपको पता है हमारा स्पेशल होने वाला है वर्ल्ड कप। तो देर न करते हुए पहले हम अपने विनर का नाम ले लेते हैं और यहाँ पर हम बताएं आपको कि हमारा सवाल क्या था। हमारा सवाल था आपके लिए, विद विच कंपनी कैन यू बाय अ प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट एट ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड सही जवाब इज रॉजर्स कैपिटल। सही जवाब देकर विनर बने हैं कौन, चलिए जानते हैं। तो नाम आया है नीरा फुलझड़िया का, आप रहती हैं बॉम्बू, कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपको मिल रहा है ये वाउचर वर्थ 1,000 रुपीज फ्रॉम डोमिनोज पिज्जा। एंड हम खेल रहे थे रॉजर्स कैपिटल के साथ, ऑफ कोर्स आप रॉजर्स कैपिटल के साथ इस कंपनी के साथ प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं ऑन क्रेडिट एट ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। आपको बता दें कि आपका जो वाउचर उसको पोस्ट किया जाएगा एंड रॉजर्स कैपिटल होल्स अ लाइसेंस फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज Commission.
2: Welcome to RM2 Radio Musti.
4: Radio Musti.
1: Hit music only.
4: Feels a musti.

0: Get ready for the biggest World Cup ever!
1: 2026 FIFA World Cup.
0: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ
2: चलिए
0: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको.
1: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप.
3: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओर काउंटडाउन जारी है. फ्लैग्स खरीदे जा रहे हैं, टी शर्ट्स बेचे जा रहे हैं, स्टिकर्स कलेक्ट किए जा रहे हैं. सो हम भी उसमें जुड़ गए हैं. रोड टू वर्ल्ड कप 2026 पहली बार के लिए वर्ल्ड कप हिस्ट्री में फीफा हाफ टाइम शो का प्रबंध करेगा, जैसे सुपर बोल में होता है. ये फाइनल के लिए जो 19 जुलाई को खेला जाएगा न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम मेटलाइफ स्टेडियम में, मैडोना, शकीरा और बीटीएस के परफॉर्मेंसेस होंगे. 2026 फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप जी में आज हम बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान और न्यूजीलैंड के बारे में जानकारियां देंगे. एन एक्लेक्टिक मल्टी कॉन्टिनेंटल मिक्स ऑफ फुटबॉलिंग स्टाइल्स. बेल्जियम की टीम को एक समय गोल्डन जेनरेशन कहा जाता था, अभी के लिए ट्रांजिशन में है. द रेड डेविल्स ग्रुप में फेवरेट हैं. वेटरन लीडर केविन डे ब्रुइन और रोमेलू लुकाकू अभी भी टीम में हैं, साथ में एक्सप्लोजिव यंग टैलेंट्स जैसे जेरेमी डोकू, अमादू उनाना, लुइस ओपेंडा, टिमोथी कास्टाइन, यूरी चेलेमंस और योआन बाकायोको. 2018 फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम तीसरे स्थान पर आई थी, ब्रॉन्ज मेडल जीत पाई थी. इजिप्ट दिफाओ अफ्रीका की मोस्ट सक्सेसफुल नेशन में से एक. ये चौथा वर्ल्ड कप है इजिप्ट के लिए. 1934, 1990, 2018 और अब 2026. कॉन्टिनेंटल किंग्स इजिप्ट के पास 7 अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस टाइटल्स हैं, लेकिन वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन केवल 4 और वो भी वर्ल्ड कप फाइनल्स में एक भी जीत नहीं है. वर्ल्ड कप कर्स कहते हैं इसे. इजिप्ट का ऑल टाइम लीडर स्कोर हुसैम हसन अभी तक कोच हैं. क्वालिफिकेशन में एक भी हार नहीं हुई थी. खिलाड़ियों में डेडली अटैकिंग ट्रिडेंट मोहम्मद सलाह टीम का कप्तान है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इजिप्शियन प्लेयर ऑफ ऑल टाइम. ओमर मामूश मैनचेस्टर सिटी से, मुस्तफा मोहम्मद एफसी नॉर्थ से, ट्रेजेगे मोहम्मद अल शनावी जो गोलकीपर हैं. इजिप्ट इस बार सज धज के आई है अपना पहला मैच जीतने के लिए. ईरान की टीम एशियाई फुटबॉल का पावर हाउस, 3 बार एशियन चैंपियन. ये उनका 7वां वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन है, लगातार 4th, पर अभी तक टीम मेली नॉकआउट राउंड तक नहीं जा पाई है. की खिलाड़ियों में है कप्तान मेहदी तराइमी जो ओलंपियाकोस में खेलता है, अलीरेजा बहरनवंद जो खेलता है गोलकीपर के रूप में. मिडिल ईस्ट में चल रहे टेंशन को लेकर ईरान की तैयारी और वीजा को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर फीफा हर हालत में ईरान को सपोर्ट कर रहा है. और ग्रुप जी का आखिरी टीम है न्यूजीलैंड. द ऑल वाइट्स ओशियाना फुटबॉल कॉन्फेडरेशन से हैं, हाईली डिसिप्लिन, फिजिकली रोबस्ट, प्रैग्मैटिक ब्रांड ऑफ डायरेक्ट फुटबॉल. 26 खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार है, इसमें नॉटिंघम फॉरेस्ट का खिलाड़ी क्रिस वुड और टॉमी स्मिथ हैं, स्ट्राइकर जेसे रैंडॉल भी हैं. 1992 में पहली बार वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर, फिर 2010 में एक लेजेंडरी ऐतिहासिक स्थिति, बिना एक मैच हारे जो उस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक टीम कर पाई थी न्यूजीलैंड, ग्रुप स्टेज से आउट स्लोवेकिया, पराग्वे और इटली से ड्रॉ मैच करने के बाद आउट हो गई थी ये टीम. इस टीम में सरप्रीत सिंह नाम का खिलाड़ी है, अटैकिंग मिडफील्डर. सो ग्रुप जी में बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान और न्यूजीलैंड. कल ग्रुप एच पर चर्चा करेंगे, जिसमें है स्पेन, यूरुग्वे, सऊदी अरेबिया और केप वर्डे. सो गेट रेडी, द वर्ल्ड कप 2026 फीवर इज ऑन. और हमारे साथ आप लोग जुड़िएगा फॉर द लेटेस्ट न्यूज, views and previews.
0: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: मॉर्निंग बीट।
1: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
0: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: मॉर्निंग बीट।
1: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
0: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
3: रेडियो मस्ती
2: इन द मिक्स।
0: गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने मॉर्निंग बीट में, जहाँ से भी सुन रहे हैं। हाँ जी, थका

0: रपन रप रप, लेकिन रप करते करते अब मेरे को जाने का भी है। यहाँ से निर्मनी आ गई है, विकास आ गए हैं साथ देने के लिए। गाइस सी यू टुमारो मॉर्निंग 8-7। ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।
1: रेडियो मस्ती, हिट म्यूजिक ओनली, फील्स अ मस्ती। रेडियो मस्ती,
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: समाचारों को लेकर आस्था आ चुकी है। आस्था, आपका स्वागत है।
1: जी हाँ, नमस्कार। 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कौंतुगल में रविवार शाम भड़की हिंसा के बाद मुक्का की CID ने पहली गिरफ्तारियां की हैं। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। याद दिला दें कि कौंतुगल गांव में उस समय तनाव फैल गया था जब 2 समूह आमने सामने आ गए थे और बताया जा रहा है कि कुछ लोग हेल्प ट्रक पर क्वाड बाइक चला रहे थे, जबकि वहाँ इस तरह की गतिविधि प्रतिबंधित है। इस दौरान गोली चलने की आवाज़ भी सुनाई गई जो वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और मौजूद एक पुलिसकर्मी वहां पर घायल भी हो गया। वाकुआ में 25 वर्षीय रक विलियम का शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फ्लोरियाल निवासी रक विलियम का शव कल सुबह घानम वाकुआ स्थित एक मैदान के पास मिला था। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार उसे कथित तौर पर चोरी करते हुए पकड़ा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन दबने के कारण मौत होने की पुष्टि हुई है। इस मामले में 18 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। आज राष्ट्रीय सभा में PMQT सत्र के दौरान बैंक ऑफ मॉरिशस से जुड़े 4 अहम सवाल उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से पूछा जाएगा कि 2019 से 2024 के बीच कितनी राशि की नई मुद्रा छाप कर सरकार को सौंपी गई। साथ ही 83 बिलियन रुपए की कथित नोट छपाई से जुड़े आरोपों के बाद क्या कदम उठाए गए, इस पर भी जवाब मांगा जाएगा। चिकुनगुनिया को लेकर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। 14 मई से यात्रियों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कड़ी एहतियाती कदम अपनाने की सलाह दी गई है। मच्छर भगाने वाले उत्पाद, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े और मच्छरदानी के इस्तेमाल पर फिलहाल जोर दिया जा रहा है। मॉरिशस में चिकुनगुनिया के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने देश के लिए दूसरी श्रेणी की स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गल्फ देशों के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने मंगलवार के लिए प्रस्तावित ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल रोक दिया है क्योंकि गंभीर बातचीत जारी है। ट्रूथ सोशल पर किए गए अपने संदेश में ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और UAE के नेताओं ने उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया था। उन्होंने दावा किया है कि ऐसा समझौता होने जा रहा है जो अमेरिका के लिए बहुत स्वीकार्य होगा। तो ये थी अब तक की खबरें, आगे का कार्यक्रम आपके साथ।
2: धन्यवाद।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: आज है 19 मई 2024, तो चांस जरूर मारना. गुड मॉर्निंग, इट्स योर मस्ती मॉर्निंग, जहां पर गानों के साथ साथ होंगे आपके लिए आशियां, कुछ बी टाउन खबरें, लाइफ स्टाइल टिप्स. तो यही पर वाइब करते हैं 12 बजे तक. इट्स निर्मनी फॉर यू.
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: इश्क के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा एहसास ही इश्क है। तुम्हारा एहसास ही इश्क है।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: Good morning दोस्तों, तैयार हो जाइए जाने के लिए कि आज के स्टार्स आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज लेकर आए हैं। लव हो, कैरियर हो या फिर लक का मैजिक, हर जोडियाक साइन के साथ होगा एक लकी कलर नंबर भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
1: आज आपकी एनर्जी जो है वो फुल ऑन रहेगी, काम जल्दी फिनिश हो सकता है और किसी से अच्छी खबर भी मिल सकती है। लकी कलर आज आपका है रेड और नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज थोड़ा सा सेल्फ केयर और रिलैक्सेशन जरूरी है, फाइनेंशियल मामलों में स्मार्ट डिसीजन लेना फायदेमंद रहेगा। लकी कलर आपका है ग्रीन और लकी नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: कम्युनिकेशन स्किल्स आज आपको स्पॉटलाइट में ला सकती है, नए कनेक्शंस बनने के चांसेस भी है। लकी कलर आपका है येलो और नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: इमोशन स्ट्रांग रहेंगे लेकिन पॉजिटिविटी मेंटेन करोगे तो दिन भी अमेजिंग जाएगा। फैमिली से सपोर्ट तो मिलेगा ही। लकी कलर आपका है व्हाइट और नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है, ऑफिस या स्टडीज में अप्रिसिएशन मिल सकती है। लकी कलर आपका है गोल्डन और नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज प्लानिंग और डिसिप्लिन आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, हेल्थ का भी ध्यान रखा करें। लकी कलर आपका है नेवी ब्लू, लकी नंबर है 4।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: बैलेंस बना के रखिए, लव लाइफ और फ्रेंडशिप्स में दोनों ही स्वीट मोमेंट्स आ सकते हैं। लकी कलर आपका है पिंक और नंबर है 7।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगी, किसी हिडन अपॉर्चुनिटी पर नजर रखिए। लकी कलर आपका है मरून और नंबर है 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: एडवेंचर और एक्साइटमेंट का मूड रहेगा, ट्रैवल या आउटिंग का प्लान भी बन सकता है। लकी कलर है पर्पल और नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज आपकी जो मेहनत का रिजल्ट्स है वो आपको मिलने वाला है, परफेक्ट टाइम है, फोकस को बनाए रखिए। लकी कलर आपका है ब्राउन और नंबर है 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आपकी जो सारे क्रिएटिव आइडियाज है वो शाइन करने वाले हैं, फ्रेंड्स के साथ भी फन मोमेंट्स एंजॉय कर पाएंगे आप। लकी कलर आपका है स्काई ब्लू और नंबर है 11।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: आज पॉजिटिव वाइब्स और पीस दोनों ही आपको फील होगा, किसी क्लोज पर्सन से भी अच्छी बात हो सकती है, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। लकी कलर है समुद्री हरा और नंबर आपका है 12।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: आप हमारे पास रहो कनेक्टेड टू आरएम2 रेडियो मस्ती, और क्या चाहिए। लेकिन म्यूजिक के साथ साथ और एक जरूरी चीज है जो आपको करना है, एंड दैट इज टू हाइड्रेट योरसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, एक पानी का बॉटल अपने पास ही रखिए। ज्यादातर हेडेक्स और थकान की वजह बस यही होता है कि हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेशन मांग रही है। तो खूब सारा पानी पीजिएगा, एक घूंट में नहीं, स्लोली स्लोली यार। एंड ऐसे ही लेट्स कीप वाइबिंग विद योर आरएम2 रेडियो मस्ती।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
3: From India to Miami to the whole world. Go ahead and slow it down, girl.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: ओ मेरे जोहरा जबी हाय, ऐसे गाने हो तो डांस भी 10 मिनट वॉक के जैसा लगने लगेगा। वैसे डेली वॉक या डांस आपके मूड, डाइजेशन और एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करती है। तो छोटे छोटे हैबिट्स ही सही क्रिएट करते हैं और बनाते हैं बड़े बड़े चेंजेस आपके ही आरएमजू रेडियो मस्ती के साथ।
0: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: 53 on RM2 Radio Musty. कुछ देर में आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार. अभी के लिए साथ में वाइब करते हैं गानों के साथ.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे आस्था नमस्कार।
1: नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कोंतोगेल में रविवार शाम भड़की हिंसा के बाद मुका की सीआईडी ने पहली गिरफ्तारियां की हैं। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। याद दिला दें कि कोंतोगेल गांव में उस समय तनाव फैल गया था जब 2 समूह आमने सामने आ गए थे। बताया जा रहा है कि कुछ लोग हेल्थ ट्रक पर क्वाड बाइक चला रहे थे, जबकि वहां इस तरह की गतिविधि प्रतिबंधित है। इस दौरान गोली चलने की आवाज भी सुनी गई। 2 वाहनों को आग लगने आग के हवाले कर दिया गया और मौजूद वहां एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वकवा में 25 वर्षीय रक विलियम का शव मिलने के बाद हत्या की आशंका है। फ्लोरियल निवासी रक विलियम का शव कल सुबह घानम वकवा स्थित एक मैदान के पास मिला था। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार उसे कथित तौर पर चोरी करते हुए पकड़ा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन दबने के कारण मौत होने की पुष्टि हुई है। इस मामले में 18 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। आज राष्ट्रसभा की बैठक में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान बैंक ऑफ मॉरिशस से जुड़े 4 अहम सवाल उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से पूछा जाएगा कि 2019 से 2024 के बीच कितनी राशि की नई मुद्रा छापकर सरकार को सौंपी गई। साथ ही 83 बिलियन रुपए की कथित नोट छपाई से जुड़े आरोपों के बाद क्या कदम उठाए गए, इस पर भी जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी परियोजना की प्रगति और बैंक ऑफ मॉरिशस में डायरेक्टर ऑफ सुपरविजन पद पर रह चुके अधिकारियों की सूची भी चर्चा का विषय होगी। मॉरिशस सब इलाके में एक बड़े मेडिकल हब के रूप में अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार मेडिकल टूरिज्म के एक टिकाऊ मॉडल को विकसित कर अफ्रीका, हिंद महासागर इलाके और कुछ यूरोपीय देशों के मरीजों को आकर्षित करना चाहती है। लेकिन ये पहल सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य कुशल रोजगार के नए अवसर पैदा करना और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाना भी है। मॉरिशस के पास इस तेजी से बढ़ते सेक्टर को विकसित करने के लिए कई मजबूत आधार पहले से मौजूद हैं। सरकार की ये रणनीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: विशेष चिकित्सा ढांचे को आधुनिक बनाना, स्वास्थ्य सेक्टर में अधिक प्रशिक्षित कर्मी तैयार करना और पर्यटन तथा चिकित्सा सेक्टरों के बीच सहयोग बढ़ाना। विदेश स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गल्फ देशों के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने मंगलवार के लिए प्रस्तावित ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि गंभीर बातचीत जारी है। ट्रूथ सोशल पर किए गए अपने संदेश में ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं ने उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया था। उन्होंने दावा किया है कि ऐसा समझौता होने जा रहा है जो अमेरिका के लिए स्वीकार्य होगा और इसमें ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। रॉयल रोड घोंबी में 80 साल के महमूद सदुला इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज शाम के 3:30 बजे उन्हीं के मकान घोंबे से निकालकर अंतिम संस्कार के लिए बल्कि दफनाने के लिए कपमलगुल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। रॉयल रोड बुले रूज फ्लाक में डीएल सुपरमार्केट के पास 59 साल की चंद्रावती द्वारका की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रामलोल, लोग उन्हें मून के नाम से ज्यादा जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उन्हीं के मकान फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Welcome to RM2.
4: Musty Mornings, Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: Good morning. 10:09 हो चला है एंड वेलकम बैक टू योर मस्ती मॉर्निंग विद नमनी. 12 बजे तक अमेजिंग गानों के साथ साथ होंगे आपके लिए कुछ बी टाउन खबरें, लाइफ स्टाइल टिप्स, फैशन टिप्स भी. तो यहीं पर मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स गो एज आई राइट बैक इनटू द गुड म्यूजिक.
2: यू आर लिसनिंग टू

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: एंड यस, आपको पैम्पर करने के लिए आरएम2 रेडियो मस्ती हमेशा होता है रेडी। एंड ऐसे ही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू विन एन एक्सक्लूसिव हेलीकॉप्टर राइड। आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है एमबीसी प्ले 1.0 को, नया वर्जन है। आपको अकाउंट क्रिएट करना है एमबीसी प्ले का, और जब आपने साइन इन कर लिया तो आपको अपने एमबीसी प्ले अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट भेजना है 5499-1294 पर। फिर आपको इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अगर आपका नाम है लिस्ट पर, आपको कॉल करेंगे। सो डू ट्राई योर लक, क्या पता स्टार्स आपकी तरफ हो।
3: À l'occasion lancement MBC Play, prépare-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir la chance des grands gagnants pour un pot d'étiquette de sacane pour un hélicoptère Joyride exceptionnel dans région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et créez un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voyer un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé votre compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la chance, participez dans le grand final le 29 mai. MBC Play, avec ou partout. Pour plus d'informations, téléphone l'eau 400D 8000. Conditions applicables.
1: Radio Musty in the mix.
4: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: आर एम टू
1: रेडियो मस्ती
2: बिहाइंड एवरी पीस एट फैब इंडिया देयर इज अ पेयर ऑफ स्किल्ड हैंड्स आर्टिजन्स हु वीव डाई प्रिंट

0: ट्यूजडेज परफेक्ट होते हैं फॉर एफर्टलेस स्टाइलिश लुक्स, नॉट टू एक्स्ट्रा, नॉट टू बेसिक. आप पेयर कर सकते हो वाइड लेग जीन्स या फिर रिलैक्स पैंट्स विद अ फिटेड टॉप, एक ज़्यादा बैलेंस्ड और ट्रेंडी आउटफिट के लिए. ऐड भी कर सकते हो आप एक पॉप कलर अपने आउटफिट के साथ, वो हो सकता है एक ब्राइट बैग, कलरफुल शूज या फिर एक बोल्ड लिपस्टिक जो आपके लुक को इंस्टेंटली लिफ्ट कर सकता है. मिनिमल फैशन अभी वर्क्स आउट, क्लीन आउटफिट, सिंपल ज्वेलरी हमेशा वो रिच और क्लासी वाइब्स देता है. आज का गोल्डन रूल है कि अपने फेवरेट आउटफिट्स किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बचा के ना रखो. एवरी डे जब आप उठते हो वो पहले से ही स्पेशल होता है, सो शाइन ब्राइट.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2
2: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: अभी के लिए चलते हैं बॉलीवुड की दुनिया में. बड़ी बड़ी मूवीज लाइन अप कर रही है बॉस बॉलीवुड फैंस के लिए दिस सीजन. यस, हमने भूत बंगला तो देख लिया, अब वेलकम टू द जंगल के साथ अक्षय कुमार आ रहे हैं वापस.
3: लेकिन जंगल में कौन होता है बता तुम्हें?
2: नहीं,
3: मंगल. जंगल में मंगल, राइट. वैसे बहुत कमाल की स्टारकास्ट है, बहुत बड़ी स्टारकास्ट है और बहुत टाइम से चर्चा हो रही क्योंकि वेलकम सीरीज, वेलकम बैक और वेलकम टू द जंगल. हाँ, मजा आने वाला है. और वहीं पर गाने अभी आएंगे और लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट. अच्छा, तुम बात करी भूत बंगला की, ठीक ठाक चली, लेकिन अब आने वाली जो मूवीज हैं
2: वो है वेलकम टू द जंगल और वो वापस आ रही है रवीना टंडन के साथ. आइकॉनिक जियो बरसों बाद एक साथ होंगे एक ही स्क्रीन पर.
3: वैसे अक्षय का नाम जोड़ा गया रवीना के साथ भी, शिल्पा शेट्टी के साथ और ऐसे बहुत सारे सितारों के साथ. एनीवेज, इट्स गोना बी नाइस क्योंकि वो 90s का मैजिक जैसे टिप टिप बरसा पानी, लगता है कि वेटरों को भी आ गई थोड़ी सी जवानी.
4: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.

Oh yeah, the mix of music continues, ladies and gentlemen. वापस लौट कर आने वाले 11 से 12 के बीच में एक घंटे की morning team is going to be right here to entertain you, to get you in the mood. आज मंगलवार, music का असर सर पे सवार.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: सुबह के 11 बजे है चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे आस्था नमस्कार
4: नमस्कार 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का चिकुनगुनिया को लेकर सतर्कता और बढ़ा दी गई है 14 मई से यात्रियों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कई सावधानी कदम अपनाने की सलाह दी गई है मच्छर भगाने वाले उत्पाद पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े और मच्छरदानी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है मॉरीशस में चिकुनगुनिया के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने देश

0: के लिए दूसरी श्रेणी की स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। डॉक्टरों के अनुसार सर्दी शुरू होने के साथ पिछले कुछ दिनों में मामलों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी पूरी तरह सतर्क है। इस साल की शुरुआत से अब तक 3478 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 110 मामले अभी भी सक्रिय बताए जा रहे हैं। कोतुगिल में रविवार शाम भड़की हिंसा के बाद मुका की सीआईडी ने पहली गिरफ्तारियां की हैं। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। याद दिला दें कि कोतुगिल गांव में उस समय तनाव फैल गया था जब 2 समूह आमने सामने आ गए थे। बताया जा रहा है कि कुछ लोग हेल्प ट्रक पर क्वाड बाइक चला रहे थे, जबकि वहां इस मामले की इस तरह की गतिविधि प्रतिबंधित है। इस दौरान गोली चलने की भी आवाज सुनी गई। 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और मौजूद एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वाकवा में 25 वर्षीय रक विलियम का शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फ्लोरियाल के इस निवासी के शव को कल घानम वाकवा स्थित एक मैदान के पास बरामद किया गया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार उसे कथित तौर पर चोरी करते हुए पकड़ा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन दबने के कारण मौत होने की पुष्टि हुई है। इस मामले में 18 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब में मौजूद कई मोशन हज यात्रियों के बीच नाराजगी और चिंता का माहौल है। सोमवार 18 मई को हज के लिए पहुंचे करीब 50 हाजियों ने अपने लिए तय की गई इमारत में ठहरने से इनकार कर दिया। हाजियों का कहना है कि इमारत की हालत खराब है और वहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। स्थिति को देखते हुए उन्होंने इस्लामिक कल्चरल सेंटर मंत्री शकील मोहम्मद और रियाद में मोशन राजदूत से हस्तक्षेप की अपील की। राजदूत के अनुसार अधिकारियों की ओर से हाजियों को बेहतर व्यवस्था वाली जगह पर ठहरने के प्रयास जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गल्फ देशों के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने मंगलवार के लिए प्रस्तावित ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि गंभीर बातचीत जारी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: Welcome to RM2. Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: Yes, good morning. Welcome back. आखिरी आवर मस्ती मॉर्निंग में
2: हम तैयार हैं बिल्कुल, और हमेशा की तरह हर घंटे के अंदर मेन्यू बिल्कुल अलग होता है. नहीं देखिए, ऐसा है कि सुबह भाग दौड़ के बाद आपको लगता है कि अब थोड़ी एनर्जी की जरूरत है, और धीरे धीरे जब एनर्जी जा रही है तो हमारी टीम आपको याद दिला रही है कि बी ऑन टाइम, खाना पीना ऑन टाइम, म्यूजिक ऑन टाइम. भाई आज की बात करें तो आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बर्थडे है. वीर दास जो एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन, उनका भी बर्थडे, और आज है वर्ल्ड
0: फेयर प्ले डे.
2: फेयर प्ले ये बहुत जरूरी है ना, खेलो लेकिन फेयर.
0: हाँ, सिंपल है लेकिन सरप्राइजिंगली पावरफुल है इसका मैसेज. प्लेइंग फेयर मैटर्स.
2: एक्चुअली फेयर सेंस में आप खेलोगे तो इक्वल एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, टाइम मिलता है, और कहते हैं ना कि मे द बेस्ट प्लेयर विन. तो बस लगे रहो, मारते रहो पेडल, फिर चाहे जिंदगी दे मेडल या ना दे मेडल, जो भी हो लगे रहो.
0: एंड यस, चाहे स्पोर्ट्स हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, या फिर डेली लाइफ में ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और रूल्स को फॉलो करना ही रियल विक्ट्री होता है.
2: चलिए ठीक है, हम ऐसे करते हैं, आपको भी दिलाते हैं जीत. इट्स टाइम टू कंटिन्यू विद संगीत.
1: रेडियो मस्ती इन द मिक्स. Radio Musty feels a musty in the mix. No.

0: जिंदगी के अंदर स्टाइल ना हो तो लगता है कि लाइफ में क्या हो रहा है, कोई स्टाइल ही नहीं है। जरूरी है कि कुछ स्टाइल स्टेटमेंट पैदा कीजिए, जिंदगी जीने का तरीका सीखे। और वैसे कहते हैं कि बच्चे भी आपको देखकर कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे जिंदगी में। वैसे तुम भी बहुत कुछ सीख गई हो निर्मणि, सुबह उठकर भागा दौड़ी करते हुए स्टूडियो पहुंचना, उसके बाद चहचहाना, क्या बात है, क्या बात है। तो बस जरूरी है कि सुबह का सीन बिल्कुल सेट करो, सुबह उठते ही फोन वो नहीं, बस अपना कनेक्शन बनाओ अपनी जिंदगी के साथ, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। राइट, 2 मिनट का ग्रैटिट्यूड, 5 मिनट का स्ट्रेच, बस दिन बिल्कुल सेट हो गया। वहीं पर खाना पीना सिर्फ पेट के लिए नहीं, मूड के लिए भी, समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। ऐसा आप सुबह उठ के ही आपको वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपके कंट्रोल में है, फिर चाहे प्लेट में वो अंडा हो या फिर ब्रेड का पीस हो जो थोड़ा ठंडा हो, चॉकलेट। ये क्या बात कर रही हो तुम,
1: हमने बोला जो दिल को खुश करे।
0: हाँ ये भी ठीक है, कभी कभी छोटा सा बाइट, हाँ जब तक तुम अफोर्ड कर सकती हो, तुम्हारी हेल्थ अफोर्ड कर सकती है। वहीं पर स्क्रीन टाइम का बिल्कुल कंट्रोल, क्योंकि आजकल ऑटोमेटेड मैसेजेस आते हैं और फिर एक जो एप्लीकेशन देखते हैं कि आप उस पर जहीं जा रहे हैं तो उसके खुद मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, हेलो यू माइट नो समबडी, टिंग टुंग शुरू हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा दूर रखो, ये जरूरी है। बॉडी को, अरे इसको इग्नोर मत कियो, जिम हो या घर हो, थोड़ी मूवमेंट रोज जरूरी है, डांस हो, वॉक हो, साथ में योगा हो, मजा आएगा। वहीं पर गाने सुनकर RM2 पर अगर डांस करने का मूड करे तो ए, क्या बोली रे, डांस का स्टाइल भी मार सकते हैं। वहीं पर माइंड की मेंटेनेंस करनी बिल्कुल जरूरी। देखिए ऐसा होता है कभी कभी मेडिटेशन हो, म्यूजिक हो या फिर सिंपली साइलेंस, अरे ये भी काम करता है। और साथ साथ में रिलेशनशिप्स का बनता है रियल मैजिक, तो अपनों के साथ बिल्कुल कनेक्शन बना के रखो, फिर आप कहोगे कि अरे वाह, जब तक फैमिली का है सपोर्ट, ये है स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग्स गोना बी राइट, नथिंग इज गोना गो रॉन्ग।
2: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: हाँ निकल पड़े हेलीकॉप्टर पे निर्मल तुम्हें क्या हुआ तुम्हें एक राइड ले रही मेरे साथ
3: हाँ
2: तो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर आपके पास मौका जो शुरू हो चुका है 18 से आपको बता दें कि आपके पास मौका है कि आप डाउनलोड करें एमबीसी प्ले 1.0 और उसके बाद जब आप उसको डाउनलोड करते हैं आपको रजिस्टर करना होता है आपको एक मैसेज वापस आता है फ्रॉम एमबीसी ओटीटी बस आपको वही स्क्रीनशॉट लेना अपने फोन पर और भेजना 5499-1294 पर बस हमें वो मिलेगा उसको वैलिडेट करके आपका नंबर नोट किया जाएगा उसके बाद रफ्तार वाइज में यानी कि आज हर दिन एक्चुअली हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मौका दें और फिर वहां पर होंगे लकी ड्रॉ यानी कि होगा एक कोई शॉर्टलिस्ट फाइनल्स के लिए हो सकता है आपका नाम ये सब जानने के लिए आप हमारा रेडियो सुनते रहें लेकिन आज अगर आपका नाम नहीं आता तो कल एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं यानी कि इट्स ओपन टू एवरीबडी बस एमबीसी प्ले 1.0 पुराना वाला नहीं नया वाला आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद एमबीसी प्ले मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की तरफ से आपको मौका मिल सकता है कि आप उड़ान भरे ओहो ब्यूटीफुल नजारे और गाने हमारे
1: वेलकम टू आरएम2 रेडियो मस्ती
4: Radio Musty.
5: Hit music only.
4: Feels a musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: थैंक यू सो मच सारे मैसेजेस के लिए 5491294 पर. और नर्मनी यहाँ पर केविन आए कह रहे हैं कि मजा आ रहा है गानों के साथ. लेकिन ये जो टोपी वाला मास्टर था वो नाक में गाता है ना भाई. केविन साहब आपने सही पकड़ा. और वैसे कहते हैं कि आज मैं गाना नहीं गा सकता क्योंकि मेरी नाक खराब है. ऐसे बहुत सारे मीम्स बने उनके ऊपर. बट यस, ही इज गिवन सम ऑसम म्यूजिक एज वेल. 48 past 11 कुछ और मैसेजेस.
3: यस, वी हैव ललिता जी जो विश कर रहे हैं अपनी मिस दिशिता को बेस्ट विशेज सारे कलीग्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से. मिमी, करिश्मा, रूमी, अश्विनी, रूपा, सिनिका, जैना, लीना, कितने सारे नाम है.
2: वेरी गुड.
3: एंड ऑल द स्टूडेंट्स स्कूल ऑफ पोर्टलिस की तरफ से आपको विश कर रही है मिस दिशिता.
2: अच्छा, और पूजा का मैसेज उन्होंने कहा कि अच्छा तुम दोनों ये बताओ, अच्छा हमसे क्वेश्चन क्या बात है. वैसे कहते हैं कि बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी को क्या कहते हैं इंग्लिश में?
3: बड़ी मम्मी.
2: हाँ, बोलते हैं ना बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी.
3: हाँ,
2: क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेरे को पता लग गया, बताओ. मैक्सिमम, मिनिमम.
1: रेडियो मस्ती इन द मिक्स. Radio Musty feels a musty
4: in the mix.
2: ऐसे एक और क्वेश्चन है. अगर देखो ऐसा है कि पैदा हुए ट्विंस, एक का नाम केट तो दूसरे का नाम क्या?
3: केट.
2: हाँ, तो ट्विंस है ना, दूसरे का नाम क्या? अगर एक केट है, दूसरी हुए डुप्लीकेट.

0: 12 बज चुके हैं और आप सभी का स्वागत है रेडियो आपके लिए हमेशा 24/7 अभी के लिए नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के साथ स्टूडियो में आ गए हैं। आसान से मिलते हैं। नमस्कार
1: नमस्कार। 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज राज्यसभा में हुए प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के दौरान स्थानीय निकायों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष नेता जुलू रोंगाओ ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से कचरा संग्राहक और सामान्य कर्मचारी पदों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए। पीएनक्यू के दौरान 2026 भर्ती अभियान में अलग अलग स्थानीय निकायों में की गई नियुक्तियों का ब्यौरा मांगा गया। साथ ही रद्द किए गए आवेदनों की संख्या और जनवरी तथा फरवरी 2026 में सेवाएं समाप्त किए गए कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया गया। सदन में ये सवाल भी सामने आया कि क्या कुछ भर्ती किए गए लोग पुलिस मामलों का सामना कर रहे थे और क्या उनके पास साफ सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर नहीं था। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ लगाए गए भेदभाव के आरोपों के बाद संभावित जांच और उसके निष्कर्षों का मुद्दा भी चर्चा का हिस्सा रहा। कोंतोगल में रविवार शाम भड़की हिंसा के बाद मोका की सीआईडी ने पहली गिरफ्तारियां की हैं। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस समय इनमें एक व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। याद दिला दें कि कोंतोगल गांव में उस समय तनाव फैल गया था जब दो समूह आमने सामने आए थे। बताया जा रहा है कि कुछ लोग हेल्प ट्रक पर क्वाड बाइक चला रहे थे जबकि वहां इस तरह की गतिविधि प्रतिबंधित है। इसी दौरान गोली चलने की आवाज भी सुनी गई। दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और मौजूद एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वकवा में 25 वर्षीय रक विलियम का शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फ्लोरियाल के इस निवासी की लाश गानम वकवा स्थित एक मैदान के पास पाई गई। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार उसे कथित तौर पर चोरी करते हुए पकड़ा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन दबने के कारण मौत होने की पुष्टि हुई है। इस मामले में 18 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। विदेश स्तर पर कोंगो में एबोला के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 131 मौतें हो चुकी हैं जबकि 500 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं। अधिकारियों के अनुसार बीमारी अब कई नए इलाकों तक फैल चुकी है। युगांडा में भी एबोला के 2 मामलों और एक मौत की पुष्टि हुई। WHO ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। वहीं अमेरिका ने कोंगो के लिए सबसे ऊंचे स्तर की यात्रा चेतावनी जारी की है और प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों पर निगरानी बढ़ा दी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। मॉकेट रोड नोत्रदाम में 51 साल की 51 ईयर्स ओल्ड की ईरान नानक की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम के 4 बजे उनकी पत्नी कुदबकस नानक के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बमौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू दी एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: North, South,
5: 103.5.
4: East, West,
5: 96.4.
4: Center,
5: 99.4.
6: RM2
7: Radio Musti.
6: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
4: Radio Musti.
6: Feel the Musti.
0: Time check is 4:12 in the afternoon.
8: Retro Rhythm.
6: RM2. Radio Musti.

0: वही आर सिंपली ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और ऐसा लगता है कि जिंदगी ये जो प्लेलिस्ट है यूं ही चलती रहे, फिर चाहे जिंदगी अपनी चाल चलती रहे, हम भी आपके संग संग हैं हमेशा 24/7 भारत से एक मौका आपके साथ।
1: वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती।
2: Radio Musti.
3: Hits music only.
2: Feels a Musti.
0: चलिए यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की कॉम्बिनेशन, जहाँ पर कुछ 90s के गाने, कुछ एवरग्रीन सुपर हिट सॉन्ग्स और कुछ वर्जन्स भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपका साथ होना। जिंदगी चलती जाती है, रूप और रंग बदलती जाती है, लेकिन जब तक दिल में प्यार ना होना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। इसको चाहे कोई भी नाम ले दीजिए, प्यार, इश्क या फिर मोहब्बत।

0: रेट्रो रिदम।
1: जय गौर, फिर से मौका मिला आपके साथ जुड़ जाने का, कुछ कहने का, कुछ सुनाने का। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस संगीत की दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई साथी जरूर मिल जाता है। यहाँ पर हर गाना जैसे कि एक याद है, एक कहानी, पुराने जो सुनहरे लम्हे हैं, चाहे 90s के हो या फिर एवरग्रीन ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, वो सब वापस लौट कर आ जाते हैं। और साथ साथ में ये नए जमाने के कुछ फ्रेश कवर वर्जन भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकर आने के लिए। लंच टाइम हो या फिर ब्रेक टाइम, हम लेकर आए हैं दिल को छू जाने वाले वो गाने जो आप हमेशा गुनगुनाया करते हैं, दिल का हाल सुनाया करते हैं। तो बस वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और दिल को रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि ये है नॉस्टैल्जिया का परफेक्ट डोज जो आपको मिलता है हर रोज 12 से 2 के बीच में। ये है आप ही का अपना
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: कितने इन्फेक्शन होते हैं ना म्यूजिक, यानी एक बार आपके मेमोरी कार्ड में एंटर हुए तो उसके बाद वहीं रहते हैं ऑन द लूप मोड. यू आर लिसनिंग टू
1: रेडियो मस्ती.
0: जी आपको कुछ मैसेजेस और कहते हैं थैंक यू सो मच इन सब गानों के लिए. मैं तो कहता हूँ कि धन्यवाद आपका कि आप इतने प्यार से बिना भूले प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं. वहीं पर हमारे साथ हैं आनंद साहब, वाकवास हैं और एक गाने की रिक्वेस्ट करते हुए. चलिए जैसे जैसे वक्त जा रहा है कोशिश करेंगे सभी को शामिल करने के लिए. और वहीं पर कहते हैं कि एक प्यारा सा गाना

हो जाए तो बस मेरे हेमा जी थैंक यू सो मच मैसेज के लिए, और मेरा जवाब अरे कहीं यही तो गाना नहीं, अरे हो गया, यानी कि आपने जो प्रश्न पूछा तो ये है मेरा जवाब। मैं पूछा चाची आपको नहीं भूले, आपका मैसेज मैंने ले लिया है और फ़ोन भी बज रहे हैं, ट्रेन ट्रेन बातें हो रही है काफ़ी टाइम के बाद, अच्छा लगा मिलकर वापस एक बार फिर से। गुड आफ्टरनून यालेश हमारे साथ दे रहे हैं, नमस्कार आपको भी ललिता जी, एंड हैव अ ब्लेस्ड ट्यूजडे, मंगलवार सभी के लिए बहुत ही मंगल हो, ज़रूरी है दूसरों के बारे में भी सोचना, एंड उन सभी के लिए जो भी खाने पीने में थोड़ा सा समय व्यस्त कर रहे हैं बिता रहे हैं, बड़ा पिछी है एंड ये आपके लिए।

0: दाहिन श्वेता रविश प्रिशा लविशा एंड अवर फैमिली, थैंक यू सो मच। और वहीं पर एंजॉयिंग द सॉन्ग्स प्रिशा जी, अरे धन्यवाद। कितनी प्यासा गाना, बस अभी हॉस्पिटल में हूँ, ENT एंड लिसनिंग, बस सभी नर्सेस के लिए स्टाफ सिक्योरिटी एनी हमारे साथ दे रही है। नीता जी क्या हाल चाल है, काफ़ी टाइम के बाद। उन्होंने कहा कि बस क्या करें, जैसी वक्त मिलता है गाने सुनकर ये तो कहूँगी कि वक्त जरूर बदलता है।
1: Welcome to RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: Hit music only.
2: Feels a Musti.

0: Retro Rhythm.
1: उषा जी, आपके लिए हमने गाना जरूर चलाया. थैंक यू सो मच. आपने फ़ोन किया और जाने की रिक्वेस्ट की और बताया कि कितना स्पेशल है ना, 12 से 2 ये जो वक्त मिलता है ये अपने के लिए है. और कहते हैं कि जब ये मी टाइम शुरू होता है तो फिर लगता है कि सब कुछ सही तो है, बस नज़रिया बदलने की देर है. हर किसी चीज़ में आप अगर खूबसूरती ढूंढेंगे तो ज़िंदगी खूबसूरत. राइट, अभी के लिए आपके लिए ऑफ़र. मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड और एमबीसी की तरफ से आपको मौका मिलता है कि आप एक हेलीकॉप्टर राइड पे जा पाएं. यस, एमबीसी प्ले आपको डाउनलोड करना है, पुराना वाला वर्जन नहीं, एमबीसी प्ले 1.0. और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, फिर आपको एमबीसी ओटीटी से जो मैसेज आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए. व्हाट्सएप मैसेज करना होगा 5499-1294 पर और फिर आप रजिस्टर हो जाएंगे उस दिन के लिए. आज भेजा तो आज के लिए. बस आपको बताएं कि लगभग 5:30 के बाद खुलासा किया जाएगा कि आज कौन शॉर्टलिस्ट हुआ है, क्योंकि 29th of May होगा द ग्रैंड फाइनल और डिसाइड होगा कि जितने भी लोग शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं उनमें से कौन बनता है विजेता, किसको मिलती है हेलीकॉप्टर राइड. तो बस ये जो चांस है इसको मत गवाइए, अपने मैसेजेस भिजवाइए, आपको मिलेगी सारी जानकारी. बस हमारे साथ लगे रहें.
2: À l'occasion lancement MBC Play, préparez-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir la chance des grands gagnants pour un pot des tickets de chacun pour un hélicoptère Joyride exceptionnel dans région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et créez un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, restez à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voyer un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé un compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la chance, participez dans le grand final le 29 mai. MBC Play, avec ou partout. Pour plus d'informations, téléphone l'eau 400D 8000. Conditions applicables.
0: Retro Rhythm
3: RM2 Radio Musty.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: थोड़ी देर में परी आपको साथ देने के लिए एक से दो के बीच में बिल्कुल रेडी। थैंक यू सो मच, इतने प्यार से आपने साथ दिया। गुस्सा आ रहा है, मुंह फुला के बैठे हैं, तो हवा छोड़िए, दिल से दिल का नाता जोड़िए। फिर जल्दी मुलाकात होगी, अभी के लिए नमस्कार।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: टाइम चेक 1 PM देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
3: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार और आदाब। सुनिए संक्षिप्त समाचार। राष्ट्रसभा के कार्य आज जारी रखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि भानुदत्त बिहारी ने लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन को एक वन मैन कमीशन में बदल दिया था। सरकारी नेता आज राष्ट्रसभा में विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। ये प्रश्न विभिन्न नगर पालिकाओं और जिला परिषदों में भर्ती किए गए रिफ्यूज कलेक्टर और जनरल वर्कर्स की संख्या से संबंधित रहा। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कुछ स्थानीय निकायों और अस्थाई आधार पर नियुक्त लगभग 1,500 कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट्स समाप्त कर दिए गए थे क्योंकि भर्ती प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि ये कदम कानूनी सलाह मशवरे करने के बाद उठाए गए। प्रधानमंत्री ने 2026 की भर्ती प्रक्रिया के बाद अस्वीकृत उम्मीदवारों की सूची भी सदन में पेश की। साथ ही जनवरी और फरवरी 2026 में जिन भर्ती कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई उनकी संख्या पर भी उन्होंने जानकारी दी। राष्ट्रसभा में आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम पहली पढ़त पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पेश करने वाले हैं। इस विधेयक का उद्देश्य मॉरिशस के राष्ट्रपति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन नियुक्त करने की अनुमति देना है जो संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करेगा और सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। इसमें विशेष रूप से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र

0: तथा संस्थाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि चुनावी सुधार इस विधेयक का हिस्सा नहीं होगा। कल नया चांद नजर आया, जिससे मुसलमानों के लिए इस्लामिक कैलेंडर का अंतिम माह धुलहिजा शुरू हो चुका है। ये दुनिया भर में मुसलमानों के लिए बड़ा ही पाक महीना माना जाता है। इस माह के दौरान हज अदा किया जाता है। अराफात का दिन भी इसी महीने पड़ता है और ईद उल अधा भी, जो कि कुर्बानी का प्रतीक है। विदेश की खबरों में, कोंगो गणराज्य में एबोला महामारी के कारण कम से कम 131 लोगों की मौत हो गई है। वहाँ करीब 513 संदिग्ध मामले पाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे आपात स्थिति करार दिया है। युगांडा में भी इस घातक बीमारी के 2 मामलों का पता लगाया गया है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। मार्केट रोड नोत्रदाम में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के जनाब ईरान ननक जो बीबी क्वाफेयर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज शाम 4 बजे उनकी बीवी खुदाबख्स ननक के मकान मार्केट रोड नोत्रदाम से उठाकर दफनाने के लिए बुआमौशों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। रॉ रोड घोंबे में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के जनाब महमूद सदुल्ला जो महमूद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज सुपहर 3:30 बजे उनके मकान रॉ रोड घोंबे से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए घोंबे की मस्जिद और दफनाने के लिए कपमारोह का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV. Retro Rhythm.
2: RM2. Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
1: Retro rhythm. So well friends, time to take you down memory lane. 1:08 हो गए हैं ट्यूसडे का ये खूबसूरत सा पहर जहां पर हम लेकर आए हैं कुछ प्यारे गाने. तो चलिए आपको लेकर चलेंगे एक बार फिर उन गलियों में जहां पर मीठी मीठी यादें कर रही हैं आपका इंतजार कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के साथ. आपके म्यूजिकल हम सफर हम बन रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती. सो मैं हूं परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर रेट्रो रिदम. उन्हीं यादों को एक बार फिर आपके लिए हम पेश कर रहे हैं कुछ प्यारे गाने जो हमेशा से रहे हैं दिल के बहुत ज्यादा करीब. अभी के लिए किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजें एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म समुंदर. आप सभी के नाम जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

So, well, beautiful mix of music आपके लिए, जहां पर कुछ प्यारे गाने हम लेकर आए हैं. Be it the 70s, 80s या फिर 90s, सारे म्यूजिक का फ्लेवर आपको इस वक्त मिलने वाला है. बिकॉज इट्स टाइम फॉर योर रेट्रो रिदम, जहां पर म्यूजिक भले ही पुराना हो लेकिन उसकी फीलिंग्स आज भी उतनी ही ताजी है. अभी के लिए आशा भोसले अनवर की आवाज़ें, एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मीला जी हमारा साथ दे रही हैं आप, सो ये गाना होगा आपके नाम. एंड वैस आपको भी गुड विशेज एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. साथ ही यहाँ पर गाना फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, भगवत विदेशी एंड अनुशाखिद मोतवा से हमारा साथ दे रहे हैं, गाना आपके नाम. मिस्टर देव पेरिस से अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो वेल, अभी के लिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग डेडिकेटिंग इसे आपके नाम. नॉस्टैल्जिक फीलिंग को हम यहाँ पर ताज़ा कर रहे हैं, बिकॉज टाइम ही ऐसा है 12 से लेकर 2 बजे तक. इट्स टाइम फॉर योर रेट्रो रिदम. अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ टिल 4 PM.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: तो वेल फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको कहा 70s, 80s या फिर 90s, यहाँ पर आपको हर फ्लेवर मिलने वाला है। इट्स टाइम फॉर योर रेट्रो रिदम, जहाँ पर आपकी इन खूबसूरत यादों को हम ताज़ा करते हैं, टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन विद सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स। मैं हूँ परी आपके साथ, और अभी के लिए यहाँ पर कविता जी हमारा साथ दे रही हैं। आप भी अ ग्रेट फैन ऑफ कुमार सानू, सो दिस वन गोज आउट फॉर यू, और डेडिकेट करना चाहेंगे इसे फॉर योर लवली हबी कवीश। उनके लिए बहुत सारा प्यार, और आज का दिन है स्पेशल, और 19th ऑफ मे ही सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, सो उनके लिए गुड विशेज एंड बहुत सारा प्यार। ये गाना उनके नाम, साथ ही यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कुछ और फ्रेंड्स। हेमा जी हमारा साथ दे रही

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: एंड वेल एंजॉयिंग दिस इलेक्शन. आप है रोशनी जी, दिल में हो तुम, यही तो हम आपसे भी कहना चाहते हैं, यानी कि हमारे डियर लिसनर्स जो हमेशा हमारा साथ देते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द एप्रिसिएशन, क्योंकि अगर आप है तभी तो हम है. So, बस इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखिए. और कहते हैं ना कि प्यार बाटने से बढ़ता है, तो हम तो बस प्यार के भूखे हैं. आपका प्यार हम तक ऐसे ही पहुंचाते रहिए और keep listening to Radio Masti. यहाँ पर बेस्ट विशेज आ रही है फॉर तनवीर. आज 19 साल यानी कि 19 ईयर्स के हुए हैं. बेस्ट विशेज ये है फ्रॉम सिस्टर आयशा, तेजल, रायना, भाई रायन, दादी अनिष्ठा एंड सभी ताराचंद, गंगा बिसन फैमिलीज कटरबोन से लेकर आए हैं उनके लिए स्पेशल विशेज एंड बहुत सारा प्यार. साथ ही यहाँ पर रागिनी जी साथ दे रही हैं. आप भी नाम में है रागिनी, क्या बात है. तो चलिए यहाँ पर हम भी तो कुछ राग छेड़ रहे हैं, कुछ गाने ऐसे जो हमेशा से रहे हैं खास एंड स्पेशल. सो नेक्स्ट ब्यूटीफुल ट्रैक, और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. उसके बाद म्यूजिक थोड़ा सा बदलता हुआ, हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा बदलता हुआ. आफ्टर रेट्रो रिदम इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज, बी टाउन के लेटेस्ट अपडेट्स और साथ में कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स आपके लिए टिल 4 पीएम ऑन रेडियो मस्ती. साथ देते रहिए, मैं हूं परी आपके साथ, और इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस का ऑन 5499 1294. RM2
1: Radio Musty feels a musty.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musty.
5: Feel the Musty.
6: Time check, 2 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें याचना से आपको नमस्कार.
7: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. राज्यसभा के कार्य आज जारी रखे जा रहे हैं. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब देते हुए कहा कि भानुदत्त बिहारी ने लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन को एक वन मैन कमीशन में बदल दिया है. ये प्रश्न विभिन्न नगर पालिकाओं और जिला परिषदों में भर्ती किए गए रिफ्यूज कलेक्टर्स और जनरल वर्कर्स की संख्या से संबंधित रहा. प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कुछ स्थानीय निकायों और अस्थायी आधार पर नियुक्त लगभग 1,500 कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिए गए थे क्योंकि भर्ती प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था. रविवार रात को कांटोरेल में हुई हिंसक वारदातों के बाद मोका की सीआईडी की टीम ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है और हिरासत में रखा है. इनमें से एक को गिरफ्तारी के बाद एक क्लिनिक में भर्ती किया गया. रविवार रात को कांटोरेल में दो टोलियों के बीच बहस शुरू हुई. इसका कारण वहां के हेल्थ ट्रैक पर क्वाड बाइक्स का प्रयोग है जिसकी वहां सख्त पाबंदी है. मामला बहुत जल्द बिगड़ गया. गोलियों की आवाज़ सुनाई दी. दो वाहनों को आग के हवाले किया गया और एक पुलिस अफसर घायल हुआ जो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था. राष्ट्रसभा में आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम पहली पढ़त पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पेश करने वाले हैं. इस विधेयक का उद्देश्य मॉरिशस के राष्ट्रपति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन नियुक्त करने की अनुमति देना है जो संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करेगा और सिफारिशें प्रस्तुत करेगा. इसमें विशेष रूप से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र तथा संस्थाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा. हालांकि चुनावी सुधार इस विधेयक का हिस्सा नहीं होगा. ये विधेयक केवल संविधान की समीक्षा पर केंद्रित है.

0: केंद्रित रहेगा। विदेशी समाचारों में कोंगो में आपात स्थिति की घोषणा की गई है। वहां के गणराज्य में इबोला महामारी के कारण कम से कम 131 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां करीब 513 संदिग्ध मामले पाए गए हैं, जिनके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई चलाई जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसी आपात स्थिति करार दिया है। युगांडा में भी इस घातक बीमारी के 2 मामलों का पता चला है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। मॉकेट रोड नोथ्रदाम में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के श्री ईरान ननक जो बेबेक्वाफ के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनकी पत्नी कुलाबक्स ननक के मकान मॉकेट रोड नोथ्रदाम से उठाकर दफनाने के लिए बामोशों का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। अवेन्यू बुगेनविलियर तमारे में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री लाल देव जगन्नाथ जो मोसलमान VRS कास्कावेल के रहने वाले थे और जो पत्नी के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी गुरुवार को दिन के 1:30 बजे उनकी बेटी करुणा जगन्नाथ रंजीब के मकान एवेन्यू बुगेनविलियर तमारे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन थर्सडे एट 1:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feel the Musti. Radio Musti.

0: और चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के बारे में हम बात करेंगे, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। वो जल्द ही अपना शो इंडियाज गॉट टैलेंट 2 लेकर वापस आ रहे हैं। शो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है। इसी बीच इंडियाज गॉट टैलेंट 2 के सेट से कुछ फोटोज इंटरनेट पर छाई हुई है, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ भी नजर आ रहे हैं। फोटो देखने के बाद फैंस इस पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। दरअसल ट्विटर पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रही है, जो इंडियाज गॉट टैलेंट 2 के सेट से है। इस वायरल फोटो में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शर्वरी पैनल में बैठे नजर आ रही हैं, और वहीं उनके साथ समय रैना के करीबी दोस्त बलराज सिंह घाई और आशीष सोलंकी भी साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि इस फोटो में समय रैना नहीं नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आलिया और शर्वरी अपनी अपकमिंग फिल्म अल्फा को प्रमोट करने के लिए वहां पहुंची है, लेकिन AI का जमाना है एंड वी नेवर नो कि कौन सी जो फोटोज अब वायरल हो रही है वो रियल है या फिर फेक। लेकिन अभी के लिए तो चर्चाएं बनी हुई है दैट ये दोनों नजर आ सकती है इंडियाज गॉट टैलेंट 2 में। सो वेल दोस्तों, अभी के लिए बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं परिया आपके साथ एंड यू आर लिसनिंग टू बॉम्बे टॉकीज।
1: More music is in the mix.
2: Aaj azadi hai.
3: Bombay Talkies
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Bombay Talkies Radio Musti
1: Radio Musti
2: गॉड मैं तो डर गई सच में, मुझे लगा ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया।
3: देखो ऐसा है कि वो फीलिंग होनी चाहिए जब हम बात करते खाने पीने की, सो जस्ट इमेजिन वो सुगंध आनी और साथ में वो भूख बढ़ जाती है। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेलीकॉप्टर राइड पे निकल पड़े अपने साथी के साथ, सो इज योर चांस। एमसी प्लेन मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड आपके लिए लेकर आ रहा है ये चॉइस।
2: सो वेल यहाँ पर आपको मिल रहा है खास मौका जहाँ पर आपको बस हमारा जो ये ऐप है इसे डाउनलोड करना है और इसका नाम है एमबीसी प्ले 1.0। इसको आपको डाउनलोड करना है। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे आपको एमबीसी ओटीटी से एक मैसेज मिलेगा। इस मैसेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और डायरेक्टली इसे भेजना है ऑन 5499 1294।
3: देखो जब ये एमबीसी प्ले आप डाउनलोड करेंगे तो पुराने वाला नहीं, ये 1.0 हाँ, yes, ये ध्यान रखना है। और जब आप साइन इन करेंगे तो फिर आपको मैसेज मिलेगा। मैसेज यानी कि अपने फोन पर स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए व्हाट्सएप मैसेज और उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। बस 5:30 बजे के बाद याद रखिए कि आपको हो सकता है ट्रेंड ट्रेंड फोन आ जाए और शॉर्टलिस्ट हो जाए फॉर द फाइनल्स होगा ऑन द 29th। और उसके बाद उसका नाम आ सकता है जो होगा लक का सरताज, मारेगा उड़ान जैसे कोई बाज। देखते हैं क्या कमाल होगा। Stay tuned and more surprises coming for you. RM2
1: Radio Musti In the mix. Radio Musti In the mix.

0: RM2 Radio Musti.
1: Hit music only.
2: Radio Musti feels a musti.
3: What?

0: Bombay Talkies
1: Radio Musti
2: Radio Musti
3: वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज जिस मुकाम पर है वो एक नेक्स्ट लेवल है। 83 इयर्स के हो चुके हैं लेकिन इस उम्र में भी लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज करवाए हैं और शायद इन रिकॉर्ड्स को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो अमिताभ बच्चन का नाम गिनीज बुक में दर्ज है। 2009 में आई पा के लिए बिग बी और उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने यह अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अमिताभ बच्चन का नाम गिनीज बुक में सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि सिंगिंग के लिए भी दर्ज है और उन्होंने 19 सिंगर्स के साथ मिलकर श्री हनुमान चालीसा को अपनी आवाज दी थी। वहीं अमिताभ के नाम बॉलीवुड में सबसे ज्यादा बार डबल रोल निभाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। 1983 में आई फिल्म महान में अमिताभ बच्चन ने ट्रिपल रोल निभाकर दर्शकों को हैरान कर दिया था। वहीं अमिताभ बच्चन का नाम एक और जो बड़ा रिकॉर्ड है वो दर्ज है और वो फिल्म फेयर अवार्ड्स में लीड एक्टर के तौर पर सबसे ज्यादा बार यानी कि 42 टाइम्स नॉमिनेट होने वाले पहले एक्टर है। उन्होंने अपने करियर में अब तक 16 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 4 नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। वहीं बिग बी को 1999 में बीबीसी न्यूज के एक ग्लोबल ऑनलाइन पोल में स्टार ऑफ द मिलेनियम चुना गया था और इस दौरान उन्होंने चार्ली चैपलिन और मार्लन ब्रांडो जैसे दिग्गज कलाकारों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया था। अमिताभ बच्चन ऐसे पहले एशियाई एक्टर है जिनका जो वैक्स स्टैचू है वो लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया है और ये उपलब्धि ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात रही। एक्चुअली ही वॉज द फर्स्ट एक्टर, उसके बाद तो अब बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स हैं जिनका वहाँ पर स्टैचू बना है लेकिन अमिताभ बच्चन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एशियन एक्टर्स जिनका ये स्टैचू, वैक्स स्टैचू वहाँ पर बना। अमिताभ की एक खास बात है कि वो दोनों हाथ से लिख सकते हैं। जी हाँ, दोनों ही हाथों से वो लिख पाते हैं और उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर अपने इस टैलेंट को दिखाया था जहाँ वो दोनों हाथों से एक साथ आसानी से लिखते नजर आए थे। सो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे मिलेनियल स्टार ने अपने नाम करवाए हुए हैं और 83 की उम्र में ही इज स्टिल सो फिट एंड अभी भी दिन और रात काम कर रहे हैं। और उनका एक पोस्ट भी था जहां पर वो रेगुलरली ट्वीट करते रहते हैं और कहते हैं कि घर रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता, बस काम करते रहना ये उनकी लाइफ का एक ऐसा रूटीन है जिसे वो हमेशा करते रहना चाहते हैं। सो वेल, हैट्स ऑफ टू अमिताभ बच्चन एंड उनके सभी फैंस जो हमारा साथ दे रहे हैं। चलिए अभी के लिए कुछ और प्यारे गाने आपके नाम थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं चारों की ओर। सवाल अभी के लिए बता दें आपको, दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज़, मैं हूं परी आपके साथ, साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 PM। यह है आपका अपना आरएम टू रेडियो मस्ती। दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ अमिताभ बच्चन। एंजॉय दिस वन।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
6: Time check, 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें याचना से आपको नमस्कार.
7: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. राष्ट्रीय सभा के कार्य आज जारी रखे जा रहे हैं. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि बानू दत्त बिहारी ने लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन को एक वन मैन कमीशन में बदल दिया था. सरकारी नेता आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे. ये प्रश्न विभिन्न नगर पालिकाओं और जिला परिषदों में भर्ती किए गए रिफ्यूज कलेक्टर्स और जनरल वर्कर्स की संख्या पर आधारित था. प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कुछ स्थानीय निकायों और अस्थाई आधार पर नियुक्त लगभग 1,500 कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट्स समाप्त कर दिए गए थे क्योंकि भर्ती प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कदम कानूनी सलाह मशवरा करने के बाद उठाया गया. प्रधानमंत्री ने 2026 की भर्ती प्रक्रिया के बाद अस्वीकृत उम्मीदवारों की सूची भी सदन में पेश की. साथ ही जनवरी और फरवरी 2026 में जिन भर्ती कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई उनकी संख्या पर भी उन्होंने जानकारियाँ दी. रविवार रात को कोंतोरेल में हुई हिंसक वारदातों के बाद मोका की सीआईडी की टीम ने चार लोगों को हिरासत में रखा है. इनमें से एक को गिरफ्तारी के बाद क्लिनिक में भर्ती कराना पड़ा. रविवार रात को कोंतोरेल में दो टोलियों के बीच बहस शुरू हुई. इसका कारण वहां के हेल्थ ट्रैक पर क्वाड बाइक्स का प्रयोग है जिसकी वहां सख्त पाबंदी है. मामला बहुत जल्द बिगड़ गया. गोली की आवाज़ सुनाई दी, दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और एक पुलिस अफसर घायल हुआ जो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था. आज सुबह हमें अपने एक सहयोगी मेविन प्रभाकरन, जिन्हें उनके मित्र आया के नाम से जानते थे, के निधन की दुखद खबर मिली. मेविन पिछले चार वर्षों से प्रोडक्शन विभाग में ऑडियो विजुअल असिस्टेंट के रूप में काम करते थे. वे 26 साल के थे, हसमुख और मददगार स्वभाव के थे और एक जिम्मेदार कर्मचारी भी जो हमेशा मेहनत से काम करते थे. हम इस अत्यंत कठिन समय में उनके परिवार, मित्रों, सहयोगियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं.

0: इस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यह स्पष्ट करना चाहती है कि उसने इस दुखद घटना की परिस्थितियों को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही कुछ अफवाहों और टिप्पणियों की जानकारी ली है। ये बातें न तो बुनियादी हैं और न ही सही, और इससे परिवार तथा सहयोगियों को ज़्यादा खेद पहुंच रहा है। जनता से अनुरोध है कि शोकग्रस्त परिवार की गरिमा का सम्मान करें। MBC कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की धमकी, उत्पीड़न, डराने, धमकाने या अनुचित व्यवहार के आरोपों को बहुत गंभीरता से लेती है और इस मामले से निपटने के लिए प्रक्रियाएँ लागू की गई हैं। इस कठिन समय में संस्था की तत्काल प्राथमिकता सगे संबंधियों और प्रभावित कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करना है। MBC सभी से करुणा, संयम और सम्मान बनाए रखने की अपील करती है। विदेश में कोंगो गणराज्य में इबोला महामारी के कारण कम से कम 131 लोगों की मौत हुई है। वहां करीब 513 संदिग्ध मामले हैं, जिसके लिए एक बृहद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभियान शुरू किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे आपात स्थिति करार दिया है। उधर युगांडा में भी इस घातक बीमारी के 2 मामलों का पता चला है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: ऑल। और इसके लिए आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करना है MBC Play 1.0। इसे आपको ध्यान से सुनना है, MBC Play जो पुराना वर्जन है ये नहीं, आपको डाउनलोड करना है MBC Play 1.0। और इसे डाउनलोड करने के बाद आपको एक रजिस्टर मैसेज मिलेगा जो है MBC OTT से, और जो ये रजिस्टर मैसेज आपको आता है उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, भेजना है आपको 54991294 पर। मंडे टू फ्राइडे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं फॉर द ग्रैंड फिनाले जो होने वाला है ऑन 29th of May। इट्स वेरी इजी, बस आपको स्क्रीनशॉट लेना है और ये स्क्रीनशॉट हम तक पहुंचाना है 54991294 पर। मंडे टू फ्राइडे शाम 5:30 के आसपास ये जो शॉर्टलिस्टेड हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनको कॉल लगाया जाएगा और उनका नाम बताया जाएगा, और उसके बाद क्या पता आपका नाम शामिल हो जाए इन द ग्रैंड फिनाले जहां पर आप जीत सकते हैं अ हेलीकॉप्टर राइड फॉर अ कपल। सो जैसे हमने कहा कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ईच डे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आज आप सुनते हैं कि 5:30 हमारा जो प्रोग्राम है रफ्तार वाइब्स, इसमें आपका नाम नहीं आया है, सो नॉट टू वरी, अगेन यू कैन सेंड योर स्क्रीनशॉट नेक्स्ट डे। आप ये स्क्रीनशॉट फिर भेजिए, जब तक आप चाहे इसे आप हम तक पहुंचा सकते हैं, एंड यू कैन गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ग्रैंड फिनाले जो होने वाला है ऑन 29th of May राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती, जहां पर आप जीत सकते हैं हेलीकॉप्टर राइड फॉर अ कपल। सो अभी के लिए फटाफट डाउनलोड कीजिए MBC Play 1.0, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हमें भेजिए, यानी कि जब आप ये डाउनलोड करेंगे आपको इसमें रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा OTT मैसेज, इस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेना है, हमें भेजना है। ओ माय गॉड, कितनी बातें कर ली मैंने, एंड आई होप आप समझ ही गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और हमें भेजिए ऑन 54991294।
1: Radio Musty feels a musty in the mix.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, इट्स 324, यहाँ पर आपके मैसेजेस डेडिकेशंस भी आ रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप हमारे गेम में, जहाँ पर आप जीत सकते हैं हेलीकॉप्टर राइड फॉर अ कपल. शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स, और उसके बाद होने वाला है लकी ड्रॉ जो होगा ऑन 29th ऑफ मे. सो कीप पार्टिसिपेटिंग. MBC प्ले 1.0 डाउनलोड करें, और फिर रजिस्टर करने के बाद जो मैसेज आपको आता है उसका स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिए ऑन 5499 1294. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग. अभी के लिए तो बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं. एक्ट्रेस जानवी कपूर के साड़ी अवतार में अलग अलग लुक्स को देखकर दंग रह जाएंगे उनके फैंस. कैसे अपने साड़ी लुक से जानवी ने फैंस का दिल जीता और इंटरनेट पर अपना जलवा बिखेरा, बस इसी की चर्चा चल रही है आजकल. सो आपको बता दिया था, जानवी कपूर अक्सर हम उन्हें देखते रहते हैं डिफरेंट अवतार में. लेकिन जब बात हो बॉलीवुड के फैशन की और एक्ट्रेस का साड़ी लुक में ग्लैम दिखने की, तो फिर जानवी कपूर का नाम इसमें सबसे पहले आता है. जानवी कपूर अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर साड़ी लुक में फोटोज अपलोड करती रहती हैं, और जेन जी एक्ट्रेस का ये ट्रेडिशनल लुक काफी पसंद करती हैं और बार बार इन पिक्चर्स से उनका दिल जीत लेती है जानवी कपूर. तो जानवी कपूर ने सारी अवतार की जो कह सकते हैं कि गरिमा है उसे बनाए रखा है, जहां पर वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपनी साड़ीज को कैरी करती है. और ये तो हम जानते हैं, पंजाबी फादर एंड साउथ इंडियन ममा. सो उनका ये जो ट्रेडिशनल अवतार है ये एक डिफरेंट लेवल पर हिट करता है. बल्कि और आपको बता दें कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो स्टाइल है, उनकी जो ग्रेस है, उसकी तारीफ हर तरफ होती रहती है जब वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आती है. भारी और डिज़ाइनर साड़ीज़ में जानवी का चेहरा और भी ज़्यादा खिलकर सामने आता है. और अगर हम फैशन सेंस की बात करें, ट्रेंडिंग फैशन सेंस की बात करें, तो साड़ी के साथ साथ उनका जो ग्लैमरस लुक है उसमें एक अलग सी खासियत नज़र आती है. जानवी कपूर का साड़ी अवतार हमेशा अलग अंदाज में सामने आता है, और इस लुक में जानवी बेहद रॉयल नजर आती है. ट्रेडिशनल साउथ लुक, हैवी ज्वेलरी, बिंदी, मिनिमल मेकअप और चेहरे पर मासूमियत, सब कुछ परफेक्ट कंबाइन करता है. और जानवी कपूर के साड़ी को ड्रेप करने का जो तरीका है वो हमेशा काफी ग्रेसफुल और एलिगेंट रहता है. इसी के साथ उनका नो हैवी मेकअप लुक उनके अवतार को चार चांद लगा देता है. और डिजाइनर साड़ीज के अलावा जानवी प्लेन कॉटन प्रिंटेड या सिल्क की साड़ी पहनती है, तभी भी वो श्रीदेवी का जो 80s वाला लुक है उसे रिक्रिएट करती है, और फैंस को ऐसा लगता है कि वो काफी अपनी मामा की तरह है. और ये तो हम जानते हैं दैट श्रीदेवी, उन्हें तो हमेशा हम याद करते हैं. एंड जब जानवी इस तरह के ड्रेसेस में नजर आती है, इस तरह की साड़ीज में नजर आती है, तो हर कोई उन्हें कंपेयर करता है अपनी मामा श्रीदेवी के साथ. मॉडर्न ड्रेसेस और हैवी मेकअप लुक जानवी पर खूब जचता है, लेकिन साड़ी में उनका जो उनकी जो खूबसूरती है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो अलग ही खिलता है. हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म पैडी के ट्रेलर लॉन्च में जानवी कपूर एक ब्लू कलर की साड़ी में सोशल मीडिया पर नजर आई, जहां पर उनके काफ़ी फोटोज़ जो हैं वो वायरल हुए. और आपको बता दें दैट यहां पर जो फैंस हैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे थे उनके इस पिक्चर्स के नीचे, और किसी ने कहा कि ट्रेडिशनल लुक हो तो बिल्कुल जानवी जैसा हो. So well, this one was for all the fans of Janvi Kapoor.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: And well friends, अभी के लिए वक्त हो चला है कि मैं आपसे लूँ अलविदा. We also have रितेश, श्यामा, दीपा, तनीश, आदर्श, निष्ठा, युष्रा, जयश्री, वशिष्ठ, याशना एंड ऑल जीवन फैमिली पहले से हमारा साथ दे रहे हैं और कहते हैं अगला गाना हो जाए फॉर एवरी वन कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ. थैंक यू सो मच. गाना आपके नाम एंड विशिंग यू वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. भगवत विदेशी जी कहते हैं कि साथ दे रहा हूँ तायाक से एक प्यारा सा गाना. अनुषा खेदन मोहतबा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आप, उनके नाम एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम मिस्टर विदेशी आपके लिए भेज रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा मैसेज. एंड वेल यहाँ पर विजया जी कहते हैं कि धुरंधर वन के गाने अगर देखा जाए तो धुरंधर टू से ज्यादा बेटर है एक्चुअली. यस, और काफी पॉपुलर भी हो गए थे वो गाने. सेकेंड वाले ज्यादा रीमिक्सेस हैं लेकिन यस, धुरंधर फैंस को तो बस म्यूजिक से मतलब है. बस धुरंधर में गाने चलते रहे और दिल तक पहुंचते रहे यही चाहते हैं. सो थैंक यू सो मच विजया जी, इतने प्यार से आप हमारा साथ दे रही हैं एंड थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस मैसेज टू अस. साथ ही ललिता जी कहती हैं घर से वापस, काम से वापस घर आ रही हूँ और ड्राइविंग एंड लिसनिंग टू द सॉन्ग्स. डेडिकेटिंग गाना फॉर सिमी, रूपाली, पिंकी, सोनी, दिशता, सकीला, सुनिका, रवि, एशले, ललिता एंड सभी जीतन परिवार के नाम एक ब्यूटीफुल सा गाना. और साथ ही यहाँ पर मिस्टर कुमार देवीचंद साथ दे रहे हैं आप. डेडिकेटिंग गाना फॉर लवली डैड श्याम देवीचंद ऑफ पे बे, उनके लिए प्यार एंड बहुत सारी गुड विशेस.
3: रेडियो मस्ती, हिट म्यूजिक ओनली. Feels a musty. Radio Musty.
2: And well, with this track, it's time for Pari to say goodbye. आ रही है मनीष मालेकर और अवतार वाइब्स. कहीं मत जाइए, stay well connected. मुलाकात होगी आपसे कल same place same time 2 से लेकर 4 बजे तक in your Bombay Talkies.

0: चलिए बिकिनी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ याचना। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीषमा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। वाक्वा के सरू प्लेन में कल सुबह क्या हुआ, ये सवाल अभी भी स्पष्ट नहीं। 20 साल के व्यक्ति के शव एक खाली जमीन में मिली। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वो उस व्यक्ति के घर में चोरी के इरादे से घुसा था जिसने उसका पीछा किया। भागने के लिए उसने एक दीवार लांघने की कोशिश की और गिर गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नेक कंप्रेशन यानी गले पर दबाव से मौत की पुष्टि हुई है। 18 साल के एक छात्र को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। रविवार रात को कंटोरेल में हुई हिंसक वारदातों के बाद मोका की सीआईडी की टीम ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से एक को गिरफ्तारी के बाद एक क्लिनिक में भर्ती कराना पड़ा। रविवार रात को कंटोरेल में 2 टोलियों के बीच बहस शुरू हुई। इसका कारण वहां के हेल्थ ट्रैक पर क्वाड बाइक्स का प्रयोग है जिसकी वहां सख्त पाबंदी है। मामला बहुत जल्द बिगड़ गया। गोली की आवाज सुनाई दी, 2 वाहनों को आग के हवाले किया गया और एक पुलिस अफसर घायल हुआ जो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। आज सुबह हमें अपने एक सहयोगी मिविन प्रभाकरन, जिन्हें उनके मित्र आया के नाम से जानते थे, के निधन की दुखद खबर मिली। मिविन पिछले 4 वर्षों से प्रोडक्शन विभाग में ऑडियो विजुअल असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। 26 साल के थे। हंसमुख और मददगार स्वभाव के थे और एक जिम्मेदार कर्मचारी भी जो हमेशा मेहनत से काम करते थे। हम इस अत्यंत कठिन समय में उनके परिवार, मित्रों, सहयोगियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। एमबीसी यह स्पष्ट करना चाहती है कि उसने इस दुखद घटना की परिस्थितियों को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही कुछ अफवाहों और टिप्पणियों की जानकारी ली है। ये बात न तो बुनियादी है और न ही सही, और इससे परिवार तथा सहयोगियों को ज्यादा खेद पहुंच रही है। जनता से अनुरोध है कि शोकग्रस्त परिवार की गरिमा का सम्मान करें। एमबीसी कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की धमकी, उत्पीड़न, डराने धमकाने वाली वारदात या अनुचित व्यवहार के आरोपों को बहुत गंभीरता से लेती है और इन मामलों से निपटने के लिए प्रक्रियाएं लागू हैं। इस कठिन समय में संस्था की तत्काल प्राथमिकता सगे संबंधियों और प्रभावित कर्मचारियों को सहयोग देना है। एमबीसी सभी से करुणा, संयम और सम्मान बनाए रखने की अपील करती है। विदेशी खबरों में, कंगो गणराज्य में इबोला महामारी के कारण कम से कम 131 लोगों की मौत हो गई है। वहां करीब 513 संदिग्ध मामले हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए एक वृहद अभियान का आरंभ हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे आपात स्थिति करार दिया है। उगांडा में भी इस घातक बीमारी के 2 मामलों का पता चला है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार।

0: समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2,
4: Radio Mastery.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: RM2,
2: रेडियो मस्ती।
3: चार बजकर छह मिनट हुए हैं, ड्राइव मूवी से लिया गया ये गाना। वेलकम, स्वागत है आप सभी का न्यू रफ्तार वाइब्स ट्यूसडे का दिन 19 मई 2024 में। स्वागत एक बार फिर से मनीष मा की ओर से। आई गेट सम रियली रियली नाइस ट्रैक ट्यूनिंग जस्ट फॉर यू।

0: हथियार के बाद में सुवर्ण तिवारी भी साथ निभाते इस गाने को बावड़िया टेकर फ्रॉम द मूवी धड़क 2 यो वर्जुन आर एम टू रेडियो मस्ती। जैसे कि आप जानते हैं कि कल से शुरुआत हो चुकी है द एमबीसी प्ले का ये जो कैंपेन है, जी हाँ, लॉन्चिंग तो हमने कर लिया है। द मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एमबीसी इन कोलेबोरेशन विद मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ऑर्गेनाइजिंग फॉर यू द नेशन वाइड रेडियो कंपटीशन। यहाँ पर ऑडियंस को, हमारे लिसनर्स को अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है टू विन एक्सक्लूसिव helicopter joyride experiences over the south east region of Mauritius. So ladies and gentlemen, इसको जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है कि MBC Play का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो, और ये जो नंबर है 5491294 पर आपको मिलेगा ये MBC OTT नाम और ये MBC OTT WhatsApp के जरिए 5491294 पर आपको ये जो MBC OTT है उसका नंबर और नाम दोनों का स्क्रीनशॉट भेज कर आप हमें भेजिएगा ऑन दिस नंबर, और आप ऑटोमेटिकली इस ड्रॉ के लिए क्वालिफाई हो जाएगा जो 5:30 बजे हम करेंगे दो लोगों के बीच मुकाबला फॉर यू टू बी एबल टू बी क्वालिफाइड फॉर द लकी ड्रॉ।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2 रेडियो।

0: मस्ती।
1: तो चलिए जी, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया अभी तक हमारी जो MBC प्ले एप्लीकेशन है, कर लीजिए। अभी भी टाइम है, 5:30 बजे को है। दो लोगों को हम लेंगे on air actually, and then we'll gonna participate with both of them and see जो कि जिन लोगों ने actually जिस person ने सबसे quickest जवाब दिया है वो बन जाएगा qualified for the lucky draw. So all the best goes out to each and everybody participating with us. अब भेजिएगा अपने MBC OTT with the number and of course then screenshot and wait कीजिएगा 5:30 बजे इस शो में ही।
2: अरे वाह।

0: Beautiful song selections waiting for you, ladies and gentlemen. यहाँ पर 4:22 हो रहे हैं. आप जुड़े हैं RM2 Radio मस्ती के साथ. लेते एक छोटा सा ब्रेक. Then we'll be playing, of course, ये वाला नया गाना, पति पत्नी और वो. ये वाला सॉन्ग मेरे दिल के बहुत करीब है. आई लव इट. आई लव द बीट एंड आई होप यू ऑल्सो लव इट. एंड ऑफकोर्स यहाँ पर आपको करेज देने के लिए, जस्ट टू अकंपनी यू विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स और आपके काम में मदद करने के लिए हम तो यहाँ पर बैठे हैं. लेते हैं अभी के लिए छोटा सा ब्रेक. देन रूपती रानी कमिंग अप.
1: RM2 Radio Musti.
2: Dans le cadre AI Video Contest 2026, Mauritius Telecom peut inviter tous Mauriciens pour voter pour votre vidéo préférée. Après qu'ils aient fait une choisie à 10 plis bon création l'eau thème l'île Maurice de demain, à Steer, c'est où qui décider. Check pas Facebook Mauritius Telecom pour plus de détails ou soit al direct l'euro videocontest.telecom.mu pour get vision du top 10 finalistes, l'eau la santé, l'innovation, la vie communautaire et l'environnement. Date limite pour voter les 20 mai 2026. Mauritius Telecom AI Video Contest 2026, votez pour faire sa man vision la briller.
1: RM2 Radio Musti.

0: 4:30 बज रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं कि यार गाइस गेट रेडी फॉर एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, एमबीसी प्ले और मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड दे रहे हैं आपको एक्चुअली एक लकी कपल को हेलीकॉप्टर राइड जीतने का चांस। पार्टिसिपेट करने के लिए अभी के लिए आप डाउनलोड कीजिए द न्यू एमबीसी प्ले 1.0, द न्यू वर्जन। ओल्ड वर्जन जून में एक्सपायर्ड हो जाएगा। अभी के लिए आपको बस क्या करना है कि अगर आपने डाउनलोड कर दिया एप्लीकेशन को, रजिस्टर करने के बाद एमबीसी ओटीटी की तरफ से मोबाइल पर एक मैसेज मिलेगा आपके नाम के साथ, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर वीकडेज ओनली आप सेंड कर लो ऑन 549 and 1294 पर। आपको कहना चाहते हैं ऑल द बेस्ट, क्योंकि आज 5:30 बजे, जी हाँ 5:30 बजे फिर होगा फन क्वेश्चन राउंड। जो सबसे पहले सही जवाब देगा वो बनेगा द फाइनलिस्ट। वी कैन से यस सिलेक्टेड फॉर द ड्रॉ फॉर द फाइनल। या ऐसे ही सिलेक्ट होंगे 9 ऐसे लोग एंड देन विल बी डूइंग द ड्रॉ ऑन द 29th को। आप बी रेडी फॉर दिस आफ्टरनून 5:30 बजे हम मिलेंगे 2 लकी सिलेक्टेड कंटेस्टेंट के साथ टू प्ले एंड बी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, यानी कि लकी ड्रॉ के लिए देन फाइनल होगा। ओके, ऑल द बेस्ट गोज आउट टू एवरीबॉडी ट्यूनिंग टू आरएम2 रेडियो मस्तिन। थैंक यू सो मच फॉर द फोटोज एंड पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, कीप ऑन सेंडिंग इट।
1: Raftaar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2,
1: Radio Masti.

0: अवतार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: रेडियो मस्ती
3: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट
2: स्पोर्ट्स न्यूज लेटेस्ट अपडेट्स
4: स्पोर्ट्स न्यूज
5: रेडियो मस्ती इन द मिक्स
6: 4:30 हुए हैं यहाँ पर स्टूडियो में हाजिर हो चुके हैं अरविंद जी गुड आफ्टरनून टू यू फॉर द लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट्स ऑफ कोर्स
7: गुड आफ्टरनून आपको गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स सो आज प्रीमियर लीग में शायद हो सकता है कि बिना खेले आज कम से कम आर्सेनल चैंपियन बन जाए क्योंकि कल उसका मैच उसने अपना मैच जीता 1-0 से बर्नले के खिलाफ और अगर आज मैनचेस्टर सिटी गड़बड़ करता है तो सब चौपट और जश्न का माहौल होगा आर्सेनल के लिए बोर्नमाउथ मैनचेस्टर सिटी का स्वागत करेगा और चेल्सी खेलेगा स्पर्स के खिलाफ दोनों मैच अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं स्टार्टिंग विद बोर्नमाउथ मैनचेस्टर सिटी क्या है इसमें अगर

अगर बोर्नमुथ जीत जाता है तो बाय बाय लीग टाइटल मैनचेस्टर सिटी के लिए, और बोर्नमुथ पोजीशन करेगा टू चैलेंज लिवरपूल फॉर द चैंपियंस लीग, क्योंकि बोर्नमुथ अभी एक मैच कम खेलकर उसके पास है 55 पॉइंट्स, आज जीत गया तो आ जाएंगे 58 पॉइंट्स पर, और लास्ट मैच उसमें अगर लिवरपूल गड़बड़ करता है तो गया चैंपियंस लीग हाथ से, और मैनचेस्टर सिटी के लिए कोई इधर उधर नहीं, जीतना है नहीं तो आर्सेनल आज चैंपियन बन जाएगा। अब चेल्सी की बात करें, चेल्सी 10वें पोजीशन पे विथ 49 पॉइंट्स 36 मैचेस प्लेड, वो अगर अपना मैच जीतता है तो थोड़ा ऊपर आ सकता है एंड एक्सपेक्टिंग टू बी इन यूरोपा लीग या शायद कॉन्फ्रेंस लीग भी। 49 पॉइंट्स 52 हो जाएंगे, 52 सेम एज ब्रेंटफोर्ड, ब्रेंटफोर्ड ने एक मैच ज़्यादा खेला है, चेल्सी का गोल डिफरेंस अच्छा है ब्रेंटफोर्ड से, ब्राइटन के पास है 53, सो चेल्सी के लिए उम्मीद है, और स्पर्स टोटनहम हॉटस्पर के लिए चाहिए एक ड्रॉ कम से कम, अगर आज अपना मैच ड्रॉ करते हैं तो सेफ यानी सुरक्षित रिलीगेशन से दूर भाग जाएंगे, और ऐसे में वेस्ट हैम यूनाइटेड, बर्नले और वुल्व्स तो पहले से ही अलविदा कह चुके हैं प्रीमियर लीग को, और वेस्ट हैम यूनाइटेड भी आज रिलीगेट हो जाएगा अगर स्पर्स अपना मैच ड्रॉ करता है या तो अपना मैच जीतता है तो। सो बिग मैचेस खासतौर पर बोर्नमुथ वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी में अभी से ही कुछ और खबरें आने लगी हैं, मैनचेस्टर सिटी सेट टू रिप्लेस गार्डियोला विद मारेस्का, एंजो मारेस्का पेप गार्डियोला के अगले सीजन मैनेजर होगा, गार्डियोला जाना चाहता है, तो लेट्स सी क्या होगा आज के मैच के बाद, शायद गार्डियोला का जो लेगेसी है एज ए जीनियस इसको सुनने को मिलेगा फॉर एजेस फॉर इयर्स टू कम। इधर बहुत कुछ बातें हो रही हैं हैंडबॉल को लेकर, खासतौर पर मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले गोल को लेकर फॉरेस्ट के खिलाफ, और बोर्नमुथ के लिए उसका जो मैनेजर है ई राउला कह रहा है यूरो बेस्ट वे टू एंड बोर्नमुथ स्टे, वो जा रहा है, कहाँ जाएगा दिस इज द बिग क्वेश्चन। वो गैरी ओनेल के स्थान पे आया था लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो वो जा रहा है, कहाँ जाएगा बिग क्वेश्चन, कहीं लिवरपूल की ओर ना आ जाए, लेकिन लिवरपूल के बारे में खबर है कि आने स्लोट पर ही विश्वास है, तो इराओला की टीम उसकी हार नहीं हुई है, और अभी जब से उसने अंतोन सेमेन्यो को बेचा मैनचेस्टर सिटी से ट्रांसफर विंडो खुलने पर, बोर्नमुथ ए टॉप टीम इन द मेकिंग, और हु नोज ये लोग क्वालिफाई हो जाए फॉर द नेक्स्ट चैंपियंस लीग, हो सकता है, व्हाई नॉट। इसके अलावा फुटबॉल में आज खबर है कि बिग गेम स्कोरर स्टुअर्ट और कर्टिस स्कॉटलैंड के वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, और आपको बता दें स्कॉटलैंड की टीम वर्ल्ड कप में खेलेगी काफ़ी साल बाद, और रॉस स्टुअर्ट जो गोल स्कोर करता है बड़े बड़े मैचों में उसको रखा गया है, स्टीव क्लॉक ने टीम का ऐलान किया है। टीनेजर विंगर फिनले कर्टिस को भी रखा गया है, और हार्ट्स के ग्रेग गोर्डन तीन गोलकीपरों में से एक होगा। साउथहैम्पटन का स्ट्राइकर स्टुअर्ट भी सीनियर इंटरनेशनल अपीयरेंस कर रहा है, तो क्लॉक के खिलाड़ियों में प्रीमियर लीग के काफ़ी खिलाड़ी हैं, और इसमें रेंजर्स का विंगर कर्टिस वो 19 साल का है और उसे भी रखा गया है, और इधर गोलकीपर में टोटनहम हॉटस्पर नॉटिंघम फॉरेस्ट से नहीं गोलकीपर है ग्रेग गोर्डन, एंगस गन, लियाम केली, डिफेंडर में ग्रांट हैनले, जैक हेनरी, आरन हिकी, डॉम ह्याम, स्कॉट मैकेना, नाथन पैटरसन, एंटोनी रॉल्स्टन, एंडी रॉबर्टसन जो कप्तान होगा, यॉन सूटर, केरन टियाने, और मिडफील्ड में रायन क्रिस्टी, फिनले कर्टिस, लेविस फर्गुसन, बेन गानेंडोक, बिली गिलमो, जॉन मैकगिन, केनी मैकगिन, स्कॉट मैकटोमिने, और अटैक में चे एडम्स, लिंडन डाइक्स, जॉर्ज हर्स्ट, लोरेस शैंकलैन और रॉस स्टुअर्ट, तो ये स्क्वाड स्कॉटलैंड के लिए हैं, सभी टीमों के स्क्वाड तैयार किए जा रहे हैं, कर ब्लेजरील के स्क्वाड का ऐलान हुआ जिसमें नेमा को रखा गया है, और आज अन्य चैंपियनशिप में भी कुछ मैच हैं, जैसे इंडियन सुपर लीग में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का मुकाबला

0: मोहम्मदन से होगा। इधर क्रिकेट में थिंग्स गेटिंग सीरियस, धीरे धीरे टॉप फोर की ओर जब आने लगे हैं, तो आज जो मैच होगा चेन्नई सुपर किंग्स अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, ये मैच दोनों टीमों के लिए अहम है अगर ये लोग टॉप फोर में आना चाहते हैं तो, क्योंकि ऊपर तीन टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद। पंजाब किंग्स अभी फोर्थ पोजिशन पर हैं, राजस्थान रॉयल्स फिफ्थ पोजिशन पर। तो आज इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स, वैसे कल चेन्नई ये वाला मैच सनराइजर्स हैदराबाद जीत गया, आज राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, तो राजस्थान रॉयल्स के लिए एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। क्रिकेट में ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा है, अभी पाकिस्तान की टीम को चाहिए 121 रन डे फोर में, बांग्लादेश की टीम 278-390। फर्स्ट इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम ने 232 रन बनाए थे और आज 316 पर खेल रहे हैं फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। सो गेट रेडी, बहुत कुछ होने वाला है अपकमिंग वर्ल्ड कप को लेकर, समय समय पर आपको अपडेट्स हम लोग देते रहेंगे। फिलहाल ये भी है कि जब ग्रुप स्टेज के बाद की प्लेयर्स पर हम एक प्रोफाइल लेकर आएंगे। कीप ऑन लिसनिंग रेडियो मस्ती।
1: थैंक यू सो मच अरविंद जी, आप तो जानते हैं कि मुझे स्पोर्ट्स अपडेट के बाद हमारे साथ है द फीफा वर्ल्ड कप के न्यू अपडेट्स। हियर वी गो,
2: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट वर्ल्ड कप एवर
3: 2026 फीफा वर्ल्ड कप।
2: पहली बार होंगी 48 टीम्स, 104 मैचेस। रेडियो मस्ती की टीम के साथ
3: चलिए
2: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
3: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
0: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओर काउंटडाउन जारी है, फ्लैग्स खरीदे जा रहे हैं, टी शर्ट्स बेचे जा रहे हैं, स्टिकर्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, सो हम भी उसमें जुड़ गए हैं। रोड टू वर्ल्ड कप 2026, पहली बार के लिए वर्ल्ड कप हिस्ट्री में फीफा हाफ टाइम शो का प्रबंध करेगा जैसे सुपर बोल में होता है। ये फाइनल के लिए जो 19 जुलाई को खेला जाएगा न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम मेटलाइफ स्टेडियम में, मैडोना, शकीरा और बीटीएस के परफॉर्मेंसेस होंगे। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप जी में आज हम बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान और न्यूजीलैंड के बारे में जानकारियां देंगे। एन एक्लेक्टिक मल्टी कॉन्टिनेंटल मिक्स ऑफ फुटबॉलिंग स्टाइल्स। बेल्जियम की टीम को एक समय गोल्डन जेनरेशन कहा जाता था, अभी के लिए ट्रांजिशन में है। द रेड डेविल्स ग्रुप में फेवरेट हैं, वेटरन लीडर केविन डे ब्रुइन और रोमेलू लुकाकू अभी भी टीम में हैं, साथ में एक्सप्लोजिव यंग टैलेंट्स जैसे जेरेमी डोकू, अमादू उनाना, लुइस ओपेंडा, टिमोथी कास्टाइन, यूरी चेलेमंस और योआन बाकायोको। 2018 फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम तीसरे स्थान पर आई थी, ब्रॉन्ज मेडल जीत पाई थी। इजिप्ट दिफाओ अफ्रीका की मोस्ट सक्सेसफुल नेशन में से एक, ये चौथा वर्ल्ड कप है इजिप्ट के लिए, 1934, 1990, 2018 और अब 2026। किंग्स इजिप्ट के पास 7 अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस टाइटल्स हैं, लेकिन वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन केवल 4 और वो भी वर्ल्ड कप फाइनल्स में एक भी जीत नहीं है, वर्ल्ड कप कर्स कहते हैं इसे। इजिप्ट का ऑल टाइम लीडर स्कोर होसम हसन अभी तक कोच हैं, क्वालिफिकेशन में एक भी हार नहीं हुई थी। खिलाड़ियों में डेडली अटैकिंग ट्रिडेंट मोहम्मद सलाह टीम का कप्तान है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इजिप्शियन प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। उमर मामूश मैनचेस्टर सिटी से, मुस्तफा मोहम्मद एफसी नॉर्थ से, ट्रेजेगे मोहम्मद अल शनावी जो गोलकीपर हैं। इजिप्ट इस बार सज धज के आई है अपना पहला मैच जीतने के लिए। ईरान की टीम एशियाई फुटबॉल का पावर हाउस, 3 बार एशियन चैंपियन, ये उनका 7वां वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन है, लगातार 4th, पर अभी तक टीम मिली नॉकआउट राउंड तक नहीं जा पाई है। की खिलाड़ियों में है कप्तान मेहदी तराइमी जो ओलंपियाकोस में खेलता है, अलीरेजा बहरनवंद जो खेलता है गोलकीपर के रूप में। मिडिल ईस्ट में चल रहे टेंशन को लेकर ईरान की तैयारी और वीजा को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर फीफा हर हालत में ईरान

0: को सपोर्ट कर रहा है। और ग्रुप जी का आखिरी टीम है न्यूजीलैंड, द ऑल वाइट्स ओशियाना फुटबॉल कॉन्फेडरेशन से है। हाईली डिसिप्लिन, फिजिकली रोबस्ट, प्रैग्मैटिक ब्रांड ऑफ डायरेक्ट फुटबॉल। 26 खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार है, इसमें नॉटिंघम फॉरेस्ट का खिलाड़ी क्रिस वुड और टॉमी स्मिथ हैं, स्ट्राइकर जेसे रैंडॉल भी हैं। 1992 में पहली बार वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर, फिर 2010 में एक लेजेंडरी ऐतिहासिक स्थिति, बिना एक मैच हारे जो उस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक टीम कर पाई थी न्यूजीलैंड, ग्रुप स्टेज से आउट स्लोवेकिया, पराग्वे और इटली से ड्रॉ मैच करने के बाद आउट हो गई थी ये टीम। इस टीम में सरप्रीत सिंह नाम का खिलाड़ी है, अटैकिंग मिडफील्डर। सो ग्रुप जी में बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान और न्यूजीलैंड। कल ग्रुप एच पर चर्चा करेंगे, जिसमें है स्पेन, यूरुग्वे, सऊदी अरेबिया और केप वर्डे। सो गेट रेडी, द वर्ल्ड कप 2026 फीवर इज ऑन। और हमारे साथ आप लोग जुड़िएगा फॉर द लेटेस्ट न्यूज, views and reviews.
1: Thank you so much for the updates.
2: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और एमटी
2: रेडियो मस्ती।
3: ओए होए, यहां पर वेलकम, स्वागत है आप सभी का इन द सेकंड आवर ऑफ योर रफ्तार वाइब्स। ओ सुंदरी भूत बांग्ला मूवीज है। 5:10 हुए हैं। जो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आपको कहना चाहते हैं टू बी वेरी वेरी पेशेंट ऑन द रोड।

0: जाओ फॉर एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लेडीज एंड जेंटलमैन। आज 5:30 बजे हम फोन करने वाले हैं दो लोगों को। वैसे यहाँ पर लकी ड्रॉ करने के बाद दो लोगों के नाम निकल चुके हैं एंड थोड़ी देर में हम उनको फोन करेंगे। यहाँ पर टू पार्टिसिपेट यू हैव ओनली हैव टू डाउनलोड द MBC प्ले 1.0 द न्यू वर्जन। रजिस्टर करने के बाद अपना MBC OTT और अपने नाम के साथ वो जो स्क्रीन शॉट है भेजेगा जरूर ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर MBC का 5499124 पर। जी हाँ, तब आप एलिजिबल बन पाएंगे फॉर द लकी ड्रॉ। ऑल द बेस्ट गुड्स टू यू गाइस।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स।

0: नंबर टू लिसनर्स के साथ जो कि चुने गए हैं फॉर ऑफ कोर्स द क्वेश्चन राउंड. हियर वी गो.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.
0: जी हाँ बिल्कुल, आप जुड़े हैं आम टू रेडियो मसी के साथ आफ्टर रजिस्टरिंग ऑफ कोर्स विद आवर MBC प्ले एप्लीकेशन. ये जो MBC प्ले एप्लीकेशन है आपको उसको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है MBC OTT का, और आपका नाम बस स्क्रीनशॉट करके 5499-1294 पर भेजना है आपको. और भेजने के बाद हमने लकी ड्रॉ किया है. यहाँ पर दो नाम आ चुके हैं हमारे साथ. चैताली है हमारे साथ और Luckily, we couldn't get in touch with Vidusha. वो फोन नहीं उठा पाई. लेकिन क्या है कि हमारे साथ है चैताली, तो उनसे एक सवाल करेंगे और उनको जवाब देना है. And she will be automatically qualified for the lucky draw. Hello, जी चैताली. Hi.
3: Hello. Good evening.
0: Good evening. Welcome on RM2 Radio Masti. Hello. चैताली, इतने नर्वस ना हो. मैंने आपसे बात कर रही थी, क्या मैं खुद नर्वस हो जाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, बस आपको बस एक सवाल का जवाब देना है चैताली. एंड आई एम गोना विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. ओके, जल्दी से आपको जवाब देना है एंड देन आप क्वालिफाइड हो पाएंगी फॉर द लास्ट लकी ड्रॉ. ओके जी, तो सवाल ये रहा. आर यू रेडी?
3: Yes, ready.
0: Yes, okay, जी, सुनिएगा ध्यान से. MBC Play allows users to watch programs in replay. True or false?
3: The answer is true.
0: Answer is true. Are you sure?
3: Yeah,
0: of course, this is the right answer. Congratulations! आप select हो रहे हैं for the final draw. जी हाँ, ladies and gentlemen, अभी हमारे साथ है चैताली, जो कि automatically select हो गई है for the last draw, यानी कि final के लिए एक draw होगा और इसमें आपका नाम आ जाए, यही हम कामना करते हैं. 29th को होगा final lucky draw and I hope कि आपका नाम निकल जाए. Thank you so much for participating, चैताली.
3: Thank you so much.
0: अच्छा, दे ताली.
3: Bye.
0: Bye.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: have a tilak for you here in Paradox for you. Here we go for your fashion tip.
1: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
0: कैसे कर पाएंगे आंखें मिला के, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको ताक ताक कर बस देखेंगे। वैसे अगर आप फॉर्मल वेयर को आप ऑप्ट करना चाहते, देखो आज तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एंड देन थर्सडे, ये जो चार दिन होते हैं कुछ लोग तो फॉर्मल वेयर पसंद करते हैं टू वेयर इट एट ऑफिस हो या फॉर्मल इवेंट। क्लासिक कलर्स जैसे कि ब्लैक, वाइट, ग्रे और नेवी ब्लू कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता, आप मानते हो ना। स्मार्ट ब्लेजर, क्लीन शूज और सटल एक्सेसरीज आपको एलिगेंट और प्रोफेशनल लुक दे देते हैं। कीप योर आउटफिट सिंपल, नीट एंड कंफर्टेबल, बिकॉज ट्रू स्टाइल ऑलवेज लुक्स लाइक एफर्टलेस। व्हाट डू यू से? आप सहमत हो हमसे? थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन आरएमटी रेडियो मस्ती।
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हल्कोरि फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
2: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
3: RM2
2: Radio Mystery.

0: Star Vibes, Filmy Rides,
1: RM2,
2: Radio Masti.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: वीडियो मस्ती के साथ ये है तुम मिले द रॉक वर्जन ऑफ शफकत अमानत अली के आवाज में।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2
1: वीडियो मस्ती।
0: थोड़ी देर में समाचार शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर साथ निभाने के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं मनीष मां, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार और आदाब। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पूर्व सरकार के कार्यकाल में संचार के इंटरसेप्शन का मुद्दा राष्ट्रसभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान खासतौर पर चर्चा में। विपक्ष के सांसद अदगन जुवाल द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्व सरकार के तहत एक मास सर्वेलेंस सिस्टम के अस्तित्व की कड़ी निंदा। लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष की नियुक्ति इस सप्ताह होने की संभावना, ये बात कही प्रधानमंत्री ने। वे प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। वाकवा के स्वरूप लेन में कल सुबह क्या हुआ, ये सवाल सभी की जुबान पर। 20 साल के व्यक्ति के शव को एक खाली जमीन में पाया गया। 18 साल के छात्र को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। विदेश में एबोला महामारी कोंगो में कहर बरपा रहा है, 131 लोगों की मौत। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। अब समाचार विस्तार से पेश हैं। पूर्व सरकार के कार्यकाल में संचार के इंटरसेप्शन का मुद्दा राष्ट्रसभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान खासतौर पर चर्चा में रहा। विपक्ष के सांसद अदगन जुवाल द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्व सरकार के तहत एक मास सर्वेलेंस सिस्टम के अस्तित्व की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे एक गंभीर और अस्वीकार्य विचलन बताया। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि इस मामले में एक आपराधिक जांच चल रही है और कुछ गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं, जबकि आगे और गिरफ्तारियां बाकी हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के उपकरणों के उपयोग को संविधान के अनुरूप रखने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचों को मजबूत किया जाएगा। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: टेलीकम्युनिकेशन इंटरसेप्शन से जुड़े अदगन जुवाल के एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध निगरानी या फोन टैपिंग मॉरिशस के संविधान तथा उसमें निहित मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पूर्व सरकार के दौरान लागू की गई निगरानी प्रणाली का भी उल्लेख किया। पिछली सरकार ने सार्वजनिक धन के भारी खर्च पर एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली स्थापित की थी, जिसका मकसद हर मॉरिशन नागरिक की अंधाधुंध जासूसी करना था। वे सभी की निगरानी कर रहे थे। मैडम स्पीकर, आपकी, मेरी, विपक्ष नेता की, पूर्व प्रधानमंत्री की, इस सदन के हर सदस्य की, यहाँ तक कि सरकार के मंत्रियों की भी। स्वयं माननीय सदस्य, उनके पिता जो उस समय मंत्री थे, और उनके परिवार भी इससे अछूते नहीं थे। और केवल इतना ही नहीं, न्यायपालिका, सिविल सोसाइटी, राजनयिक समुदाय और हर परिवार के निजी डेटा को भी इंटरसेप्ट किया जा रहा था। जैसा कि मैंने पिछले वर्ष सदन में कहा था, मेरे निर्देश पर इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, निष्क्रिय बना दिया और इसे पूरी तरह अनुपयोगी कर दिया गया। मैं सदन को सूचित कर सकता हूं कि इस मामले में फिलहाल एक आपराधिक जांच चल रही है। मुझे जानकारी दी गई है कि कुछ गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं और आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के वास्ते सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की बेहतर सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, ताकि मॉरिशस गणराज्य में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहे। सदन को जल्द ही नेशनल क्राइम एजेंसी बिल और उससे संबंधित विधायी प्रावधानों की समीक्षा और बहस करने का अवसर मिलेगा। ये प्रावधान हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद से कानून व्यवस्था

0: व्यवस्था के क्षेत्र में सबसे व्यापक और गहरे बदलाव लाएंगे। ये कानून निगरानी के मुद्दे को केवल आपराधिक जांच के दायरे में संबोधित करेगा। इसका उद्देश्य इन साधनों के उपयोग को राष्ट्रीय सुरक्षा के वास्तविक और वैध हित में सीमित करना होगा, न कि किसी विशेष शासन के व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों के लिए। इन्हें एक मजबूत संवैधानिक और कानूनी आधार पर रखा जाएगा। वर्तमान में उन आवश्यक स्वतंत्र संस्थागत संरचनाओं पर गंभीर विचार किया जा रहा है जो इन उपकरणों के उचित और संतुलित उपयोग की गारंटी देंगे। इन्हें एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में शामिल किया जाएगा। हमें कभी भी पिछली सरकार के उस आपराधिक दुरुपयोग की ओर वापस नहीं लौटना चाहिए जिसने पूरे देश में गहरा और जायज आक्रोश पैदा किया था।
1: My question is to the Honorable Prime Minister, given that the states still have the capacity to intercept, it is still within the state apparatus, with all the risk of political abuse and misuse, why does he not consider it urgent and necessary to come with an oversight and accountable mechanism like is being done overseas in Commonwealth countries?
2: I did say, Madam Speaker, the Honourable Member is wrong. There is no system at the moment. There is none. I explained, I just said that the system was dismantled, shut down and rendered inoperable. So there is none at the moment. But what I said in my answer, that we will have to come with new legislation for the purpose of the matter that I mentioned, like terrorism, drugs and all those things, criminal offences.
3: लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष की नियुक्ति इस सप्ताह होने की संभावना है। ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के जवाब में कही। प्रधानमंत्री ने बताया कि पूर्व अध्यक्ष ने व्यक्तिगत कारणों से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। सरकारी नेता ने स्पष्ट किया कि LGSC एक स्वतंत्र सार्वजनिक संस्था है और इसके प्रशासनिक मामलों या निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: विपक्ष नेता जूलिया जागो का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन 2026 में LGSC की ओर से जनरल वर्कर्स और कूड़ा उठाने वालों की भर्ती से संबंधित। अपने जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात पर जोर दिया कि कानून के अंतर्गत ये आयोग स्वतंत्र रूप से कार्यरत है। उन्होंने बताया कि कानूनी सलाह पर 15 जून 2025 को 1463 कर्मचारियों का कंट्रैक्ट समाप्त किया गया। इसके बाद इनमें से कुछ लोग मामले को अदालत में ले गए। 2024 के आम चुनावों से एक दिन पूर्व रिक्रूटमेंट्स किए गए थे और तब के चेयरमैन के साथ संभावित गलत कार्य के सिलसिले में जांच की जा रही है। विपक्ष नेता LGSC के पुराने चेयरपर्सन भानुदत्त बिहारी के मोडस ऑपरेंडी पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने LGSC को एक वन मैन कमीशन में तब्दील किया। पिछले 25 जनवरी को सुनाए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इन कर्मचारियों की भर्ती कानूनी रूप से इनवैलिड थी और कि LGSC को उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने का अधिकार था। 2026 की शुरुआत में LGSC की नई प्रशासनिक परिषद की तरफ से रिक्रूटमेंट की एक नई कार्रवाई चलाई गई। इस तरह प्रधानमंत्री ने संबंधित दस्तावेजें पेश की कि कितने कर्मचारियों को गार्बेज कलेक्टर और जनरल वर्कर की तरह रिक्रूट किया गया था। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात पर भी स्पष्टीकरण दिया कि भर्ती किए जाने वाले नए लोगों को 2 महीने की अवधि का एक सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन किसी पिछले सजा से एक नामजदगी में रुकावट नहीं पैदा होनी चाहिए। 2012 से इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक्ट में सुधार लाया गया ताकि इस सिलसिले में कोई भेदभाव न हो जब किसी ऐसे व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो रहा हो या प्रमोशन हो रहा है जो किसी अन्य अपराध के लिए सजा काट चुका हो और अपना कार्य करने से संबंधित नहीं है वर्तमान में। हाल ही में एक नए सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर बिल पारित किया गया जिसका मकसद है एक व्यक्ति के सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर में कुछ प्रकार के पिछले सजा को शामिल न करना ताकि ऐसे प्रकार के लोगों के पुनर्वास में दिक्कत न हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि LGSC के पूर्व

0: पूर्व अध्यक्ष DRSM के खिलाफ भेदभाव का कोई भी आरोप नहीं है। विपक्ष नेता के अतिरिक्त प्रश्न में वे समझाना चाह रहे थे कि किस कारण उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया।
1: I can tell the honorable leader of the opposition, any public officer has a duty to report any interference or any suspected act of corruption. He hasn't done so, so that was done.
2: Whether there has been discrimination on ethnic grounds in the recruitment process against one specific community.
1: I'm not aware of that, Madam Speaker. There were lots of allegations in the public. I think he quoted an article from the Express, but there was no inquiry, there was no discrimination found, because there was no inquiry, there was no complaint by the person himself.
0: दूसरी तरफ विपक्ष नेता ने जानना चाहा कि हालिया रिक्रूटमेंट कार्रवाई में किसी तरह का झुकाव हुआ है या नहीं। एक अन्य प्रश्न पूछा गया कि क्या पोर्टलिस नगर पालिका में भर्ती किए गए 123 लोगों में 50% चुनाव क्षेत्र नंबर 2 से हैं। उत्तर में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वे रिक्रूटमेंट में हस्तक्षेप नहीं करते। दूसरी ओर स्पीकर ने इस पर अपना रूलिंग रिजर्व किया कि विपक्ष नेता LGSC की तरफ से रिक्रूट किए गए लोगों के नाम पेश करने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे।
3: It's a very sensitive issue. I'm going to keep my ruling and take time to consider.
0: प्रधानमंत्री ने LGSC के नए अध्यक्ष के नॉमिनेशन का भी जिक्र किया।
1: Being done this week, Madam Speaker.
4: राष्ट्रीय सभा में आज पहली पढ़त पर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पेश किया गया। इसका मकसद है एक विशेष आयोग की स्थापना करना, जिससे संविधान को लेकर कुछ नियमों में बदलाव लाए जा सके। इस पर ज़्यादा विस्तार आप इस रिपोर्ट में सुन पाएंगे।
0: मॉरिशस में स्वतंत्रता पश्चात इतिहास में पहली बार सरकार द्वारा एक वृहद संवैधानिक सुधार की योजना का प्रावधान है। इसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन का गठन किया जाएगा, जो संविधान के विभिन्न पहलुओं की गहराई से समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। ये आयोग प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों को मजबूत करने का काम करेगा। पीस, जस्टिस एंड लिबर्टी, न्याय, शांति और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया जाएगा। सीनियर काउंसलर रमा वलाइडन ने कहा, अगर शांति होगी तो न्याय होगा, न्याय होगा तभी तो स्वतंत्रता होगी। न्याय सबका केंद्र है, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, विकलांग हो, सभी के लिए न्याय, प्रकृति के प्रति भी न्याय चाहिए। इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल होंगे, प्रकृति नेचर के अधिकारों की मान्यता, पर्यावरण, टेक्निक, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े नए अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी। प्रकृति अधिकार भी है, जैसे कि वाकाशु, कानूनी कार्रवाई चलाने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार होगा। सरकार हो, लोकल गवर्नमेंट हो या आम व्यक्ति, उनका कर्तव्य होगा प्रकृति के संरक्षण और इसे सुनिश्चित करने का अधिकार। सरकार का उद्देश्य संवैधानिक ढांचे को आधुनिक बनाना है, ताकि संस्थाओं पर जनता का भरोसा मजबूत हो सके। सार्वजनिक संस्थानों में नियुक्तियों के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाई जाएगी और राइट टू रिकॉल लागू किया जाएगा। जनता एक याचिका पर हस्ताक्षर कर सकती है और मांग कर सकती है कि ये लोग अपना पद लौटाएं, नॉमिनेशन रिकॉल करें। इसी को राइट टू रिकॉल कहते हैं। इससे मॉरिशस जैसे छोटे देश को मदद मिलेगी, ताकि मंत्री हो, सांसद हो, अपने वचनों का पालन करें। अन्य सुधार प्रस्तावों में सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक अपील न्यायालय, कोर्ट ऑफ अपील का गठन, मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों के लिए एक विशेष संवैधानिक डिवीजन। जब इस तरह का न्यायालय होगा, अगर किसी मामले का विरोध करना है तो उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए, छोटी ही अवधि में ही। आयोग को शक्तियों के बेहतर संतुलन पर भी विचार करना होगा, साथ ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के कानूनी सिद्धांतों को भी संवैधानिक ढांचे में शामिल करना होगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस पर भारत में काफ़ी प्रगति हुई है। इसकी बदौलत लोग आसानी से केस डाल सकेंगे। कानून में इस बात का प्रावधान कि लोग ज़्यादा आसानी से मामला दर्ज करा सकेंगे। आयोग सार्वजनिक तौर पर पेश हो सकता है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन हमारे विचार से इसका उल्टा होना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर जब पेश हो रहे हैं, रेडियो हो, टेलीविज़न या अखबार,

0: इसे देख सकेंगे, इससे जनता सीख सकेगी, इससे किसी भी प्रस्ताव के बारे में बेहतर रूप से जान सकेंगे, ये मददगार साबित होगा। इस विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के बाद से संवैधानिक सुधार के कार्यों की औपचारिक शुरुआत होगी। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व चीफ जस्टिस प्रणव सिक्यन करेंगे। उनके साथ कानूनी विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और नागरिक समाज के प्रतिनिधि मिलकर संविधान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए सुझाव देंगे।
1: आज सुबह हमें अपने एक सहयोगी मेविन प्रभाकरन, जिन्हें उनके मित्र आया के नाम से जानते थे, के निधन की दुखद खबर मिली। मेविन पिछले 4 वर्षों से प्रोडक्शन विभाग में ऑडियो विजुअल असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। वे 26 साल के थे, हंसमुख और मददगार स्वभाव के थे और एक जिम्मेदार कर्मचारी भी, जो हमेशा मेहनत से काम करते थे। हम इस अत्यंत कठिन समय में उनके परिवार, मित्रों, सहयोगियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और आज तैयारी, कल बेहतर प्रतिक्रिया के लिए बंदरगाह में एक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 200 लोगों ने भाग लिया। ये अभ्यास एक ऐसे परिदृश्य पर आधारित था जिसमें खतरनाक पदार्थ शामिल थे। इस अभ्यास का उद्देश्य ये देखना रहा कि किसी वास्तविक घटना की स्थिति में स्थिति कैसी रहेगी और अधिकारी किस तरीके से इसे संभाल पाएंगे। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
2: बंदरगाह के टर्मिनल 2 पर दमकल कर्मी घायलों और मृतकों को निकालने में लगे थे। कंटेनर में हुए विस्फोट के बाद समय के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो गई। कंटेनर के अंदर ऐसे पदार्थ मौजूद थे जो अत्यंत खतरनाक थे। हालांकि ये कोई वास्तविक विस्फोट की घटना नहीं थी, बल्कि एक मॉक ड्रिल थी। लीड कंट्रोलर इंद्रदेव रामसन ने कहा, एक विस्फोट के बाद रासायनिक पदार्थ का रिसाव हुआ है। बंदरगाह में MPA ने अपनी आपात सेवा तैनात की है। इस अभियान का एक महत्वपूर्ण चरण था डिकंटामिनेशन, यानी रासायनिक प्रदूषण हटाने की प्रक्रिया। कंटामिनेशन हॉट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। रेस्पेंडर को डिकॉन्टामिनेशन यूनिट से होकर निकलना चाहिए। चूंकि अंदर में कैजुअलिटी थी, इसलिए सामू की मदद ली गई। एक बृहद अभ्यास था जिसका उद्देश्य सभी उपकरणों की क्षमता को परखना था। इसमें डिकॉन्टामिनेशन जोन, रासायनिक सुरक्षा और डिटेक्टर शामिल रहे। US एम्बेसी के एक्टिंग डेप्यूटी चीफ और कमीशन कैलेब गोडर्ड ने कहा, $140,000 दान किए गए उपकरणों के तौर पर आज यहाँ सभी परीक्षण के लिए जुटे हैं। एक देश की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। अभ्यास के दौरान सामने आई कमियों और आवश्यक सुधारों का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया। इस अभियान में विभिन्न स्थानीय प्राधिकरणों से जुड़े लगभग 200 आपातकालीन कर्मियों को तैनात किया गया था, क्योंकि बंदरगाह देश का एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण स्थान है। कप्तान बेनुआ बाबू ने कहा, पोर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, बंदरगाह सुरक्षा योजना, जिसमें अन्य विभाग भी जुड़े हैं। ये एक असल अभ्यास है, ये जानने के लिए कि दूसरे साझेदारों के साथ कैसे काम कर सकते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न सेवाओं के बीच समन्वय क्षमता का परीक्षण करना भी था, जिसकी अगुवाई नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर द्वारा की गई।
1: रविवार रात को कौतूहल में हुई हिंसक वारदातों के बाद गिरफ्तार 4 संदिग्धों को आज मुका की अदालत में पेश किया गया। उन पर पूर्व योजना के साथ हमले का स्थायी आरोप है। पुलिस ने उनकी रिहाई पर आपत्ति जताई, उन्हें हिरासत में रखा गया है। इसका कारण वहां के कौतूहल के हेल्थ ट्रैक पर क्वाड बाइक्स का प्रयोग है, जिसकी वहां सख्त पाबंदी है। मामला बहुत जल्द बिगड़ गया। गोली की आवाज़ सुनाई दी, 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और एक पुलिस अफसर घायल हुआ जो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। वाकवा के स्वरूप लेन में कल सुबह क्या हुआ, ये सवाल सभी की जुबान पर

20 साल के व्यक्ति के शव का शव एक खाली जमीन में मिला। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वो उस व्यक्ति के घर में चोरी के इरादे से घुसा था, जिसने उसका पीछा किया। भागने के लिए उसने एक दीवार लांघने की कोशिश की और गिर गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नेक कंप्रेशन यानी गले पर दबाव से मौत की पुष्टि हुई है। 18 साल के एक छात्र को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अली हुयास के नाम से प्रसिद्ध अली बुलाकी को पुलिस हिरासत में रखा गया है। जमानत पर रिहाई की मांग पर उसे आज दोपहर बाद फ्लाक की अदालत में पेश किया गया। इस मोशन पर बहस को 27 मई के लिए स्थगित किया गया, क्योंकि गहरी जांच के लिए फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने ज्यादा समय मांगा है। शुक्रवार 22 मई को संस्था के जांचकर्ता अपनी जांच पर अदालत को जानकारियां देने वाले हैं। वकील यशवीर सिंह रूपन के इस मामले से हट जाने के बाद अब अली हुयास का प्रतिनिधित्व वकील आइवान कुलेंडावेलू कर रहे हैं। मेजिन कोंदमास्क के 23 साल के निवासी अली हुयास पर सार्वजनिक और पैरास्टेटल संस्थाओं में नौकरी पाने के लिए पैसे लेने का शक है। 114 मिलियन रुपये से भरे लगेज के साथ गिरफ्तार बिजनेसमैन जुजियोन दिलावन के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच के बाद अली बुलाकी को गिरफ्तार किया गया। विदेश की खबर में कोंगो गणराज्य में बुला महामारी के कारण कम से कम 131 लोगों की मौत हो गई है। वहां करीब 513 संदिग्ध मामले हैं। एक वृहद कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके तहत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे आपात स्थिति करार दिया है। युगांडा में भी इस घातक बीमारी के 2 मामलों का पता चला है।

चलिए जानते हैं मौसम का हाल। पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल आज रात से स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात को पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों, सेंट्रल प्लेटों पर ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और बारिश होगी, रह रहकर बारिश होगी ऊंचाइयों पर, और कुछ अन्य जगहों पर कोहरा छाया रहेगा। कल दिन के दौरान भी बादल घिर रहेंगे और बारिश होती रहेगी, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज रात के लिए दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 19 से 21, अधिकतम 23 से 25, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 से 26, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:33 पर, शाम को सूर्यास्त 5:40 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे न्यूज़ विभाग और तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। बासें का थोबोन में 75 साल की 75 years old की श्रीमती वमला देवी अपाडू। श्रीमती वमला देवी अपाडू पैदाशी नाम वेंकाया और जो वमला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनके मकान रेजिडेंस खामदनी बासें का थोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8:00 PM। रॉ रोड ब्रामस्टान में 49 साल के 49 years old के श्री विशाल गुलवा जो विशाल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और सर्जेंट ऑफ पुलिस थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के

0: 11 बजे उनकी पत्नी नीरू नंदराम गुलवा के मकान राडोड ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खुशमुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। एवेन्यू बुगैनविलिये तमारे में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्रीलाल देव जगन्नाथ जो पत्निया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले मोसेल मावी और एस कस्कावेल रहा करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थे गुरुवार को दिन के 1:30 बजे उनकी बेटी करुणा जगन्नाथ रंजीब के मकान एवेन्यू बुगैनविलिये तमारे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन थर्सडे एट 1:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2
3: Radio Mystique

0: greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: Lovely good evening to you all. घर मिलाते चलिए, शाम के 7 बजे हैं.
3: Evening Lounge.
4: Evening Lounge.
0: RM2.
3: Radio Musti.

That was a beautiful, beautiful Gana, and it was in the beautiful voices of Yasir Desai, Palak Mochal, Hue Bechain, Aaj Dil Ye, Humne Jana, aur Aapki Bechain Dilon Ko Thora Sa Karar Dene Ke Liye Hi, Jaise Hamesha Hum Kehte Hain, Of Course, Lekar Aaye Hain, Aap Logon Ke Liye, The Best Mix of Music on the Waves of Radio Masti, Till 9 PM, Jahan Par Divya Ka Saath Rehne Wala Hai, Aur Saath Mein Aapke Messages, Kal Anla Ke Liye Aapki Phone Calls Ko Zyada Le Nahi Paaye, Kyunki Do Callers Ko ऑन एयर लेने के बाद यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, लेकिन आज होपफुली आप लोगों से बात हो पाएगी. तो ऑफ कोर्स लाइन खुली हुई है, आप ज़रूर हमें याद करें ऑन 4028035 पर आप हमें फ़ोन करें और आपसे थोड़ी बातें भी हो जाएगी और आपके गाने भी हम चला लेंगे. साथ में अगर आपको हमें याद करना है मैसेजेस के ज़रिए, तो मैसेज भेजने का तरीका तो बहुत ही सिंपल है. ऑल यू हैव टू डू इज सेंड योर ब्यूटीफुल लवली मैसेजेस ऑन 5499129.

0: और अभी के लिए आप लोग साथ मिलकर डिनर ले रहे होंगे एज यूजुअल, विश करेंगे आपको बन अपचे शुभाहार। थके हारे आप घर लौट रहे हैं, मे बी योर ड्राइविंग राइट नाउ, तो आपको हम विश करेंगे हैव अ सेफ एंड म्यूजिकल राइड विद रेडियो मस्ती, जहाँ पर आपको मौका मिल रहा है कुछ अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वैसे कहते हैं ना कि रोज़ रोज़ हम यही कहते हैं कि ओ गॉड कितना ड्राइव करके काम पर जाना होता है, घर वापस जाना होता है, लेकिन ये इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है अकेले ड्राइव करने के लिए और उसी वक्त आपको मौका मिल रहा है थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और आपको और भी थोड़ा मौका मिलता हैं हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज हमारी और आपकी जो मुलाकात होने वाली है बाकी दिनों की तरह इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल, और इसको खास बनाने के लिए हमने ऑलरेडी आपसे रिक्वेस्ट कर लिया है, बाकी आपको पता है आपको क्या करना है। ऑफकोर्स या तो आप हमें फ़ोन करें या आपके मैसेजेस फ़ोन करने के लिए 402-8035-402-8035।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: देर से हुआ पर प्यार तो हुआ, देर आए दुरुस्त आए। और वैसे अगर आपकी ज़िंदगी में देर से प्यार आता है तो इसको देर नहीं कहते हैं, इसका मतलब प्यार आपको तलाश रहा था। और वैसे कहते हैं ना कि यू आर नेवर लेट, यू आर नेवर अर्ली, यू आर ऑलवेज ऑन टाइम। चाहे आपको प्यार 30 साल के बाद मिले, 25 साल के बाद मिले, जब भी मिले आपको प्यार ढूंढ ही लेता है और उसको हम सच्चा प्यार कहते हैं। चलिए यहाँ पर हमारे साथ कोई है और उनसे हम डेफिनेटली बात करना चाहेंगे। और चलिए, हेलो उर्वशी जी, कैसी हैं आप? हाँ जी, यस, बॉस का गाना चूड़ी। उर्वशी जी इतनी एक्साइटेड थी, उन्होंने हेलो बोलना भूल गई। आई कैन अंडरस्टैंड। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम गाने में इतने खो जाते हैं कि हमें लगता है ना कि नहीं नहीं मेरा गाना तो चलना चाहिए, कहीं मिस ना हो जाए। तो चलिए ये गाना तो जरूर हम बजाएंगे।
1: धन्यवाद, धन्यवाद।
0: उर्वशी जी आप मुझे बताइए, आप कैसी हैं?
1: ठीक हूँ, ठीक।
0: घर पे सब कुछ ठीक ठाक है?
1: ठीक हूँ।
0: खाना खा लिया आपने?
1: नहीं अभी नहीं।
0: ओहो, आज लेट डिनर होगा?
1: बच्चा को वेट करती
0: हूँ। ओ, इसको कहते हैं माँ का दिल। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत ही जल्द हम मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन लोगों को ये एहसास नहीं होता है कि माँ का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ये एक ऐसी ड्यूटी है जहाँ पर हमें सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी हंसकर हम सब कुछ सही लेते हैं अपने बच्चों के लिए। तो चलिए उर्वशी जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई नो कि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं अपना गाना सुनने के लिए। तो चलिए ही अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। थैंक यू सो मच उर्वशी जी, थैंक यू, गुड नाइट, शुभरात्रि, शब्बा खैर। तो ये थी हमारी प्यारी सी उर्वशी जी, एंड ऑफ कोर्स अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार कर रही है ऑन 4028235 पर। आप ज़रूर हमें याद कर सकते हैं, वरना आपके मैसेजेस भी हम रिसीव कर रहे हैं ऑन 5499-1294।
2: Evening Lounge.
3: Evening Lounge.
4: RM2.
2: Radio Musti.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: चलवे के लिए विनोद राठौड़ और ऑफ कोर्स रखा याग्निक की आवाज़ों में खूबसूरत सा ये गाना गोज आउट टू ईच एंड एवरीवन जो बाजीगर मूवी के हर एक गीत को पसंद करते हैं और इस गाने की फरमाइश की है आपने ऑफ कोर्स सुनीता जी तेहूर से एंड आप वेट कर रही थी लेकिन अल्लाह के लिए आपका शायद बैलेंस ख़त्म हो गया है। कोई बात नहीं सुनीता जी, दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू और आपके तमाम परिवार वालों के लिए।

चलिए, हमें लगा सुनीता जी का बैलेंस खत्म हो गया तो उनका गाना भी हमने चला लिया, लेकिन उन्होंने दूसरे मोबाइल से हमें फोन किया। दैट्स रियली स्वीट सुनीता जी, एंड नमस्ते, आपको कैसी हैं?

0: नमस्ते।
1: कैसी हैं आप सुनीता जी?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक ठाक। बताइए, आपने बोला था आपको गाना सुनना है बाजीगर का, और ये गाना
0: हाँ,
1: किन के नाम?
0: ये गाना आप लोगों के लिए, जो अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं रोज के, हमें
1: थैंक यू सो
0: रोज के
1: मच।
0: गाने सुनने को मिलता है काम करने के वास्ते, और ये गाना सभी आपके टीम के लिए, रत्ना जी के लिए, जो आज हमें उससे मुलाकात हुआ था, आज वो
1: हाउ
0: प्रोग्राम किया
1: स्वीट।
0: वहाँ पर, और भाई धर्म के लिए, और सभी हमारे परिवार के लिए, जो हमारा बेटे हैं, बहू हैं, नातिन हैं, पोती हैं, और सभी कौनात परिवार, सभी कलाचिती परिवार, सभी परिवार के लिए मैं ये गाना मांगना चाहती हूँ। हाँ
1: ओके सुनीता जी, थैंक यू सो मच। एंड कल काम पे जाना है आई गेस।
0: हाँ कल काम पर जाना है। हाँ
1: चलिए कोई बात
0: हाँ
1: नहीं, ये गाना आपको बहुत एनर्जी देने वाला है। आई एम वेरी श्योर
0: हाँ जी
1: कि
0: हाँ
1: आप ये गाना सुन के ज़रूर मुस्कुराएंगे। एंड जस्ट गेट योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर टुमारो, एंड हम आपके साथ हैं।
0: हाँ
1: थैंक यू सो मच सुनीता जी, आपसे
0: थैंक
1: बात
0: यू
1: करके
0: सो मच
1: बहुत ही अच्छा
0: आपके
1: लगा।
0: लिए। नमस्ते।
1: नमस्ते आपको। तो ये थी हमारी प्यारी सी सुनीता जी, ऑल द वे फ्रॉम तेहूज। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपका हम इंतजार कर रहे हैं ऑन 4028235 का सौदे का। तो मैं कौन सा एक यूजुअल कॉलर्स तो बिल्कुल हमसे बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपने कभी भी हमसे बात नहीं की तो स्पेशली आपका हम इंतजार कर रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती।
2: Evening Lounge.
3: Evening Lounge.
4: RM2.
2: Radio Musti.

क्या खूबसूरत गाना है ये आंखें, ये काजल, ये बिंदिया, ये काजल। आजकल कौन किसके पास इतना वक्त होता है किसको इतना गौर से देखने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी के साथ होते हैं लेकिन उनके साथ होने के बजाय भी आप अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि ऑल यू नीड इज़ टू बी लव्ड एंड ऑल यू नीड इज़ टू बी सीन एंड हर्ड। और अगर आपको ये एहसास हो रहा है धीरे धीरे करके कि प्यार में आप इन चीज़ों के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रही हैं, तो इसका मतलब ये

0: ये है कि आपको प्यार के लिए लड़ना पड़ रहा है. And no one deserves to be fighting for the attention that they deserve. तो चलिए यहाँ पर जितने भी सारे लोग कनेक्टेड हैं हमारे साथ, आपका वार्म वेलकम एक बार फिर से ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहाँ पर दिव्या का साथ है इन योर इवनिंग लाउंज अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक. चलिए कुछ और फ़ोन कॉल्स हमें आ रही हैं, तो हमारे कॉलर से बात करते हैं. तब तक के लिए आप गाने सुनिए.
1: Evening lounge.
2: Evening lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

ब्यूटीफुल सा गाना जुबिन नौटियाल एंड श्रेया घोषाल की आवाज़ों में, समुंदर में किनारा तू। कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी से प्यार करते हैं और उनको पाने के बाद ऐसा लगता है कि हमें ज़िंदगी की मंजिल मिल गई है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी से प्यार करो ना, तो आपको उनको एक ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, ना कि बस ज़िंदगी ही बना लेना चाहिए। क्योंकि जब प्यार में कुछ लोगों को धोखा मिलता है तब पूरी ज़िंदगी उलट पुलट हो जाती है। इसे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको बस एक छोटा हिस्सा दें और पूरी ज़िंदगी आपके लिए है, और आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से इसको जीना है। यहाँ पर बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की ओर। बिग फैन फॉर रेडियो मस्ती फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच जी। नेपाल से आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एंड आपने अपना नाम नहीं लिखा है, बट वी आर सेंडिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ लव टू यू। हेलो दी, प्रणाम, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक। एंड आप कहती हैं कि समथिंग ओनली लकी वंस गेट थ्रू, एवरी वन शुड ऑलवेज वैल्यू द वन हु लव्स यू अ लॉट, बिकॉज समटाइम्स रियली देर ना हो जाए। ये आपने बिल्कुल सही कहा है, कभी हम अपने जिनसे हम प्यार करते हैं विच यू टेंड टू टेक देम फॉर ग्रांटेड, और हमें लगता है कि कहाँ जाएगा या फिर कहाँ जाएगी, यही भी तो है, लेकिन एक दिन देर हो ही जाती है। एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों की सिचुएशन में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के बारे में तो मुझे पता है ही, आप जब प्यार करते हैं तो इसको निभाना भी जानते हैं, और वक्त निकाल कर अपनों को आप इतने प्यार से उनके लिए मैसेजेस भेजते हैं, प्यार को जताते भी हैं। इसको प्यार नहीं कहते हैं तो और क्या कहते हैं। चलिए, आप कहते हैं कि प्लीज कैन यू प्ले दिस सॉन्ग फॉर मी।

0: देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, एंड आप किसी से बहुत बेइंतहा प्यार करती हैं, बट इट्स वन साइडेड एंड आई जस्ट होप कि एक दिन उनको ये एहसास हो जाए कि आपका जो एक तरफ़ा प्यार है वो कितना गहरा है, एंड आई जस्ट होप कि ये एक तरफ़ा प्यार बहुत ही जल्द दो तरफ़ा प्यार में तब्दील हो जाए। आशा जी, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए, एंड विल ट्राई टू सी इफ वी कुड प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू, एंड साथ में बिंदिया कालू आप एमएल जान गुडलैंड से नेक्स्ट गाना जाएगा। आपकी तमाम सिस्टर्स इन लो हैं, वृंदा, प्रतिमा, किरण, वर्षा, कालू फैमिली जो कनेक्टेड है हमारे साथ, एंड वी ऑल्सो वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर स्वीट बेबी अर्शद। आप लोग अभी सेपरेटेड है बाई डिस्टेंस, लेकिन टाइम कैन डिफीट लव, ट्रस्ट मी, एंड ये गाना जाएगा स्पेशली फॉर अर्शद एंड रेबिका, एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विदाउट फॉरगेटिंग, यहाँ पर फोन कॉल आया था मिस्टर बाबू अनातवा जी का, एंड वो रहते हैं काठुबोन, अभी भोजन करने जा रही है, तो आपको बना पिछे शुभाहार। नेक्स्ट गाना आपने मांगा है फॉर बेटा विदेश, बहू हैं पूजा, बेटी भावना, वाइफ हैं उषा, सभी अनातुआ फैमिली ऑफ काठुबोन के लिए, एंड आपने गाना मांगा है मिस्टर आशिक का गाना एंड कुमार सानू का गाया हुआ। चलिए मिलकर इसको एंजॉय करते हैं।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

वैसे सोचने वाली बात ये है कि कुछ ऐसे गाने होते हैं जिनका कितना भी रिमेक की जाए लेकिन वो जो गाने हमेशा ओरिजिनल ही रहते हैं, चाहे आशिकी 2 आए, आशिकी 3 आए, आशिकी 4 आए, लेकिन पहला वाला आशिकी मूवी विल ऑलवेज रिमेन अ लेगेसी, जिसकी वजह से खूबसूरत गीतों का सिलसिला शुरू हुआ था। वेल रात्रि के 8:10 हो चुके हैं। वंस अगेन आप सभी का हम दिल से स्वागत कर रही है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर एक बार फिर से दिव्या का साथ है टिल 9 PM। लेकर आए हैं एक बार फिर से खूबसूरत गीतों का सिलसिला, एंड कुछ हमारे गीतों को सुनने के बाद आपके मन में कुछ हैं जो फीलिंग्स हैं वो उभर कर पनप कर बाहर आ रहे हैं, इसको आप जताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आपके दिल का हाल बयां करने के लिए हम मैजिकल नंबर पे आपके मैसेजेस का इंतज़ार कर रही हैं, दैट इज़ 5499-1294। या फिर अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं तो लाइन खुली हुई है टिल 9 PM, जहां पर आप हमसे कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ आपस में दिल के जज्बात को भी शेयर करते रहेंगे ऑन 4282354 पर आप ज़रूर हमें फ़ोन कर सकते हैं, आपका इंतज़ार रहेगा। फ़ोन कॉल्स

0: हो चाहे मैसेजेस हो, आपका प्यार हमेशा हमें मिलता ही रहता है और वी आर रियली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीवन जो इस वक्त कनेक्टेड है हमारे साथ.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Masti.

सब लोग जिंदगी में प्यार पाना चाहते हैं और जब प्यार हासिल कर लेते हैं तो उनको लगता है कि प्यार को ऐसे रहने देना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि जब एक बार आपकी ज़िंदगी में प्यार आ जाए तो इस प्यार को उतना ही फ्रेश रखने के लिए ऑल वी नीड टू डू इज़ कीप डूइंग एफर्ट्स ईच एंड एवरी डे, ताकि वो प्यार उतना ही फ्रेश रहे एंड उतना ही प्यारा रहे। चलिए, यहाँ पर हम रोज़ रोज़ थोड़ा बहुत एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं टू कीप द बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बिटवीन अस। फ़ोन कॉल्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए आपका प्यार झलक ही जाता है। योगेश अब है थ्वाबुची कथयुले से, नेक्स्ट गाना जाएगा स्पेशली फॉर योर लवली वाइफ सिया, गौरव, रुशल एंड युग। एंड थैंक यू सो मच, आप कहते हैं प्लीज़ लव योर प्रोग्राम, ब्यूटिफुल प्रोग्राम, एंड आप कहते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोग्राम, दैट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच योगेश, आपका गाना हम प्रॉमिस नहीं करते हैं, इफ़ वी कैन फिट इट इन एंड हम ट्राई करते हैं, और अगर नहीं हुआ तो विल कीप इट फॉर नेक्स्ट प्लेलिस्ट फॉर नेक्स्ट डे। चलिए, यहाँ पर आप कहते हैं हाय गुड इवनिंग रेडियो मस्ती टीम, वॉन्ट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर रानी श्वेता हुकुम, जस्ट वॉन्ट टू टेल

है आई लव यू सो मच, एंड शायद ये आपके पति रोशन की तरफ से आया हुआ है। एंड मैंने देखा कि दोनों ने अपने अपने लाइफ पार्टनर्स के लिए मैसेज डेडिकेट मैसेज भेजा है और आपने गाने डेडिकेट किया है। दैट्स रियली सो स्वीट। एंड चलिए उम्मीद करते हैं कि आपके प्यार को कभी किसी की नज़र ना लगे। गुड इवनिंग रेडियो मस्ती टीम, प्लीज़ नेक्स्ट गाना गुज़ आउट फॉर हस्बैंड सोना फ्रॉम वाइफ फीदू। लव हर सो लव।

0: celebrating their 38th wedding anniversary, wishing them all the very best in future. And बहुत बहुत सारा प्यार आपको, और ऐसे ही आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे. ऑस्टिन बकर्स फैमिली की तरफ से, जो हमेशा रेडियो मस्ती का साथ देते रहते हैं. तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर.
1: Evening Lounge,
2: RM2,
1: Radio Musti.

0: वेल, जी हाँ, जले जहाँ जले। और कभी कभी प्यार में कुछ लोग कहते हैं कि प्यार मज़ा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि प्यार सज़ा है। अभी ये डिपेंड करता है कि आपके लिए प्यार का क्या डेफिनेशन है। कुछ कुछ लोगों को लगता है कि दे गिविंग दे 100%, और कुछ लोगों को लगता है कि 1% इज़ इक्वल टू 100%। बहुत सारा डेफिनेशन होता है, लेकिन लेकिन जिस तरीके से आप फूल के नाम अगर चाहे जितना भी बदल लें, लेकिन वो सुगंध देना कभी नहीं बदलता है, उसी तरीके से प्यार वही फीलिंग है कि बार बार उसको लाख डेफिनेशन दो या फिर उसका नाम बदल दो, लेकिन वो एहसास सेम ही होता है। बस कभी कभी इसको समझने और परखने की देर होती है। चलिए, यहाँ पर किसी ने हमें मैसेज भेजा है। गुड इवनिंग रेडियो मस्ती टीम, लव लिसनिंग टू रेडियो मस्ती एवरी डे। प्लीज़ प्ले अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर माय हस्बैंड अश्विन फ्रॉम वाइफ प्रीतिशा, मामा आशा, पापा राजीव। मे बी आपने राजीव लिखना चाहा होगा, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पर राजीव लिखा है। बहन श्रेया, खुशी, भाई वीर, मंगर एंड दोयाल फैमिली ऑफ थोदादूस एंड लिस्पिया हॉस्पिटल, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एंड चलिए, कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम इस कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए, अगला गाना गुजाओ टू ईच एंड एवरी वन लिसनिंग टू अस राइट नाउ।
1: इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Musti. Well friends, 8:55 होने को है और चलिए इसी के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से goodbye to all of you and हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है बहुत ही जल्द, यानी कि कल सुबह के 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच. तब तक के लिए बस दिव्या को दीजिए इजाज़त. टेक केयर, कीप स्माइलिंग. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
2: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.
3: नमस्कार और स्वागत आप सभी का लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर। और मौका मिल गया कि हम और आप चल पड़े एक यादगार सफर पे, जहां पर कमाल के गाने तो होने वाले हैं, साथ में मिलेगा आपको एक साथी संगीत के रूप में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी का स्वागत लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: जिंदगी की रफ्तार कभी तेज होती है तो कभी धीमी, पर याद रखिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: कभी कभी हार भी जीत का पहला कदम होती है. सच मानिए, जो गिरकर समझ जाता है वही असली खिलाड़ी होता है. जिंदगी आपको परखती है, सिचुएशंस देती है, मुश्किलें देती है, चैलेंजेस और चुनौती देती है. लेकिन डरिए मत, बस खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है. हर रात के बाद एक नई सुबह.

वैसे कहते हैं कि सपनों के पीछे जो बस भाग पड़ता है वो ही मंजिल को पाता है, सपनों को पूरा कर पाता है। बस अपने अंदर वो विश्वास रखिए, क्योंकि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। सुना होगा आपने, लेकिन दिल से अगर कुछ करने की सोच लें तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। हिम्मत रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मंजिल आपके इंतजार में है।

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: जो वक्त की कदर करता है, वक्त उसी की कदर करता है। हर एक पल अनमोल है, इसे यूं ही बस बर्बाद मत कीजिए। आजकल तो इतने सारे जरिए हैं जहाँ पर आप कभी स्क्रीन के साथ जुड़े हैं या फिर वर्चुअल वर्ल्ड में, लेकिन साहब आज मेहनत करोगे तो वही कल आपकी पहचान बनेगी।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। लड़की बड़ी अनजानी
1: है। रेडियो मस्ती ऑल द वे।
2: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार
1: से। रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
0: RM2 रेडियो मस्ती,
2: हिट म्यूजिक ओनली।
3: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: म्यूजिक के साथ साथ जो खुशी मिलती है उसके तो बस क्या कहने। खुश रहना भी एक कला है। हर हाल में मुस्कुराना सीखिए। दर्द भी आएंगे, मुश्किलें भी होंगी, पर हिम्मत से काम लीजिए, क्योंकि जो मुस्कुराता है वही दुनिया को जीतता है।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: भाई ये सच बात है कि कभी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। आप में वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। बस जरूरत है खुद पर विश्वास की। जो खुद पर यकीन करता है वही इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाता है।

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Welcome to Radio Musty.
1: Check this out.
0: The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musty feels a musty.
3: जिंदगी एक सफर है. हाँ, आपने सुना होगा वो गाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना. लेकिन जब मोड आते हैं ना, तो वहाँ से एक नई कहानी शुरू हो जाती है. कभी खुशी, कभी गम. पर यहाँ तो इसकी खूबसूरती दिखती है. हर पल को जीना सीखे, क्योंकि यही असली दौलत है. अब कौन से मोड़ पर कौन मिल जाए, चलते चलते दिल भी मिल जाए, क्या कह सकते हैं.

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ओल्ड

अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना होगा। जो सब करते हैं वो मत कीजिए, जो दिल कहे, जो ठीक लगे और सबके लिए अच्छा हो वही कीजिए, क्योंकि किसी का दिल दुखाकर आप खुशी नहीं पा सकते। असली पहचान वही बनाता है जो खुद अपने रास्ते बनाता है।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: भाई कभी सोचते हैं जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, ये अब बस रास्ता रोकने आई हैं, लेकिन मुश्किलें आपको रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। हर चुनौती को अपनाइए, हर सिचुएशन से, हर एक सीख से सीख लीजिए, क्योंकि हर दर्द एक सबक देता है और हर सबक आपको बेहतर बनाता है।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाए कि छोटी छोटी बातें मायने ना रखें। ध्यान सिर्फ मंजिल पर रखिए, रास्ते खुद आसान हो जाएंगे, क्योंकि जहां चाह होती है वहीं तो राह होती है।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: भाई आप कितने स्पेशल हैं और कितने यूनिक, जहाँ हैं वहाँ हैं बिल्कुल ठीक, अरे संगीत की दुनिया में, क्योंकि आप और हम इन्हीं गानों के साथ तो जुड़े हैं। आप यूनिक हैं, इसलिए किसी के साथ तुलना मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए। आप अपनी कहानी के हीरो हैं। हर किसी का सफ़र भी तो अलग होता है ना, और हर किसी की मंजिल भी। बस खुद को बेहतर बनाते रहिए और यही है असल मायने में असली जीत।

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty. Feels a Musty.
2: कहते हैं कि अगर आप गिर गए हैं तो उठना सीखिए, क्योंकि गिरना बुरा नहीं, गिरकर ना उठना हाँ वो बुरा है। हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप हारने के लिए नहीं हीरो बनने के लिए बने हैं। तो बस अपनी स्टोरी बनाइए जिसमें आपको विश्वास हो और निकल पड़िए।

पॉजिटिव सोच आपकी ताकत है, इसे कभी कम मत होने दीजिए। हर हाल में अच्छा देखने के लिए, हर हाल में अच्छा देखने की आदत डालिए, पॉजिटिव देखिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि जैसा सोचते हैं वही दुनिया भी वैसी बनती है।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

चलिए बातों बातों में ये इशारा हो गया कि प्रोग्राम तो बस लगभग पूरा हमारा हो गया, बस समय समय की बात है। समय की बात करें तो खुद को समय दीजिए कुछ ऐसा करने के लिए जिससे आपको खुशी होती हो, क्योंकि यही तो वो चीज़ें हैं ना जो दिल को सुकून पहुंचाती हैं और आपको एक बार फिर से तैयार करती हैं अगले चैलेंज के लिए। बदलाव अगर कोई आ रहा है तो उसमें कोई ख़राबी नहीं, हर दिन कुछ अलग ही सिचुएशन लेकर आता है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए और ख़ुद को बेहतर बनाइए, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें बड़ी सफलता बनाती हैं। एक बार फिर से मुलाकात होगी, ध्यान रखिए, नमस्कार।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती,
1: वेलकम टू RM2।
3: रेडियो मस्ती,
2: रेडियो मस्ती,
3: नॉर्थ साउथ
2: 103.5,
3: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4,
3: सेंटर
2: 99.4।

RM2. Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

RM2. Radio Musty feels a musty.

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग।

0: RM2 Radio Musti.
1: Hit music only.
2: Radio Musti feels a musti.
3: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे.
4: लड़की बड़ी अनजानी है.
0: Radio Musti all the way.
5: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं.
6: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

बेखबर चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।